आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 जून 2026। सुबह के 5:57 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय

0: तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ कर रहे हैं मातृवंदना से।

समूह स्वर में अभी आपने सुनी मधुर शास्त्री की ये देशभक्तिपूर्ण रचना। लीजिए अब सुनिए शंकर शंभू के स्वर में ये रचना।

आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए अब सुनिए मन्ना डे के स्वर में ये भजन।

वाणी जयराम के स्वर में अभी आपने सुनी मीराबाई की रचना, संगीत पंडित रविशंकर का था। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए कार्यक्रम के अंत में सुने ज्योतिका रॉय के स्वर में पंडित बी.सी. मधुर की शब्द रचना।

0: ज्योतिका रॉय के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। रचना पंडित बीसी मधुर की थी। इसी के साथ आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी रायपुर है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है धर्म ग्रंथों से पाठ। इसमें सुनिए ऋग्वेद के प्रजापति सूक्त का पाठ।
1: इस सूक्त में सृष्टि के आदिदेव हिरण्यगर्भ के प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की गई है। एक देवता का प्रजापति नाम भी है। हिरण्यगर्भ समस्त प्राणियों की प्राण शक्ति के नियामक हैं। यह एक दैवी शक्ति है जिसने इस विशाल आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग को अपनी जगह स्थिर कर रखा है। इस शक्ति को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार यह सूक्त भारतीय आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का प्रतिनिधि है।
2: हिरण्यगर्भ प्रजापत्य ऋषि

0: अस्तु भयम् स्या भपदयोरयीना।
1: धर्म ग्रंथों से पाठ में अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के प्रजापति सूक्त का पाठ। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान
2: एपिसोड 214 214।

चित्रकूट में माताओं से श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के साक्षात्कार और चारों भाइयों के परस्पर मिलन का दृश्य जहां एक ओर स्नेह सिंचित था, वहां दूसरी ओर अयोध्या पति के निधन के समाचार ने एक बार फिर सभी को शोक के सागर में डुबो दिया। दूसरे दिन कुलगुरु के आदेशानुसार वैदिक रीति से श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्राद्ध संपन्न करके वैसे ही शुद्ध हुए जिस प्रकार तीर्थों के आवाहन से पतित पावनी गंगा शुद्ध होती हैं। अद्भुत दृश्य उपस्थित है चित्रकूट में, जहां दुखी अयोध्यावासी कंदमूल और फल का आहार करते हैं। भरत शत्रुघ्न मंत्रियों तथा माताओं को व्याकुल देख श्री राम को एक एक पल भारी हो रहा है, अतः उन्होंने वशिष्ठ जी से सबको लेकर अयोध्या लौट जाने का आग्रह किया।

0: रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे। स्वर ए हरिहरण कथा और आकाशवाणी की इस संगीतमयी प्रस्तुति के संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। कृषि चर्चा में लीजिए सुनिए धान में खरपतवार नियंत्रण विषय पर मनीष कुमार वर्मा द्वारा दी गई जानकारी।
1: धान में खरपतवार प्रबंधन जो है वो काफी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि धान के उत्पादन में जो सर्वाधिक कमी है या किसी भी फसल में जो उत्पादन में जो कमी आती है वह खरपतवार के कारण सर्वाधिक नुकसान फसल को होता है, जो कि कीड़े और बीमारी जो होते हैं उनसे भी ज्यादा खरपतवार से फसल उत्पादन में कमी आती है। तो इसीलिए जब धान की बात करें तो खरपतवार नियंत्रण के लिए जो क्रांतिक अवस्था है, मतलब जिस समय पर अगर हमने खरपतवार को नियंत्रण नहीं किया तो उत्पादन में सर्वाधिक कमी देखने को मिलती है। तो ये 15 से जो 45 दिन का जो समय होता है धान में, ये क्रांतिक अवस्था है। इस समय में हमको धान में खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। तो धान में मुख्यतः जो खरपतवार आते हैं, सामा है, मोथा है, कीनी बोलते हैं, एक रेशम कांटा है, इस प्रकार से चौड़े पत्ती वाले, सगरी पत्ती वाले घास कुल के, और एक सेज बोलते हैं जो जैसे जो मोथा होता है। तो इस प्रकार के तीन प्रकार के जो खरपतवार हैं वो धान में मुख्यतः पाया जाता है। तो इसमें जो विधि है खरपतवार नियंत्रण करने की, हाथ से निंदाई करते हैं और यांत्रिक विधि है जैसे कोनो वीडर है, लेकिन जो आजकल सर्वाधिक प्रचलित जो है वो रासायनिक निंदा नियंत्रण जो हम करते हैं खरपतवार नाशी से। इसमें दो तरह के खरपतवार नाशी का उपयोग हम करते हैं, एक जो है बुआई करने के बाद परंतु अंकुरण होने से पहले, अंकुरण के पूर्व, और दूसरा होता है अंकुरण के पश्चात। तो जो मुख्य अभी उपयोग हम कर सकते हैं अंकुरण के पूर्व, जो पायरेजो सल्फ्यूरॉन एक हर्बिसाइड आता है जिसका 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हम इसका उपयोग करते हैं, 80 से 100 ग्राम अंकुरण पूर्व खरपतवार नाशी। अंकुरण पूर्व मतलब 0 से 3 दिन के समय में हमको करना। बुआई के 0 से 3 दिन से तात्पर्य यह है कि बुआई के बाद सिंचाई या वर्षा होने के बाद 3 दिन के अंदर, सूखे अवस्था में हमें खरपतवार नाशी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। खरपतवार नाशी का उपयोग करते समय खेत में नमी होनी चाहिए, इसीलिए 0 से 3 दिन का तात्पर्य यही है कि सिंचाई देने या बारिश होने के 3 दिन के अंदर हमको अंकुरण पूर्व खरपतवार नाशी का प्रयोग करना है। दूसरा होता है अंकुरण पश्चात खरपतवार नाशी, जिसका उपयोग हम 20 से 25 दिन के बाद करते हैं धान बोने के। तो इसमें जो है खरपतवार नाशी बिसपायरीबेक सोडियम जो मार्केट में इसके कई नाम से मिलते हैं, नॉमिनी गोल्ड है, एडोरा है, इसी प्रकार के जो अन्य उत्पाद हैं सेम जो रासायनिक संरचना वाले बिसपायरीबेक सोडियम, इसका उपयोग हमको करना है। इसका भी उपयोग 80 से 100 ml प्रति एकड़ की दर से हम इसका उपयोग करते हैं। ये चौड़ी एवं सकरी पत्ती दोनों को ही नष्ट करता है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए आलमिक्स करके आता है, मेट सल्फ्यूरॉन प्लस क्लोरीम्यूरॉन का, ये जो आलमिक्स के नाम से और अन्य उत्पाद इसी संरचना के जो बाजार में उपलब्ध हैं, इसका उपयोग हमें करना है 8 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करता है। और फिनोक्साप्रॉप एक खरपतवार नाशी आता है जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं घास कुल के, उनको ये नष्ट करता है, जो बाजार में भीप सुपर और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद हैं ये रूप में उपलब्ध है। इसका हमें 250 से 300 ml प्रति एकड़ की दर से इसका उपयोग हम खरपतवार के नियंत्रण के लिए करते हैं। इस प्रकार से हमारे खेत में जिस प्रकार के खरपतवार हैं कि अगर उसमें केवल सकरी पत्ती वाले हैं तो सकरी पत्ती को नियंत्रण करने वाले खरपतवार का उपयोग करना चाहिए, अगर केवल मतलब ज्यादा मात्रा में जो है उनसे संबंधित ही खरपतवार नाशी का उपयोग हमको करना चाहिए। जैसे अगर दोनों प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले हैं तब हमें बिसपायरीबेक सोडियम की तरफ जाना चाहिए। हमारे खेत में जो वीट फ्लोरा है, जो वीट के प्रकार है उसके अनुसार ही हमको अपने खरपतवार नाशी का चयन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जैसे पहले भी बताया कि खेत में नमी का होना बहुत ही आवश्यक है खरपतवार नाशी के उपयोग करने के लिए।
0: कृषि चर्चा में धान में खरपतवार नियंत्रण विषय पर जानकारी दे रहे थे मनीष कुमार वर्मा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन सुनिएगा दिन के 11 बजे। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री सुनिएगा शाम 6:30 से 6:45 तक, शाम 7 से रात 8 तक, रात 8:30 से 8:45 तक और रात 9:15 से मैच की समाप्ति।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद सुनिएगा दिन के 11:30 पर और इसका पुनः प्रसारण होगा रात 8:00। अब से कुछ ही देर में यानी सुबह 7:05 पर पेश करेंगे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। इसमें सुनिएगा बस्तर के मेधावी छात्रों की IIT मद्रास के सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण मिलने की पहल और तकनीकी शिक्षा के नए अवसरों पर प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव कुलपति महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर से विशेष बातचीत और राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस के अवसर पर बीमा के महत्व और आर्थिक सुरक्षा पर श्री संदीप सोनी से होगी खास बातचीत। साथ ही सुनिएगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस के अवसर पर पल्स पोलियो अभियान टीकाकरण के महत्व और अभिभावकों की भूमिका विषय पर विशेष संवाद होगा जो डॉक्टर श्वेता सोनवानी से ये संवाद हम सुनेंगे। प्रस्तुति होगी देवव्रत भगत की। बच्चों के कार्यक्रम किसलय में सुबह 8:30 पर बच्चों की डायरी का विषय होगा संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करें और योग रखें निरोग और ज्ञान विज्ञान की बातें में खेल खेल में गणित इस विषय पर होगी वार्ता। वार्ताकार होंगी श्रीमती राजश्री देवांगन। साथ ही होंगे क्रम बालमुख से और बालगीत। सुबह 9:00 प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम खेल संसार। इसमें सुनिएगा साप्ताहिक खेल समीक्षा और उत्तराखंड हल्द्वानी में म्यूथाई जूनियर नेशनल चैंपियन में शामिल छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी समीधा अग्रवाल से भेंटवार्ता भेंट करता होंगे रमाशंकर। सुबह 10:00 समय होगा कार्यक्रम फोन इन फरमाइश का। आप मन के गीत आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:30 पर महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में आज की बात का विषय होगा यातायात नियमों का पालन करें और योग अपनाएं रोग भगाएं और शिक्षा से समृद्धि की ओर नारी इस विषय पर होगी वार्ता। वार्ताकार होंगी श्रीमती सोनाली तिड़के। साथ ही होंगे युगल गीत और चर्चा के विषय होंगे बोलते समय संयम जरूरी है और अनावश्यक जिद संबंधों को कमजोर करती है। जिले की चिट्ठी में शाम 6:05 पर होगी जशपुर जिले की चिट्ठी। आलेख तरुण प्रकाश शर्मा का होगा और श्रोताओं चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा सुबह 9:15 पर। दोपहर 1:05 पर। दोपहर 2:00 और दोपहर 2:30 पर। तो श्रोताओं ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं, पहले संस्कृत फिर हिंदी में।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 35वां संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ताविभागस्यान्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमन्त्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्या क्षेत्रीय भाषासु अपि भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सहयोगस्य पूर्णव्याप्तेः समीक्षां करिष्यतः तथा च परस्परस्य क्षेत्रीयान्तराष्ट्रिय विषयेषु मतानाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। अद्य प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रिय सभां सम्बोधयिष्यति। भारतीय प्रवासी सदस्यैः सह संवादमपि विधास्यति। पश्चात् प्रधानमन्त्री रोश कैमन इत्यत्र राष्ट्रिय दिवस समारोहे भागं भजिष्यति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकेन दलेन सह भारतीय नौसेनायाः 2 नौकाभ्यां सह श्रीमोदी उत्सवे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां विक्टोरिया नगरं सम्प्राप्तवान्। विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार संधेः CETA इत्यस्यान्तर्गतं उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह सम्पर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मंत्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदंडानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना विदर्भ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतु विभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता संबद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 11:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत के किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की योदायु किमोतो को पराजित किया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ले युंग के होगा। फीवा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने पैनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। प्रस्तुत कर रहे हैं देवव्रत भगत।

नमस्कार रायपुर, मैं हूं देवव्रत भगत, लेकर आया हूं दिन की सबसे प्यारी शुरुआत नमस्कार रायपुर के साथ। साथियों, जून का महीना अपने आखिरी पड़ाव पर है। मानसून ने छत्तीसगढ़ में दस्तक तो दे दी है, लेकिन जिस बारिश का इंतजार था वो अब भी अधूरा सा है। आसमान में बादल रोज आते हैं, मौसम भी सुहाना हो जाता है, लेकिन कई इलाकों में बादल बिना वर्षे ही लौट जा रहे हैं। मौसम विज्ञानी इसकी एक बड़ी वजह अल नीनो के असर को बता रहे हैं। उनका कहना है कि इसी वजह से बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन वजह चाहे जो भी हो, किसान की नजर आसमान पर टिकी है। शहर के लोग भी राहत की बारिश का इंतजार कर रहे हैं, और रायपुर की बात करें तो इस शहर का बारिश से रिश्ता कुछ अलग ही है। पहली अच्छी बारिश होते ही बूढ़ा तालाब और तेलीबांधा तालाब का किनारा फिर से लोगों की चहल पहल से भर जाता है। सुबह या शाम की सैर हो या फिर हल्की हल्की फुहारों में भीगने का मजा, बारिश पूरे शहर को एक अलग ही रंग दे देती है। उधर महादेव घाट में भी लोगों की नजरें टिकी है। सबको इंतजार है कि बारिश के बाद खारून नदी अपने पूरे शबाब में बहे और घाट पर वही रौनक लौटाए जो हर मानसून की पहचान होती है। किसानों को धान की रोपाई के लिए बारिश चाहिए, बच्चों को कागज की नाव चलाने के लिए, और शहर को गर्मी से राहत के लिए। वजहें सबकी अलग अलग है, लेकिन इंतजार एक ही है, अच्छी झमाझम होने वाली बारिश का, जो मिट्टी की खुशबू भी लाए, चेहरे पर मुस्कान भी और मौसम में ठंडक भी। ऐसे एहसास के साथ मन से बस एक ही पुकार निकलती है कि मेघा अब तो बरसो।

दोस्तों, नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि इतिहास हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प और साहस से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। और अब वक्त है इतिहास के उन पन्नों को पलटने का जिन पर दर्ज कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने दुनिया और देश की तस्वीर बदल दी। 28 जून 1919, आज के ही दिन वर्साय संधि पर हस्ताक्षर हुए। करीब 4 साल तक चले प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस समझौते ने युद्ध पर विराम लगाया। दुनिया ने युद्ध के दौर से निकलकर शांति की ओर कदम बढ़ाया और इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। इसी दिन साल 1921 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी का जन्म हुआ। उन्हें उस नेता के तौर पर याद किया जाता है जिनके कार्यकाल में भारत ने आर्थिक सुधारों की नई राह पकड़ी। उदारीकरण की नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को नई पहचान दिलाई और विकास की दिशा बदल दी। और आज राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में भविष्य की तैयारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी आज की जिम्मेदारियां। वैसे साथियों, इतिहास हमें सिखाता है कि हर इंतजार का एक खूबसूरत अंजाम होता है। और जैसे हम इंतजार कर रहे हैं अच्छी बारिश का, तो उम्मीद है बादलों का ये इंतजार भी खत्म होगा और फिर नैनों में बदरा छा जाएंगे।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: QR कोड स्कैम। जब भी कोई अज्ञात कॉलर किसी भी कारण से पेमेंट की बात करता है और आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसको आपको पेमेंट देना है, और पेमेंट देने के लिए एक QR कोड भेजकर कहता है कि आप इसको स्कैन कीजिए और आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आपके साथ ठगी हो सकता है, क्योंकि QR कोड पैसे भेजने के लिए होता है, पैसे पाने के लिए नहीं। सस्ती डील और लालच में ना आए, जागरूक बने, सतर्क रहें। किसी प्रकार के आपके साथ धोखाधड़ी होती है तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल की मदद ले सकते हैं, या www.cybercrime.gov इन में भी जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं।
2: दोस्तों, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बस्तर के युवाओं के लिए एक नई पहल की गई है। यहाँ के मेधावी छात्रों को पहली बार IIT मद्रास में सेमीकंडक्टर तकनीक का विशेष प्रशिक्षण मिलने जा रहा है। इस पहल से जुड़ी विभिन्न पहलुओं पर सुनिए शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव जी से हुई हमारी ये बातचीत। दोस्तों, बस्तर के युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत होने जा रही है। पहली बार बस्तर के 25 मेधावी छात्रों को देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT मद्रास में सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग की विशेष ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। इस पहल से न केवल छात्रों को नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि भविष्य में रोजगार के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
3: जी नमस्कार जी।
2: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये पूरा कार्यक्रम क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई।
3: इसकी शुरुआत वर्ष 2024 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति छत्तीसगढ़ ने सभी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया
2: जी।
3: और उस समय से हम सभी विश्वविद्यालय, विशेष रूप से शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कार्य कर रहा है
2: जी जी।
3: और इसमें ये विशेष बल दिया जाता है कि क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, एक्सपोजर टू इंडस्ट्री और उनके एम्प्लॉयबिलिटी के लिए स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप के क्षेत्र में उनका हेल्प की जाए
2: जी जी।
3: और इसीलिए एक वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय ने अपने विश्वविद्यालय के अंतर्गत इनोवेशन एंड स्टार्टअप फाउंडेशन की स्थापना की थी
2: जी।
3: और इस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए मई 4 और 5 को इनोवेशन महाकुंभ का आयोजन विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया
2: जी।
3: और इसमें करीब 2000 छात्र पूरे बस्तर संभाग से, जिसमें 7 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, जगदलपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कोंडागांव, और इस तरीके के हमारे 7 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं।

0: आइडिया पिचिंग के आधार पर और स्टार्टअप के आइडियाज के बेसिस पर कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमारे प्रपोजल पर डिसाइड किया कि बस्तर विश्वविद्यालय से 25 स्टूडेंट्स जिसमें करीब 30% फीमेल स्टूडेंट्स रहेंगे, आईआईटी मद्रास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खर्चे पर हम उनको सेमी कंडक्टर के सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर एंड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, चिप डिजाइन, इंडस्ट्री रेडीनेस के लिए हम उनको तैयार करेंगे।
1: बिल्कुल, और कि पहली बार बस्तर के छात्रों को आईआईटी मद्रास जैसे संस्थान में ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है, तो ये छात्रों के लिए कितना बड़ा मौका है?
0: बहुत उत्साह हमें देखने को मिला है, करीब हजारों स्टूडेंट से भी ज्यादा एक हमने स्मॉल टेस्ट कंडक्ट किया था उनका बेसिक अवेयरनेस के लिए
1: जी।
0: और इनफैक्ट इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में किसी भी स्ट्रीम से बच्चे जा सकते हैं, आर्ट से, साइंस से, लाइफ साइंस से, कॉमर्स से, इंजीनियरिंग से भी, और सभी डिसिप्लिन से बच्चों ने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है
1: जी। और सर, इनको जो आईआईटी मद्रास जाएंगे वहां पे सिखाया क्या क्या जाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर और चिप तकनीक आपने बताई, तो ये आम भाषा में हमारे श्रोताओं को आप समझाइए कि कैसे क्या कुछ सीखेंगे छात्र वहां के?
0: देखिए, पूरे भारत में अलग अलग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हैं
1: जी,
0: और मेरा सबसे पहला ध्यान छत्तीसगढ़ के लिए जाता है
1: जी।
0: और अभी छत्तीसगढ़ में 2 सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लगाने का निर्णय हुआ है 2025 में
1: जी जी,
0: और इसमें से एक पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स तमिलनाडु की एक कंपनी है, इंडिया बेस्ड कंपनी है
1: जी।
0: इसको 1,145 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट दिया गया है
1: जी।
0: और इनको एक GaN गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर प्लांट है बेसिकली है
1: जी जी जी।
0: और ये 5G एंड 6G टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एरोस्पेस से रिलेटेड सेमीकंडक्टर्स की चिप्स को ये डिजाइन करते हैं, बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। ये भारत के लिए महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होने वाली है
1: जी।
0: ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि अप्रैल मई 2026 तक इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी
1: जी जी।
0: तो मेरे दिमाग में एज ए वाइस चांसलर आया कि एक बहुत अच्छा सुखद अनुभव बस्तर के जनजातीय युवाओं को के लिए मिला है कि बस्तर अभी रिसेंटली ऑनरेबल होम मिनिस्टर के प्रयासों से और हमारे राज्य सरकार के प्रयासों से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के प्रयासों से एक नक्सल मुक्त बस्तर हो चुका है, अब यहाँ पर शांति है। तो युवाओं को अब हमें आगे आकर उनको दिशा देने की आवश्यकता है, उनको डेवलपमेंट में डालने की जरूरत है, और इसलिए मैंने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने बच्चों को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिक्वेस्ट की कि आईआईटी मद्रास से इनको सेमीकंडक्टर पहला बैच ऐसे टेक्निकल सपोर्ट हम अपने छत्तीसगढ़ से दे सकें कि इस इंडस्ट्री में बाहर के स्टेट से एक्सपर्ट्स लेने की जगह हमारे बस्तर के अपने स्टूडेंट्स, वेल ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड स्टूडेंट्स हम इनको प्रोवाइड कर सकें। तो इसी ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत
1: जी, यानी हम ये समझें कि इस ट्रेनिंग से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
0: जी बिल्कुल मिलेंगे। देखिए, ये जो अभी चिप जिसे गैलियम नाइट्राइड की चिप तैयार की जा रही है 5G और 6G टेक्नोलॉजी की
1: जी जी,
0: इसकी चिप की जो साइज है वो 3 to 5 नैनोमीटर, जिसको अगर आप समझें 3×10^7 सेंटीमीटर, इतनी छोटी चिप तैयार होगी जो आंखों से भी नहीं देख सकेंगे। और ये PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो मोटर व्हीकल्स हैं, टेलीविजन हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं
1: जी जी,
0: बहुत सारे सेंसर्स हैं, इन सभी में PCBs में सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज होता है। और हमने ये बात आईआईटी मद्रास से शेयर की कि हमारे बच्चों को आप इसी डायरेक्शन में ट्रेन करिए, तो उन्होंने पूरा कैरिकुलम इसका तैयार किया है
1: जी जी।
0: और बच्चे बस्तर के बच्चे छत्तीसगढ़ के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के आधार पर, इंडस्ट्री ड्रिवन रिक्वायरमेंट की बेसिस पर हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो इनको 100% जॉब मिलेगी। पर इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी की है कि बहुत उत्साहित हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं
1: जी। बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिन जिलों का नाम आपने लिया और जहां से ये बच्चे आते हैं, एक समय में ये नक्सलवाद का दंश झेल रहे थे, और अब इन जगहों से आने वाले बच्चों के लिए जो सेमीकंडक्टर और चिप टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो भविष्य तो है ही, संभावनाएं इन बच्चों में कितनी आपको दिखाई देती है? सर,
0: बच्चों में पोटेंशियल इतना है कि मैंने एक डिफिकल्ट टेस्ट डिजाइन किया
1: जी जी,
0: और वो 20 मार्क्स का टेस्ट था
1: जी।
0: 20 मार्क्स पे कम से कम 15 बच्चों की टाई है, और 19 मार्क्स के पे कम से कम 25 से 30 बच्चों की टाई है। अब आप सोच लीजिए
1: जी। बिल्कुल, अंत में अब हमारे श्रोताओं के लिए और उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा जो भविष्य के सपने देख रहे हैं और कई बार संसाधनों की वजह से खुद को पीछे भी मानते हैं?
0: देखिए, बस्तर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और इन विश्वविद्यालयों में आज की तिथि में कोई अंतर नहीं रह गया
1: जी।
0: मन में किसी प्रकार की छात्र कुंठा ना पाले कि हम बस्तर में पढ़ते हैं, बस्तर विश्वविद्यालय

0: निपटते हैं, हम वेल कनेक्टेड हैं, वेल इक्विप्ड हैं। सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको बताया
1: जी।
0: केवल क्लासरूम टीचिंग से, शिक्षकों के लिए भी संदेश है कि केवल क्लासरूम टीचिंग से अब काम चलने वाला नहीं है। क्लासरूम टीचिंग के बाद भी बच्चों के एम्प्लॉयमेंट, उनकी रुचि, बल्कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो ये कहती है कि आप अपने कोर्स, अपने रिक्वायरमेंट, आप अपने इंटरेस्ट, अपने प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिजाइन करिए, हम आपको पढ़ाएंगे।
1: बिल्कुल सर, उम्मीद है कि बस्तर के युवा इस मौके का पूरा लाभ उठाएंगे और तकनीक के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: आपने बस्तर को अवसर दिया, आपको विशेष धन्यवाद।

0: साथियों, आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस पर जानते हैं कि बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाना आज भी क्यों जरूरी है। इस विषय पर सुनिए जिला टीकाकरण अधिकारी रायपुर डॉक्टर श्वेता सोनवानी से हुई हमारी ये खास बातचीत।
1: दोस्तों, आज है राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस और इसका मकसद है कि कोई भी बच्चा पोलियो के सुरक्षा से वंचित न रहे। इस अभियान के महत्व और इससे जुड़े जरूरी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर श्वेता सोनवानी जी, जिला टीकाकरण अधिकारी रायपुर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: जी, नमस्कार।
1: सबसे पहले तो मैम ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस का मकसद क्या है और आज भी इसकी क्यों बनी हुई है।
2: राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसमें 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते हैं उनको पल्स पोलियो की 2 बूंदें पिलाकर उन्हें पोलियो वायरस से सुरक्षित करना रहता है, क्योंकि ये हमारा देश जो है 2014 से ही पोलियो मुक्त हो चुका है। लेकिन क्या है, अभी भी भारत के कुछ देश हैं जहां पर पोलियो वायरस ही मौजूद है, इसलिए इस दुनिया को पोलियो पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता है। इसी सतर्क रहने के लिए ही इस अभियान में सभी बच्चों को पोलियो की खुराक देना आवश्यक है।
1: और कई बार अभिभावकों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर बच्चे को नियमित टीकाकरण के तहत पहले पोलियो के टीके लग चुके हैं तो फिर पल्स पोलियो अभियान में 2 बूंद पिलाना क्यों जरूरी है।
2: नियमित टीकाकरण और पल्स पोलियो अभियान क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर नियमित टीकाकरण में बच्चे व्यक्तिगत सुरक्षा बढ़ती है, जबकि पल्स पोलियो अभियान के दौरान एक साथ सभी बच्चों को दवा पिलाकर समुदाय में जो पल्स पोलियो के वायरस की संभावना होती है उसको समाप्त करने के लिए किया जाता है। अगर आपका बच्चा नियमित टीकाकरण में पोलियो की वैक्सीन ले चुका है तो हर पल्स पोलियो अभियान में भी 2 बूंद जरूर लेना आवश्यक है।
1: बिल्कुल। और किन बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक जरूर दिलानी चाहिए, आयु सीमा क्या है एक बार?
2: की आयु सीमा है कि जन्म से लेकर 5 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे होंगे उनको पल्स पोलियो की आवश्यक खुराक जरूर दिलानी चाहिए।
1: जी, और अगर उस दिन किसी बच्चे को हल्का बुखार, सर्दी खांसी या दूसरी कोई सामान्य बीमारी हो तो क्या उसे पोलियो की दवा पिलाई जानी चाहिए?
2: यदि बच्चे को हल्का बुखार है या हल्का सर्दी खांसी या सामान्य बीमारी है तो उसे हम पोलियो की खुराक दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा गंभीर रूप से बीमार है तो अपने जो पास के चिकित्सालय है वहाँ पर एक बार परामर्श और सलाह लें और उस बाद ही उनको पोलियो के ड्रॉप लाएं।
1: बिल्कुल। मैम, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि कई परिवार अभियान वाले दिन बूथ तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था होती है, क्या बाद में भी दवा पिलाई जा सकती है?
2: जैसे कि हमारा 28 जून को हम एक मास वाला चला रहे हैं, जाके बूथ पे आप पोलियो की खुराक पिला सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो बच्चे छूट जाते हैं उनको अगले जो दो दिन होते हैं उसमें हमारी टीम होती है तो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाती
1: है। जी, और कई बार ये भी देखा जाता है मैम कि कई जगहों पर टीकों को लेकर के कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। ऐसे में अभिभावकों को सही जानकारी कैसे मिले और वे किन बातों पर भरोसा करें?
2: अभिभावकों को केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य स्वास्थ्य विभाग और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जैसे हमारी आशा हो गई, ANM हो गई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनसे मिली जानकारी के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अभी भी अफवाहें बहुत सारी चलती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वैक्सीन हो बहुत ही सुरक्षा के ही बनाया जाता है, लेकिन इन सारी भ्रांतियों से तो दूर ही रहना चाहिए।
1: यकीनन। और अंत में रायपुर जिले के और जो भी श्रोता हैं हमारे ये सुन रहे हैं, उन सभी श्रोताओं को, माता पिता और पालकों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
2: मैं रायपुर जिले से एवं जिला प्रशासन रायपुर और जिला स्वास्थ्य विभाग आप सभी से आग्रह करता है कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस के दिन अपने 5 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे उनको नजदीकी पोलियो बूथ में ले जाकर पोलियो की 2 बूंदें अवश्य पिलाए। यदि किसी कारणवश कोई बच्चा छूट जाता है तो वो घर घर आने वाली टीम को सहयोग प्रदान करे और छोटी सी पहल में अपने बच्चे और पूरे समाज को पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे। आइए हम सब मिलकर पोलियो मुक्त भारत को हमेशा सुरक्षित बनाए रखें।
1: बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता सोनवानी जी, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।

0: साथियों, आज राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस है। बदलते समय में बीमा केवल आर्थिक सुरक्षा ही नहीं बल्कि भविष्य की बेहतर योजना का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं। बीमा के महत्व और इससे जुड़े जरूरी पहलुओं पर सुनिए भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारी संदीप सोनी जी से हुई हमारी ये बातचीत। साथियों, हर साल 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को बीमा के महत्व, आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं के प्रति जागरूक करना है। आज भी कई लोग बीमा को केवल एक निवेश मानते हैं, जबकि ये मुश्किल समय में परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन सकता है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप सोनी जी, जो कि LIC अधिकारी हैं। सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस का महत्व क्या है, इसका मकसद क्या है?
1: इसका मकसद यही है कि लोगों को बीमा के प्रति जागरूक बनाएं

0: और उनको बीमा लेने के लिए प्रेरित करें और जो बीमा ले चुके हैं वे अपने प्रीमियम को पटाएं, अपने जो टर्म्स कंडीशन है, जो संविदा हुआ है, मतलब यह कॉन्ट्रैक्ट है बीमा, उसको अच्छे से जाने पढ़े, उसको चालू रखें, लैप्स मत कराएं, अपना प्रीमियम पटाते रहें, यही उसका उद्देश्य है।
1: बिल्कुल, आज के समय में बीमा का नाम सुनते ही लोग अक्सर जीवन बीमा सोचते हैं, लेकिन बीमा के कई प्रकार हैं और आम आदमी के लिए कौन कौन से बीमा सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं?
0: सही बात है, बीमा का बोलने से आदमी सिर्फ जीवन बीमा समझता है, जबकि बीमा के कई प्रकार होते हैं। बेसिकली दो प्रकार है, आम बीमा और जीवन बीमा। जीवन बीमा में आदमी की मृत्यु होने पर जो आर्थिक राशि की क्षति होती है जो संविदा के रूप में पहले से डिसाइड रहती है वो राशि दी जाती है। और आम बीमा बहुत ही व्यापक चीज है, इसमें गाड़ियों का बीमा, स्वास्थ्य का बीमा, पशु बीमा और न जाने कितने तरह के लैपटॉप मोबाइल, ये सब प्रकार का बीमा आता है। तो ये जो हम राष्ट्रीय जागरूकता दिवस मनाते हैं वो पूरा बीमा के लिए, न सिर्फ भारतीय जीवन बीमा बल्कि आम बीमा का के जागरूकता के लिए भी इसको मनाया जाता है।
1: बिल्कुल, और हर व्यक्ति की जरूरत अलग अलग होती है और ऐसे में किस उम्र या स्थिति में किस तरह की बीमा जो है वो प्राथमिकता में होना चाहिए?
0: सबसे पहली बात है कि आदमी जैसी वयस्क होता है उसको सबसे पहले टर्म प्लान लेना चाहिए। टर्म प्लान वो प्लान होता है जिसमें मृत्यु की स्थिति में एक बहुत बड़ी बीमा राशि जो पहले से डिसाइडेड है वो उनको देर होती है और उनको प्रीमियम छोटा अमाउंट में देना पड़ता है। कम आयु में इसलिए ले लेना चाहिए बीमा क्योंकि उस समय प्रीमियम कम होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ते जाएगा उसका प्रीमियम बढ़ते जाएगा रिस्क के अनुसार। तो हमें कम आयु में कम से कम एक टर्म प्लान ले ही लेना चाहिए और जितना जल्दी लेंगे प्रीमियम हमको उतना ही कम राशि अदा करना पड़ेगा। और जीवन बीमा यह होता है एक राशि जो डिसाइड हो जाता है वही हमको लाइफ टाइम देना रहता है। ऐसा नहीं कि महंगाई बढ़ गया तो प्रीमियम बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। वो जिस आयु पे लिया है वो इसी आयु पे डिसाइड होता है कि वो पूरे टर्म तक कितना प्रीमियम देगा, इसलिए कम आयु में लेना सबसे सही कदम होता है।
1: और सोनी जी, आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन बीमा खरीदने का चलन जो है वो बढ़ गया है और ऐसे में लोगों को कौन सी सावधानी जो है वो रखनी चाहिए ऑनलाइन बीमा खरीदते समय?
0: ऑनलाइन बीमा के समय ये देखना चाहिए कि जो जिस अभिकर्ता से ले रहे हैं उनका आई कार्ड चेक करें, है ना, उनके कंपनी के बारे में जानें और वो जो भी हमको हमारी जो केवाईसी मांग रहे हैं वो देख ले कि वो सही जीवन बीमा प्रदाता के तरफ से है कि नहीं है। और ऑनलाइन से बिल्कुल कराना चाहिए क्योंकि इसमें जो हमारे जो पॉलिसी होल्डर है उनको प्रीमियम कम देना पड़ता है और खासकर कि महानगरों में तो पूरा ही ऑनलाइन हो गया है।
1: बिल्कुल, और राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए बीमा कई प्रकार के होते हैं लेकिन अभी हाल ही में दो प्रकार का बीमा एक व्यक्ति को बिल्कुल लेना चाहिए। पहला है टर्म इंश्योरेंस और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि इसमें बहुत ही खर्चा हो रहा है, हॉस्पिटल का खर्चा बहुत बढ़ गया है। एक बार पेशेंट मान लीजिए एडमिट होगा तो उसकी जिंदगी भर की कमाई बिल्कुल निकल जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे पास तो ऐसे ऐसे केस हैं कि एक एक इंजेक्शन 5-5 लाख का कैंसर का देना पड़ रहा है पेशेंटों को। तो सोच लीजिए अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा पाते तो ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। और वैसे ही मान लीजिए कोई कमाऊ सदस्य, आजकल एक ही सदस्य कमाऊ रहता है, उसकी मान लीजिए मृत्यु हो जाती है तो पूरा का पूरा परिवार जो है सड़क रोड में आ जाएगा। इसलिए टर्म प्लान भी जरूरी है। इसलिए मैं कहूंगा कि हर व्यक्ति को कम से कम एक टर्म प्लान और एक हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल ले ही लेना चाहिए।
1: बिल्कुल सोनी जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, अगर आप बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी PO के 1500 पदों पर भर्ती निकाली है। SBI PO देश की सबसे बड़ी बैंकिंग परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, जिसमें हर साल 8 से 9 लाख उम्मीदवार आवेदन करते हैं। और अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, EWS और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को ₹750 फीस देनी होगी, जबकि SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह से मुफ्त है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, इसके बाद अपनी सभी जरूरी जानकारी भरें, आवेदन शुल्क जमा करें और फोटो सिग्नेचर समेत जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। आखिर में फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट अपने पास जरूर सुरक्षित रखें। तो इस जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं साथियों, और सुनते हैं नमस्कार रायपुर का ये अंतिम गीत।

साथियों, कहते हैं ज्ञान, जागरूकता और अच्छे स्वास्थ्य में किया गया हर छोटा प्रयास जीवन को बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। इसी विचार के साथ नमस्कार रायपुर से विदा लेने का वक्त हो गया है, तो दीजिए देवव्रत भगत यानी मुझे इजाजत। नमस्कार।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
3: Today we have a new national health policy.
4: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
3: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
5: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो जो पेपर आने वाले थे वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के डीसीपी जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले टीईटी के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
1: इस घटना के बाद आज होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
6: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति

0: की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की तो गोवा के 14 एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सारा GM मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन

0: में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

संविधान का मान करें, भारत का सम्मान करें, अधिकारों के संग साथ कर्तव्यों का भी ध्यान करें, झूठ से सदा दूर रहें, मिलजुल कर हम खूब रहें, संविधान की मर्यादाओं का आओ मिलकर सम्मान करें। कविता की इन पंक्तियों के साथ मैं शहनाज आप सभी का किसलय कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। नमस्कार, सुप्रभात। बच्चों, हमारा संविधान हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह हमें हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों की भी जानकारी देता है। संविधान हमें सिखाता है कि हम सभी नागरिक समान हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बच्चों, संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करने का अर्थ है कि हम कानून का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और सभी धर्मों एवं संस्कृतियों का सम्मान करें। बच्चों के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ईमानदार, अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बने। जब हम संविधान के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देते हैं। आइए बच्चों, हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि संविधान की मर्यादाओं का सम्मान करेंगे और एक अच्छे नागरिक बनकर देश का गौरव बढ़ाएंगे।

0: बच्चों, आप लोगों ने स्कूल जाना तो शुरू कर ही दिया होगा और आप लोगों में से बहुत से बच्चों को गणित विषय से बहुत डर लगता होगा। तो आज हम उसी डर को दूर करने के कुछ उपाय सीखेंगे आपके पसंदीदा क्रम ज्ञान विज्ञान की बातों से। कार्यक्रम का शीर्षक है खेल खेल में गणित। वार्ताकार हैं श्रीमती राश्री देवांगन।
1: प्यारे बच्चों, आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो जीवन जीने के लिए और उसे बेहतरीन तरीके से समझने के लिए अति आवश्यक है। मैं बात कर रही हूँ गणित विषय की। बच्चों, गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम हर कदम पर गणित का उपयोग करते हैं। गणित के बिना ना तो आप पैसे गिन पाएंगे, ना फोन चला पाएंगे, ना अच्छी नौकरी मिल पाएगी। डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि किसान को भी गणित का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन कई बच्चों को इस विषय में कठिनाई आती है। परंतु बच्चों, यदि गणित को खेल खेल में सीखा जाए तो इसे आसानी से समझा जा सकता है। खेलों के माध्यम से सीखने से इस विषय में रुचि बढ़ती है और मानसिक विकास भी होता है। समस्याओं को समझने और उसे व्यवस्थित तरीके से हल करने की क्षमता भी विकसित होती है, जो कैरियर के हर क्षेत्र में काम आता है। खरीदारी करने, घर का बजट बनाने, खाना पकाने या यात्रा की योजना बनाने में भी गणित का ज्ञान सीधे तौर पर काम आता है। तो आइए बच्चों, आज हम गणित से दोस्ती करते हैं। मैं आज आपको कुछ आसान और रोचक तरीके बताऊंगी जिससे आप खेल खेल में ही गणित सीख सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पहाड़ा, जिसे इंग्लिश में टेबल कहते हैं, कैसे याद किया जाए। पहाड़ा याद करना हो तो पहले छोटी संख्याओं के पहाड़े याद करें, जैसे 2, 3, 4, 5 इत्यादि। फिर इन पहाड़ों को गाने की तरह पढ़ें तो ये जल्दी याद हो जाते हैं। बच्चों, इसे आप खेल के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। मैं आपको एक खेल बताती हूँ। जैसे एक बच्चा 2 का पहाड़ा बोल बोल कर एक एक सीढ़ी चढ़े, जहाँ गलत हो जाए वो वहाँ रुक जाए। अब दूसरा बच्चा नीचे से फिर से 2 का पहाड़ा बोल बोल कर एक एक सीढ़ी चढ़े। इस तरह से जो अंत में ऊपर पहुँच जाएगा वो जीत जाएगा। इस खेल को आप 2 से लेकर 25 तक के पहाड़े के लिए खेल सकते हैं। बच्चों, अब हम दूसरे खेल के बारे में बात करेंगे। यह खेल आप अपने परिवार के सदस्यों तथा दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। आपको 2 ग्रुप बना लेना है। अब एक ग्रुप का एक सदस्य दूसरे ग्रुप से पहाड़े से संबंधित सवाल पूछे और उसे सिर्फ 5 सेकंड का समय दे। अगर सही उत्तर आए तो उसे 1 अंक मिलेगा। अब दूसरे ग्रुप का एक सदस्य पहले ग्रुप से पहाड़े से संबंधित सवाल पूछे, सही उत्तर आने पर 1 अंक दिया जाए। इसी तरह खेल को आगे बढ़ाया जाए। अंत में जिस ग्रुप के नंबर ज्यादा हो वे ग्रुप विजेता घोषित किए जाएंगे। तो बच्चों, इस तरीके से खेल खेल में आप पहाड़े को अच्छे से याद कर सकते हैं। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे गणित के सूत्र फॉर्मूले कैसे याद कर सकते हैं। परंतु उसके पहले हम यह जानेंगे कि सूत्र पढ़ना क्यों जरूरी है। इसे समझने के लिए बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। हम आने जाने के लिए गाड़ी का यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए गैस और कुकर का उपयोग करते हैं, बताइए क्यों? मुझे मालूम है इन सभी सवालों के जवाब आप सभी को पता है। जी हाँ, इनका यूज करने से हमारा काम आसानी से हो जाता है और समय भी कम लगता है। ठीक ऐसे ही गणित के सूत्र भी मशीन की तरह ही काम करते हैं, आपके प्रश्नों को आसानी से और कम समय में हल कर देते हैं। इसलिए इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमें सूत्रों की एक अलग कॉपी बनानी चाहिए। लिखने के बाद रोज जोर जोर से बोलकर अभ्यास करना चाहिए। केवल रटने से सूत्र जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए पहले यह समझें कि सूत्र कैसे बना है, इसका उपयोग कहाँ होता है। अगर ये समझ कर पढ़ेंगे तो सूत्र लंबे समय तक याद रहेंगे। एक बार सूत्र याद हो जाए तो हम इसे प्रतियोगिता के माध्यम से रोचक बना सकते हैं। जैसे सूत्र लिखने का कंपटीशन करें, आप सभी दोस्त अपना अपना पेपर लेकर बैठ जाएं, एक साथ सभी सूत्र लिखना प्रारंभ करें, 10 मिनट का समय निर्धारित कर लें, अंत में सभी आपस में एक दूसरे का पेपर चेक करें, सही सूत्र आने पर एक अंक मिलेगा, जिसके अंक ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा। अब मैं आपको दूसरे खेल के बारे में बताती हूँ। बच्चों, आप सभी को पेंटिंग करना तो बहुत पसंद होगा, तो इसी के माध्यम से हम प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। रंग बिरंगे कलर यूज करके आपको सूत्रों का एक चार्ट बनाना है, जिसका चार्ट सबसे सुंदर होगा वही प्रतियोगिता का विजेता होगा। आपके द्वारा बनाए गए इस चार्ट को आप अपने घर में उस जगह पर लगाएं जहां आते जाते आपकी नजर उस पर पड़ती रहे और सूत्र याद होते रहे। अब मैं आपको एक नया गेम बताती हूँ। लूडो तो आप सभी ने खेला होगा, आइए लूडो से हम गणित के सूत्रों का एक गेम खेलते हैं। एक बच्चा लूडो की गोटी फेंके, गोटी में जितने अंक आए हों उतने वह सूत्र बोले। जैसे गोटी फेंकने पर यदि 3 अंक आता है तो उसे 3 सूत्र बोलने हैं, अगर सारे सूत्र सही हो तो उसे 3 अंक मिल जाएगा। ऐसा दूसरा बच्चा भी लूडो की गोटी फेंके, गोटी फेंकने पर जितने अंक आए हों उतने सूत्र बोले, अगर सारे सही हो तो वह अंक उसे मिल जाएगा। ऐसा 10-10 बार करें, अंत में जिसका अंक ज्यादा होगा वही विजेता होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि सूत्र रिपीट ना हो। तो है ना बच्चों आसान तरीका सूत्रों को याद करने का। अब हम गणित के उस भाग की चर्चा करेंगे जिसमें सभी बच्चों को ज्यादा कठिनाई आती है, और वह है बीजगणित। जब तक अंक 1, 2, 3, 4 होते हैं तब तक गणित आसान लगता है, परंतु जैसे ही अक्षर XYZ आ जाते हैं बच्चों को समझने में दिक्कत आने लगती है। तो आइए पहले इन अक्षरों को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, इन अक्षरों के पास जादू होता है। इन अक्षरों का मान और नेचर फिक्स नहीं होता, अपितु बदलता रहता है। जैसे किसी प्रश्न में x का मान 2 हो सकता है तो किसी में 10 हो सकता है, किसी प्रश्न में x आयु को प्रदर्शित कर सकता है तो किसी प्रश्न में लाभ या हानि को प्रदर्शित कर सकता है। तो है ना ये जादू। इन अक्षरों से दोस्ती करने के पहले इनको जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग के नियमों को अच्छे से समझना होगा। नियमों को समझने के बाद खेल के माध्यम से हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। जोड़ने और घटाने के अभ्यास करने के लिए हमें 2 अलग अलग रंग के पेपर चाहिए। हम लाल रंग और नीला रंग ले सकते हैं। इन लाल और नीले रंगों के हमें छोटे छोटे 20-20 चौकोन पेपर बनाने हैं। लाल रंग पर हम x लिखेंगे और नीले रंग पर हम y लिखेंगे। अब हम अभ्यास शुरू करेंगे। अगर हमें 5x प्लस 2x का मान निकालना है तो हम 5 लाल रंग के पेपर निकालेंगे और 2 और लाल रंग के पेपर निकालेंगे। क्योंकि दोनों को जोड़ना है इसलिए हम दोनों को जोड़कर उत्तर 7x बताएंगे। इसी तरह हमें अगर 5x माइनस 2x का मान निकालना है तो हमें पहले लाल रंग के 5 पेपर निकालने होंगे। उसमें हम 2 लाल रंग के पेपर हटा देंगे क्योंकि दोनों को घटाना था। अब हमारे पास 3 लाल रंग के पेपर बचेंगे तो इसका उत्तर 3x होगा। इसी तरह अगर हमें 5x प्लस 2y का मान निकालना है तो हमें 5 लाल रंग के पेपर निकालने होंगे और 2 नीले रंग के पेपर निकालने होंगे। परंतु क्योंकि दोनों के कलर अलग हैं, इन्हें ना तो जोड़ा जा सकेगा ना तो घटाया जा सकेगा, अर्थात इसका उत्तर 5x प्लस 2y ही रहेगा। तो बच्चों, इस तरह हम खेल खेल में अपने दोस्तों के साथ गणित को रोचक तरीके से सीख सकते हैं। खेल खेल में गणित सीखना एक प्रभावी और आनंददायक तरीका है। इससे बिना किसी दबाव से आप आसानी से गणित सीख सकते हैं और गणित आपका प्रिय विषय बन सकता है।
0: बच्चों, अभी हमने जाना कि कैसे हम छोटी छोटी तरकीबों से गणित जैसे कठिन विषय को आसानी से सीख सकते हैं। क्रम था ज्ञान विज्ञान की बातें, शीर्षक खेल खेल में गणित, और वार्ताकार थी श्रीमती राष्ट्री देवांगन, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें ये जानकारी दी कि गणित विषय हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है और कैसे हम खेल खेल में गणित सीख सकते हैं। बच्चों, अब वक्त है आप सभी का एक और पसंदीदा क्रम नन्ही कलम से का। नन्ही कलम से क्रम के लिए वैसे तो हमें ढेर सारे पत्र प्राप्त हुए हैं, लेकिन पहला पत्र जो हमने चुना है वो है रिद्धिमा का, जो धमतरी कुरूद की रहने वाली हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि उन्हें अभिषेक खरे, जो कि इसरो युविका में चयनित हुए थे, उनसे भेंट वार्ता बहुत ही पसंद आई थी। उन्होंने लिखा है कि ये कार्यक्रम उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायी था। अभिषेक खरे ने जो संदेश दिया कि नेवर गिव अप, डरे नहीं, ये नहीं सोचें कि इसमें बहुत से बच्चों ने भाग लिया है, आप अपना बेस्ट दें। तो रिद्धिमा, आपको बहुत बहुत बधाई। हम आगे और भी कोशिश करेंगे कि हम ऐसे नन्हे अचीवर को अपने कार्यक्रम में शामिल करें, ताकि आप लोगों को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले।

दूसरा पत्र हमें लिखा है अनाया श्रीवास्तव चरुदा भिलाई से। वो लिखती हैं कि 21 जून को प्रसारित किसलय कार्यक्रम में क्रम ज्ञान विज्ञान की बातों में बताया गया था कि आकाशगंगा क्या है। ये कार्यक्रम उन्हें बहुत ही रोचक और जानकारी भरा लगा और उन्होंने इसकी शानदार प्रस्तुति के लिए हमें धन्यवाद दिया है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अनाया। बस ऐसे ही हमें पत्र लिखा करें ताकि हम और अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकें। तीसरा पत्र हमें लिखा है गुड्डू साहू ने। वो लिखते हैं कि इस कार्यक्रम में सुनाए जाने वाले बच्चों के गीत उन्हें बहुत पसंद आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू हमें पत्र लिखने के लिए। आइए इसी बात पर सुनते हैं आपकी फरमाइश का एक और मजेदार गीत।

बच्चों का कार्यक्रम किसलय अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल संसार। इसमें सुनिए साप्ताहिक खेल समीक्षा और उत्तराखंड हल्द्वानी में म्यूथाई जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में शामिल छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी समीधा अग्रवाल से भेंट वार्ता। भेंट करता है रमाशंकर।

श्रोताओ नमस्कार, खेल संसार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओ, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां और बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की म्यूथाई की खिलाड़ी समिता अग्रवाल से। तो आइए शुरू करते हैं खेल संसार साप्ताहिक खेल गतिविधियों से। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप सी के मुकाबले में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। मियामी गार्डन्स में खेले गए एक तरफा मैच में ब्राजील के स्टार खिलाड़ी विनिसियस जूनियर ने 2 गोल दागे। मैच के 7वें मिनट और हाफ टाइम से ठीक पहले गोल करके विनिसियस ने ब्राजील को मजबूत बढ़त दिला दी। इसके बाद 60वें मिनट में मैथियस कुन्हा ने गोल कर स्कॉटलैंड की वापसी की सभी उम्मीदें खत्म कर दी। ग्रुप ए में मैक्सिको ने चेक रिपब्लिक को 3-0 से हराकर ग्रुप स्टेज के अपने मैच जीतने का नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। ग्रुप बी के एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराया। बोस्निया के लिए कैरिस ने 29वें और एर्मिन ने 80वें मिनट में गोल किए। एक गोल कतर की ओर से रहा। कतर की टीम रूस 2018 और बुल्गारिया 1966 के बाद एक ही वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 2 आत्मघाती गोल करने वाली तीसरी टीम बन गई है। इस जीत से बोस्निया की अंतिम 32 की उम्मीदें बनी हुई है। भारत के स्टार शटलर किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। वर्ल्ड नंबर 38 खिलाड़ी ने दयानंद सरित को सिर्फ 30 मिनट में 21-14, 21-12 से शिकस्त दी। वहीं तन्वी शर्मा ने जर्मनी की यवोन ली को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया।

0: भारतीय हॉकी टीम को FIH ग्रुप लेके लंदन लीग में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में पेनाल्टी शूटआउट में 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। निर्धारित समय तक मैच 2-2 से बराबरी पर रहा। दिलप्रीत सिंह ने भारत के लिए 10वें और 58वें मिनट में 2 गोल किए। इंग्लैंड की ओर से डेविड गुलफील्ड और निकोलस बंडुराक ने गोल किए। शूटआउट में इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इंटरस्टेट चैंपियनशिप के पुरुष ट्रिपल जंप इवेंट में प्रवीण चित्रावेल ने 16.92 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने पहले ही प्रयास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। हालांकि वे अपने 17.37 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड से काफी पीछे रहे। छत्तीसगढ़ की प्रतिभाशाली खिलाड़ी गीता यादव का चयन भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में यूनाइटेड किंगडम दौरे के लिए हुआ है। 5 से 14 जुलाई तक इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में गीता भारत की जर्सी पहनकर भारत की ओर से खेलेंगी। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम यूनाइटेड किंगडम दौरे के दौरान स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका और बेल्जियम जैसे टीमों के खिलाफ मुकाबला खेलेंगी। बुढ़ापारा स्थित स्क्वैश कॉम्प्लेक्स में आयोजित ईस्टर्न स्लैम 2026 के चौथे दिन गुरुवार को विभिन्न आयु वर्गों के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बॉयज अंडर 19 वर्ग में उत्तर प्रदेश की यूषा नफीस, छत्तीसगढ़ के निशांत जिनाश जैन, महाराष्ट्र के अर्जुन मोरी और राजस्थान के सुभाष चौधरी ने जीत हासिल की। प्रदेश के खिलाड़ी जियांश जैन ने क्वार्टर फाइनल में तमिलनाडु के 5 गेम तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले से हराकर स्थानीय दर्शकों को काफी उत्साहित किया। वहीं अजलान शेख को राजस्थान के सुभाष चौधरी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 से अपनी पहली जीत दर्ज की है। इस जीत से ब्राजील ग्रुप सी के टॉप पर आ गए, जबकि हैती टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। ये तो थी कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां। श्रोताओं, आइए चलते हैं अब भेंट वार्ता की तरफ। खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की म्यूथाई की खिलाड़ी समिधा अग्रवाल से। श्रोताओं, हमारे छत्तीसगढ़ में खेलों का माहौल काफ़ी अच्छा हो चुका है और यहाँ खिलाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खेलों के संघ और संघ के पदाधिकारी खेलों को निखारने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में खेलों की संभावनाओं को देखते हुए कई नेशनल चैंपियनशिप होते रहते हैं। श्रोताओं, इसी कड़ी में बीते कुछ माह यहाँ एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय इवेंट हुआ था, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, जिसमें कई खिलाड़ी और कई खेलों को शामिल किया गया था। श्रोताओं, इसी तरह खेलों के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में अनुकूल माहौल बनते देखा जा रहा है और यहाँ के खिलाड़ी बाहर नेशनल इंटरनेशनल तक जा रहे हैं। ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं समिधा अग्रवाल, जिन्होंने म्यूथाई के खेल में अभी हाल ही में 1-4 जून को जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में भाग लिया, जो उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजित किया गया था। वहाँ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे समिधा अग्रवाल से। तो समिधा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: तो समिधा, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप म्यूथाई के खेल से कब से जुड़ी हैं, अभी पढ़ाई करती हैं तो किस क्लास में हैं और खेलों से आपका जुड़ाव कैसे हुआ?
1: म्यूथाई खेलते हुए मुझे 3 साल हो गए हैं। मैं अभी 11th ग्रेड में हूँ। मैं जब क्लास 9th में थी तब मैं ज्वाइन की थी और बस स्कूल के थ्रू ही ज्वाइन किया था मैंने। स्कूल में देख के मज़ा आता था सबको स्पोर्ट्स में, तो ऐसा था मुझे भी चालू करना है और वैसे ही करते करते मैंने म्यूथाई ज्वाइन किया और अब इसे 3 साल हो गए इस जर्नी को।
0: तो इन 3 सालों की जर्नी में आपने कहाँ से शुरुआत की और अभी आप कहाँ पहुँची हैं? मतलब आपका शुरुआती जो खेल था जहाँ आपने कोई मेडल प्राप्त किया हो, उसके बाद आज जो आपने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में उत्तराखंड में भाग लिया, इस दौरान के सफ़र को आप बताएं कि कितने खेलों में आप शिरकत की है?
1: चालू तो मैंने बहुत ऐसे लो लेवल से किया था, उस टाइम मैं बिल्कुल भी स्पोर्ट्स में नहीं थी। फिर चालू करने के बाद मेरा पहला नेशनल था असम, गुवाहाटी असम में, वहाँ नेशनल में भी मेरा गोल्ड मेडल था। फिर दूसरा था हरियाणा में, रोहतक हरियाणा, वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल था। फिर ये मेरा तीसरा नेशनल था हल्द्वानी उत्तराखंड में, जहाँ गोल्ड मेडल था।
0: जी जी। तो समिधा, हम बात कर रहे हैं आपके खेलों के बारे में, तो जूनियर नेशनल जो चैंपियनशिप हुआ हल्द्वानी में उत्तराखंड में 1-4 जून, वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ एंट्री की क्या प्रोसेस थी, वहाँ किन किन टीमों ने भाग लिया?
1: वहाँ पूरे इंडिया से हर स्टेट से लोग आते हैं खेलने, नॉर्थ

0: इससे पंजाब, हरियाणा, साउथ से, केरला वगैरह हर जगह से आते हैं। और हमारे एंट्री का प्रोसेस तो यही था कि सर ने हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया था, फिर पूरी टीम के साथ हम गए थे हल्द्वानी,
1: जी
0: फिर वहाँ जाके गोल्ड मेडल लगा था। वहाँ पे 3 फाइट हुई मेरी, फर्स्ट फाइट हुई राजस्थान के साथ, सेकंड हुई मध्य प्रदेश के साथ, और फिर थर्ड मिजोरम के साथ।
1: तो जो आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फाइट हुई उसके बारे में बताएं कि वो जो एक सिंपल गेम होता है, फिर उसके बाद आप फाइनल में पहुंच, सेमीफाइनल फाइनल।
0: फर्स्ट फाइट मेरी जो राजस्थान के साथ हुई, वो अब मुझे 3 साल हो गए और एक्सपीरियंस भी मिल गया है, तो मेरे लिए वो बहुत इजीली निकली। वो फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट मिल गया था सामने वाली ओपोनेंट को। फिर सेकंड जो मध्य प्रदेश के साथ हुई, वो अच्छी टक्कर मिली थी, वो हाइट में मेरे से लंबी भी थी। और फिर तीसरी हुई थी मिजोरम के साथ, वो भी बहुत अच्छी टक्कर मिली, और फिर उसके बाद
1: गोल्ड
0: गोल्ड।
1: जीता
0: हाँ
1: जी, जो आपने जीता, तो एक जो म्यू थाई के खिलाड़ी है, जैसे आप खुद भी एक खिलाड़ी हैं, तो एक म्यू थाई के खिलाड़ी के लिए क्या आवश्यक है गोल्ड जीतने के लिए? चूंकि आपने गोल्ड जीता है, जिन्होंने सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज जीता, वो क्यों आपसे पीछे रह गए, क्या कारण हो सकता है?
0: ट्रेनिंग है सब चीज़, तो ट्रेनिंग और माइंडसेट के ऊपर है। मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया 3 साल का इतने टूर्नामेंट्स का, तो वो चीज़ें भी हेल्प करती है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंट रहना, रेगुलर रहना, प्रैक्टिस मिस ना करना। और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस तो जितनी फाइट्स खेलोगे उसके साथ मिलते जाता है।
1: और आपने अभी तक बताया आपने 3 नेशनल खेले हैं,
0: हाँ
1: और नेशनल के साथ कुछ हो सकता है, आपने स्कूल्स में भी कुछ खेले हों या लोकल में भी जो
0: हाँ।
1: कुछ प्रादेशिक खेल होते हैं वहाँ पे भाग लिया, उनके बारे में बताएं कि छत्तीसगढ़ के अंदर आपने कितने और इवेंट्स में भाग ले चुकी हैं।
0: मैं अपने एकेडमी अमन सर के अंडर में मैंने मुए थाई खेला है, किक बॉक्सिंग भी खेला है। किक बॉक्सिंग में जो खेलो इंडिया का अस्मिता वुमेन्स लीग हुआ था, उसके नेशनल में भी गए थे हम, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था। और कलरीपयट्टू में मैं खेलो इंडिया भी खेली हुई हूँ अमन सर के अंडर। और अपने स्कूल से मैं खेली हुई हूँ क्लस्टर, एथलेटिक्स का क्लस्टर खेली हुई हूँ, उसमें भी नेशनल लेवल तक गई थी मैं, वो हुआ था बनारस में।
1: तो कलरीपयट्टू भी आप खेली हैं, तो म्यू थाई और कलरीपयट्टू ये क्या होते हैं, इसे अलग अलग समय बताएं।
0: कलरीपयट्टू जो है इंडिया का के इंडिजीनियस गेम है, ये ओलंपिक में नहीं है और ये कहीं बाहर की कंट्रीज़ में भी नहीं खेला जाता है। इसको मदर ऑफ मार्शल आर्ट्स भी बोला जाता है, और ये मोस्टली केरला में ही चलता है, पर ये वहाँ का मार्शल आर्ट्स है
1: जी। तो समिधा, म्यू थाई के खेल से आप जुड़ी हैं, तो म्यू थाई के बारे में हमें बताइए कि इसका म्यू थाई नाम क्यों है और इस म्यू थाई का स्कोप छत्तीसगढ़ में कैसा है?
0: मुए थाई ये एक थाईलैंड का गेम है, ये थाईलैंड से आया हुआ है। और मुए थाई को आर्ट ऑफ 8 लिम्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग पंचेस, किक्स, नीज, एल्बोस सब यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको आर्ट ऑफ 8 लिम्स भी बोला जाता है। ये देखा जाए तो वन ऑफ द डेडलीस्ट कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आता है, और बाहर की कंट्रीज़ में तो इसका बहुत स्कोप है, इंडिया में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर छत्तीसगढ़ में मतलब अभी बढ़ ही रहा है, प्रोसेस में है
1: जी। तो इसे कैसे खेला जाता है, इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स लगते हैं, आप मतलब कौन कौन से आपको इसमें सामान लगते हैं खेलते समय, और इसे खेला कैसे जाता है, कितने खिलाड़ी हो सकते हैं, इसके बारे में बताएं।
0: ये इसके लिए एक बेसिक किट कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हर प्लेयर के पास होनी चाहिए, जैसे कि हैंड रैप्स होते हैं, माउथ गार्ड होता है, ग्लव्स होता है, ये सब तो हर प्लेयर के पास होने ही चाहिए। फिर उसके बाद जब आप टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो वहाँ फाइट्स में आपको पूरा किट मिला जाता है। शिन गार्ड पहनते हैं शिन कवर करने के लिए, चेस्ट गार्ड पहना जाता है, हेड गार्ड पहना जाता है, ग्लव्स, ये सब पहन के खेला जाता है। और रिंग के अंदर होती है इसकी फाइट, 3 मिनट के 3 राउंड्स होते हैं इसकी एक फाइट में।
1: जी, तो जिस तरह आपने बताया कि इसमें गार्ड्स जो काफी
0: हाँ।
1: आवश्यक होते हैं, तो क्या इसमें चोट लगने की संभावना भी होती है?
0: हाँ, इसमें चोट लगने की संभावना तो होती है, पर इससे लिए एमेच्योर फाइटर्स जो चालू करते हैं खेलते हैं, वो लोगों को इस कैटेगरीज में खिलाया जाता है जिसमें सारे गार्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया चेस्ट गार्ड, शिन गार्ड, ये सब। और जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है, जैसे इलीट में जाते हैं और प्रो लेवल में जाते हैं, तो वो सब में गार्ड्स नहीं रहते, वो सब में सिर्फ ग्लव्स के साथ खेला जाता है
1: जी। तो आप जैसे कि बताया कि आपने बताया कि एसोसिएशन से आपको काफ़ी मदद मिल पाती है, तो जब कोई चैंपियनशिप होता है, कहीं कोई प्रतियोगिता होती है, तो एसोसिएशन कितना उसमें आपके लिए प्रभावी रहता है?
0: एसोसिएशन तो रजिस्ट्रेशन हम ही लोगों को कराना होता है, और एसोसिएशन का तो मेन यही काम होता है कि वो टूर्नामेंट अच्छे से कराए, एथलीट्स को रुकने, खाने पीने और जो स्टेडियम रहे वो सब

0: अच्छे से मिले, तो एसोसिएशन का तो मेन काम वही होता है।
1: ठीक है, तो समिधा आप अभी पढ़ाई भी करती हैं?
0: हाँ।
1: तो और म्यूथाई के खेल से भी जुड़ी हैं, तो किस तरह मैनेज करती हैं अपने पढ़ाई और खेलों को?
0: अभी तो जैसे मेरी समर हॉलीडेज, एग्जाम के बाद वाला टाइम, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और ज़्यादा वर्क डाल सकते हैं, ये वो टाइम रहता है हम लोगों के लिए। क्योंकि एक बार जून से हम लोगों के स्कूल स्टार्ट्स हो जाते हैं स्कूल स्टूडेंट्स के, तो वो लोगों को पढ़ाई भी साथ में लेते हुए चलना होता है। तो वही है कि सुबह शाम तक पढ़ाई चलती है, फिर शाम को 3 घंटा प्रैक्टिस।
1: तो समिधा आप लड़की हैं, तो आप अपने जैसी जो साथ में जो भी कई लड़कियां होंगी आपकी क्लास में होंगी स्कूल में, तो उनके लिए आप खेलों को कितना ज़रूरी समझती हैं? क्योंकि आप एक खिलाड़ी हैं, नेशनल खेल चुकी हैं, तो कितना ज़रूरी होता है खेलना
0: गर्ल्स, वैसे तो सारे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, बट स्पेशली गर्ल्स के लिए ये और ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिलता है सभी को। इससे पर्सनालिटी डेवलप होते, खुद ग्रो करते हैं, डिसिप्लिन आता है, कॉन्फिडेंस आता है, जो डेली लाइफ में आप बाकी काम करेंगे वो सब में ये आपको ग्रो करने में हेल्प करता है स्पोर्ट्स। और फिर उसके बाद मार्शल आर्ट्स, तो वो सेल्फ डिफेंस में भी आ जाता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए तो ये और अच्छी बात है।
1: कार्यक्रम में चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अभी जूनियर नेशनल खेल रही हैं।
0: हाँ।
1: तो सीनियर नेशनल और उसके बाद और कहाँ तक आप खेलना चाहती हैं?
0: मेरा प्लान तो और बहुत अभी आगे तक का है, पर सबसे पहला अभी मेरा नेक्स्ट गोल है स्कूल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो मलेशिया में हो रही है, उसके लिए अभी सबसे नेक्स्ट गोल तो वही है।
1: जी।
0: हो रहा है अभी 16 जून से, हाँ 16 जून से 22 जून तक मलेशिया में।
1: जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस इंटरनेशनल इवेंट की आप बात कर रही हैं वहाँ से भी आप गोल्ड लेकर आएँ, छत्तीसगढ़ का नाम करें और म्यूथाई के खेलों को विश्व पटल पर स्थापित करने, प्रदर्शित करने में आप जो मेहनत कर रही हैं उसमें आप ज़रूर सफल हो। और आप खेल संसार कार्यक्रम में आई और हमारे श्रोताओं को जो अपने खेलों से संबंधित अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

कार्यक्रम खेल संसार अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 हुए हैं। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए इस गीत से। नगमा निगार शकील बदायूनी, मौसिकार नौशाद और फिल्म है मुगले आजम।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुने रूप तेरा मस्ताना फिल्म का गीत, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के, गीतकार असद भोपाली और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म मेला में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है RD बर्मन ने।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

ये आवाज़ है लता मंगेशकर की, नगमा निगार कलाम अमरोही, मौसिकार गुलाम मोहम्मद और फिल्म का नाम है पाकीज़ा।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में अनपढ़ फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं राजा मेहदी अली खान ने और तर्ज बनाई है मदन मोहन ने।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं पंचराम चरण और साथी। आइए श्रोताओं, पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए पहले सुने पंचराम चरण और साथियों के स्वर में रहस्य गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, आगामी मंगलवार 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा हमारे सुरक्षित भविष्य का आधार जैव विविधता का संरक्षण। और इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉ. पूर्णेन्द्र साहू, अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय साजा बेमित्रा। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 30 जून 2026 को दिन के 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए पंचरामचारण और साथियों के स्वर में श्रम गीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार थे पंचरामचरण और साथी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों को संबोधित करेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। अभियान के तहत 35,98,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वी आर भगत ने बताया कि आज जो बच्चे पोलियो की खुराक नहीं ले पाएंगे उन बच्चों को अगले 2 दिनों तक यानी 29 और 30 जून को घर घर जाकर खुराक दी जाएगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला सुनाते हुए 6वें और 7वें वेतन आयोग से जुड़े 59 महीने के बकाया एरियर के भुगतान का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार की रिट अपील खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि 2 राज्यों के बीच वित्तीय समन्वय या सहमति का अभाव पेंशनरों के वैध अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिनों के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल 29 जून से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। 6 जुलाई तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। रायपुर में आगामी 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सहकार मेले में सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियों और सफल मॉडलों का दर्शन भी किया जाएगा। 6 जुलाई को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्सों में गोदाम निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और दुनिया के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पद्मश्री डॉ. बुधरी ताती ने कल रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के उत्थान, लोक संस्कृति के संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में डॉक्टर ताती के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा के छोटे से गांव से निकलकर डॉक्टर ताती ने 4 दशक से अधिक समय तक बस्तर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। सरगुजा जिले के रामगढ़ में कल 29 जून से 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। महोत्सव के पहले दिन 29 जून को छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर आधारित विभिन्न लोक नृत्य और लोकगीत प्रस्तुत किए जाएंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं आगामी 7 दिनों तक पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधि में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी से कथित 250 टन लोहा चोरी के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर 1 जुलाई को न्याय की मशाल यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी गई है। तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रायपुर में 2 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड के 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और दुनिया के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। प्रस्तुत करता है तारकेश्वरी आसुदानी।

0: रविवार की सुबह, इत्मीनान की सुबह, फुर्सत की सुबह। इस दिन हम सबको इंतजार होता है कुछ सुकून भरे पलों का। तो आ गए हैं वो पल, क्योंकि अब शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। फोन इन फरमाइश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ तारकेश्वरी, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में तैयार रहिएगा कागज और कलम लेकर या अपने मोबाइल का कीपैड ऑन रखकर, क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान हम आज आपको बताएंगे वो फोन नंबर जिससे आप जुड़ सकते हैं सीधे हमारे साथ। तो बने रहिए आकाशवाणी रायपुर के साथ और कार्यक्रम फोन इन फरमाइश में सुनिए किसका है ये पहला कॉल। हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, योगेश जांगड़े, बेमेतरा।
0: योगेश जांगड़े जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं, और काफी अंतराल के बाद फोन लगाए हैं।
0: पिछली बार कब लगा था आपका कॉल?
1: 3 से 4 माह हो गया है।
0: तो आपने बहुत समय के बाद आज इस कार्यक्रम में कॉल किया है, बताइए क्या कहना चाहते हैं?
1: बस यही कहना चाहेंगे कि कार्यक्रम से लगातार आकाशवाणी रायपुर से बचपन से नाता रहा है और वो अनवरत जारी है। उनसे जब भी रेडियो सुनना शुरू किए हैं तो सबसे पहले आकाशवाणी रायपुर से ही शुरुआत हुआ है।
0: तो आपका नेह स्नेह आकाशवाणी रायपुर से यूं ही बना रहे। अब बताइए आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपको सुनवा दें?
1: अब गर्मी काफी तेज है, बारिश का अभी तक पता नहीं चल पाया है, तो फिल्म सावन को आने दो का टाइटल सॉन्ग सुनवा देंगे।
0: आपकी फरमाइश पर आइए सुने फिल्म सावन को आने दो का ये बहुत प्यारा सा गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: मैं योगेश कुमार साहू जुनाडी बेनकुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ।
0: योगेश कुमार जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ दीदी। आप मैं इसमें तो पहला बार लगा है मेरा दीदी।
0: पहली बार आपका कॉल लगा है, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत खुशी हो रहा है।
0: तो बताइए क्या कहना चाहते हैं? आपका पहली बार कॉल लगा है और कब से सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रायपुर?
1: आकाशवाणी रायपुर तो मैं बचपन से सुन रहा था, बचपन से ही घर पे रेडियो था तो मैं बचपन से ही सुन रहा था। तो अभी तो और बहुत अच्छा हो गया है कि अपना मोबाइल ऐप से कहीं भी हम रेडियो सुन सकते हैं। और क्या है, मैं दर्जी का काम करता हूँ तो काम करते करते अच्छा से सुन लेता हूँ, सभी कार्यक्रम सुनता हूँ। युवानी है अपना, फोन करे छत्तीसगढ़ी गीत सुने, ये तो और बहुत अच्छा लगता है।
0: मतलब आप हमारे सारे कार्यक्रम सुनते हैं और फरमाइश हम तक पहुंचाने के लिए कॉल भी करते हैं। तो बताइए आज के इस फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में कौन सा गीत आपको सुनवा दें?
1: फिल्म जिगर का प्यार की कागज पे दिल की कलम से अभिजीत भट्टाचार्य और साधना सरगम का गाया हुआ गीत है।
0: तो आइए आपकी पसंद पर सुने फिल्म जिगर का यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मेरा नाम है छोटू चक्रधारी, करगी रोड कोटा बिलासपुर सीजी से बात कर रहे।
0: छोटू चक्रधारी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी हाँ।
0: करगी रोड में आप क्या करते हैं?
1: हम सिलाई का काम करते हैं।
0: और आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण कब कब सुनते हैं?
1: आकाशवाणी रायपुर से दिन भर चलते रहता है, इधर काम होते रहता है, इधर गाने का आनंद लेते।
0: तो आज के इस कार्यक्रम में आपने कॉल लगाया है, बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहते हैं?
1: मैम, दलाल फिल्म का गाना है, चोरी चोरी तेरे संग आँखियाँ मिलाई, ऐसे टाइप का है।
0: तो आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दलाल का यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं जयराम नगर से तीजराम बघेल बोल रहा हूँ।
0: तीजराम बघेल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: जयराम नगर कहाँ पड़ता है भैया?
1: ये बिलासपुर स्टेशन से एक स्टेशन के बाद दूसरे स्टेशन है दीदी, रेलवे स्टेशन गतौरा के बाद जयराम नगर।
0: तो क्या करते हैं आप वहाँ?
1: मैं ब्लाइंड हूँ दीदी और संगीतकार हूँ। मैं ट्रेन में गाना बजना करता हूँ और स्टेज प्रोग्राम में ऑर्गन प्लेयर करता हूँ, बड़ा वाला ऑर्गन बजा।
0: तो आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यक्रम कब कब सुनते हैं?
1: मैं आपके कार्यक्रम ही सुनकर ही तो मैं गाना गाना सीखा हूँ दीदी, और रेडियो के माध्यम से मैं हारमोनियम बजाना ऑर्गन बजाना बचपन से रेडियो सुन रहा हूँ दीदी मैं।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने रेडियो सुनकर संगीत में कुछ उपलब्धि हासिल की है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर। जुड़े रहिए आकाशवाणी रायपुर के साथ, हम आपको सुनवाते हैं यहाँ आपकी पसंद के गीत। बताइए आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपको सुनवा दें?
1: तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो। ये वाला गाना सुनना है दीदी, ये फिल्म का नाम है जीने नहीं दूंगा। ना बहुत दिन हो गया सुना नहीं हूँ दीदी, आप हो सके तो गाना सुना।
0: तो आपकी पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म जीने नहीं दूंगा का यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हाँ जी, फोन इन फरमाइश जी। मैं मनोज कुमार साहू बोल रहा हूँ, मेघापारा लोहनी से।
0: मनोज कुमार साहू जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: वेलकम।
0: कैसे हैं आप
1: जी? मस्त हैं, हैप्पी हैप्पी कुशल मंगल, आप लोगों की दुआ।
0: क्या करते हैं
1: जी? खेती बाड़ी करता हूँ, अपनी छोटी सी दुकान भी है।
0: अच्छा, और दुकान पे काम करते करते हमारे कार्यक्रम भी सुनते हैं,
1: उठाते हैं ना, मजा आता है। एक्चुअल में बैठे बैठे जो रेडियो सुनने की जो अनुभूति होती है ना, रेडियो दुकान में ही रहता है।
0: अपने काम के साथ आप रेडियो का आनंद भी लेते हैं, और आज के इस कार्यक्रम में आपने कॉल लगाया है। बताइए, कौन सा गीत आपको सुनवा दें?
1: अखियों के जहर से सुना दीजिएगा, टाइटल सॉन्ग ही सुना दीजिएगा।
0: तो आपकी पसंद पर आइए सुने फिल्म अखियों के झरोखे से का यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अखियों

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए हैं।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
5: यादें।
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
8: सुनिए।

0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। अब श्रोताओं नोट कीजिए वो फोन नंबर जिस पर हर शुक्रवार दिन में 11 बजे कॉल करके आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर नोट कीजिए, नंबर है 400-3482। दूसरा फोन नंबर है 400-3483 और तीसरा फोन नंबर है 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। तो इस नंबर पर कॉल कीजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम फोन इन फरमाइश में और सुनते हैं अगला कॉल। हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार,
1: मुकेश साहू बोल रहा हूँ जी, कर्नाटक से, जिला कोलार से।
0: मुकेश साहू जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: कैसे हैं आप?
1: अच्छे दीदी।
0: बताइए आज के इस कार्यक्रम में क्या कहना चाहते हैं मुकेश जी आप?
1: जी दीदी, अब मानसून तो लगभग पहुंच चुके हैं सभी तरफ, तो बारिश के दिन शुरू हो गए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं क्योंकि इस साल बहुत गर्मी पड़ा है, पानी का भी जल स्तर दिनों दिन घटते जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं इस सीजन।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसीलिए 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव भी मनाया जाता है भारत में, ताकि इस दौरान पौधे रोपे जाएं, ताकि अगले 4 महीनों में वे पौधे पनपते रह सकें। इस बढ़िया विचार के बाद अब जानना चाहते हैं आपकी पसंद का वो गीत जो आज इस कार्यक्रम में आप सुनना चाहते हैं।
1: फूल और कांटे का सुना देना दीदी, पहली बारिश में।
0: आपकी पसंद पर आइए सुने फिल्म फूल और कांटे का यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: मैं उमेंद कुमार निषाद ग्राम से मंगलौर से बोला।
0: उमेंद कुमार निषाद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैम, बढ़िया।
0: आप हमारे नियमित श्रोता हैं, लगातार हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, उनकी समीक्षाएं और अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश हमारे विभिन्न कार्यक्रमों तक अपने ईमेल के जरिए पहुंचाते रहते हैं। बताइए, आज के इस फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में आपने कॉल किया है, क्या कहना चाहते हैं?
1: आप लोगों को भी कार्यक्रम बहुत प्रस्तुति बहुत अच्छा रहता है, कार्केश्वरी दीदी बहुत अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा कार्यक्रम आता है।
0: हमें बहुत आनंद आ रहा है ये सुनकर कि आपको हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हैं। बताइए, आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपको सुनवा दें?
1: बरसात फिल्म का गीत सुनाना है।
0: कौन सी बरसात फिल्म, नई की पुरानी?
1: नई वाला।
0: कौन सा गीत सुनना चाहते हैं उसका? सर
1: कोई भी हो मैम।
0: तो आपकी पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म बरसात का ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका भी।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हाँ तारा जी, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं मानवेंद्र साहू बोल रहा हूँ, घर पार बांधा बाजार।
0: मानवेंद्र साहू जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद मैडम।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत ही अच्छे हैं मैडम जी, और मानसून के इंतजार में हम सभी निगाहें गड़ाए हुए हैं आसमान की तरफ कि कब बारिश की छटा हमारे धरती पर रोश की बूंदे गिरी और किसानों के चेहरे पर, हम सभी के चेहरे पर एक मुस्कान की झलक प्राप्त हो।
0: जी बिल्कुल, बारिश का इंतजार हम सभी कर रहे हैं और खासकर किसान, पर आम इंसान बारिश का इंतजार करता ही है क्योंकि तपन से राहत बारिश के आने पर ही मिलेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इस बार बहुत गर्मी पड़ी मैडम, आप देख ही रही हैं कि शुरू से जब गर्मी था तो अभी तक एकदम लास्ट तक पूरा बेतहाशा गर्मी थी, है ना
0: जी।
1: तो इस बार हम बारिश में लोगों से विनती करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पानी बचाएं।
0: बहुत अच्छा विचार, और इस विचार के साथ ही हम जानना चाहते हैं वो गीत जो आज इस कार्यक्रम में आप सुनना चाहते हैं।
1: फिर मैं आपकी कसम कहेगी सुना देना, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में है और गीत के बोल हैं, करवटें बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम।
0: तो आपकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म आपकी कसम का यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी, शुक्रिया।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फोन इन फरमाइश को यही समाप्त करने की अब अनुमति दीजिए। आप सभी को तारकेश्वरी का नमस्कार।
1: कार्यक्रम फोन इन फरमाइश अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थी तारकेश्वरी आसुदानी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 10:55 हुए हैं।
2: ये मन की बात है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन
2: नैतिक योग्यता आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: महात्मा गांधी का कहना है,
4: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
5: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
6: कोई बोले राम राम।
5: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। The best of entertainment, information, education अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी, रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले
4: ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी, और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है।

और इस जनभागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड, सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपये का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को
2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को
कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने
खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने

अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया, ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति

0: हमारे देश के लोग हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। दिन के 11:32 हुए हैं। प्रस्तुत है मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद।
3: मोर देश के मयारुक रहवैया हो, जोहार। मन की बात मा एक घाव फेर आप सबो मन ले जुरिया के मुला अब्बड़ आनंद होवत हे। 2026 के आधा बछर पहावत हे। ये 6 महीना मा हमन मन की बात मा देशवासी मन के अनेक उपलब्धि मन के चर्चा करे हन। जून मा घलो देश ह कुछ ऐसने उपलब्धि प्राप्त करे हे जेन हर देशवासी ल गर्व ले भर देथे। ये सफलता मन देश के सुरक्षा और आत्मनिर्भरता ले जुड़े हैं। हालिच मा मुला कोलकाता मा नौसेना ले जुड़े एक ठन कार्यक्रम मा सम्मिलित होए के मौका मिलिस। वहाँ INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय ल भारतीय नौसेना के बेड़ा मा सम्मिलित करे गईस। ये जहाज मन के डिजाइन और उत्पादन तको सबो कुछ स्वदेशी हे। संगवारी हो, जूनेच के महीना मा विमानन क्षेत्र मा घलो देश ह एक बड़का सफलता पाइस। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया हे, और C-295 विमान ह अपन पहली उड़ान पूरा करे हे, और ऐसने 40 विमान भारत में बनाए जात हैं। एखर ले MSME और अंतरिक्ष क्षेत्र ला नवा ताकत मिलत हे, रोजगार के अवसर बढ़त हे और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प घलो मजबूत होवत हे। इही महीना DRDO ह स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के घलो सफल परीक्षण करे हे। एला DRDO के प्रयोगशाला और भारतीय उद्योग हिस्सेदार मन मिल के बनाए हैं। माने आज समुद्र ले लेके आगाज तक हमार भारत ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनत हे। संगवारी हो, जून मा एक ठन औ आयोजन होइस जेमे जम्मो दुनिया भारत के प्रयास ले जुड़ीस और ये कार्यक्रम रहीस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये पैत दुनिया के 2500 ले ज्यादा ठियामा योग के अनेक विविध कार्यक्रम होइस। हमार देश मा करोड़ों लोगन मन ठिया ठिया मा योग कार्यक्रम मन मा हिस्सा लेन। ये महीना अहमदाबाद मा आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप के घलो बड़ चर्चा होइस। एमे भारत ह कुल 114 पदक जीते हे, एमाले 102 स्वर्ण पदक घलो सम्मिलित हे। भारत ये प्रतियोगिता के पदक तालिका मा पहली स्थान मा रहिस। मैं सबो विजेता खिलाड़ी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हौं। संगवारी हो, कोनो भी राष्ट्र के आत्मा ओखर मन के मन होते और जब वो देश के लोगन मन कोनो संकल्प लेते तब कोनो भी शक्ति वो मन ला अपन लक्ष्य ले नहीं डिगा पाए। राष्ट्र निर्माण मा जनभागीदारी के ये ताकत भारत के बहुते बड़का पूंजी है और ये जनभागीदारी के हम बार बार अनुभव करत हन। संगवारी हो, पश्चिम एशिया में बने युद्ध के स्थिति ला देखत मैं देशवासी मन ले कुछ आग्रह करे रहे हूं। मैं कहे रहे हूं कि जहां तक संभव हो कुछ बखत खातिर गोल्ड सोना बिसाए ले बाँचें। लोगन मन ले कहे रहे हूं कि विदेश में छुट्टी मनाए ले बाँचें। मैं लोगन मन ले कार के सामूहिक उपयोग ला घलो बढ़ावा दे के अपील करे रहे हूं। मैं किसान मन ले रसायन मुक्त खेती बर खेत बचाए खातिर और प्राकृतिक खाद के ज्यादा ले ज्यादा उपयोग के आग्रह करे रहे हूं। संगवारी हो, मैं देश के हर नागरिक के आभारी हौ कि मोर अपील के वो मन न सिर्फ समर्थन करिन भलुक हर कोती ले ओ में अपन सहयोग करत हैं। मोला कईयों परिवार मन संदेशा भेज के अपन अनुभव साझा करे हैं। कतकोन परिवार मन ये तय करे हैं कि घर के बिहाव मा ये पैत सोना नहीं बिसाही, जरूरत पड़ी तब पुराना सोना ला रिसाइकिल करके नवा गहना बनवा ले ही। कतकोन लोगन मन सोशल मीडिया में ये घलो लिखे हैं कि कैसे वो मन ये पैत विदेश यात्रा ला टाल दे हैं। संगवारी हो, कार के सामूहिक उपयोग ला लेके घलो लोगन मन अनेक अनुभव साझा करे हैं। जिन लोगन मन हर दिन एके दिशा मा अपन अपन वाहन ले जाते हैं, वो मन अब एक साथ जाए लगे हैं। लोगन मन हर संभव बस और मेट्रो के उपयोग करत हैं। एखर ले पेट्रोल और डीजल के बचत होवत है। यही रकम देश के आने आने हिस्सा मा प्राकृतिक खाद के खपत बढ़े के घलो खबर आवत है। संगवारी हो, मोला ये बात के खुशी है, ये वैश्विक आपदा के हम भारतीय मिल के मुकाबला करत हन। मोला विश्वास है जनभागीदारी के ये शक्ति हमन ला मजबूती देही, हमन ला सफल बनाही। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, हमार देश मा जन्मदिन बर बिहाव पारिवारिक कार्यक्रम होए के संगे संग जम्मो समाज के उत्सव घलो होते। हर परिवार चाहते कि ओखर खुशी मन आने मन संग घलो साझा होवे। लोगन मन पहुना मन ला उपहार घलो देते। संगवारी हो, महाराष्ट्र के नांदेड़ मा एक परिवार ह अपन खुशी बांटे बर ऐसन काम करीस जेन चर्चा के विषय बन गए हे। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव मा पेठ कर परिवार रही थे। ये परिवार ह सोचिस कि अगर खुशी बांटना है त ऐसन जिनिस दिए जाए जिन मुश्किल बखत मा कोनो परिवार के सहारा बने। अपन घर मा बिहाव के मौका मा ये परिवार ह गांव के लगभग 3,500 लोगन मन बर दुर्घटना बीमा के व्यवस्था करिस। हर मनखे ला 1,00,000 रुपया के बीमा कवर दिए गईस। ये पहल के पाछू के भावना बहुते स्पर्श करने वाला है। परवार ह देखे रहिस

0: दुर्घटना के बाद परिवार मन ल आर्थिक कठिनाई के सामना करना पड़थे। ऐसे बखत म एक ठन नानुक सहायता घलो बहुते बड़का संबल बन जाथे। संगवारी हो, सरकार देश के करोड़ों परिवार तक सुरक्षा के कवच पहुंचावत है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत खाली 20 रुपया के सालाना प्रीमियम, माने खाली एक बछर के 20 रुपया के प्रीमियम, ओखर ऊपर 2 लाख रुपया तक के दुर्घटना बीमा मिलते। अब तक ये योजना ले 58 करोड़ ले ज्यादा लोगन मन जुड़ चुके हैं। एमा करीबन 28 करोड़ हमार दाई बहनी बेटी मन हैं, माई लोगिन मन हैं। ये योजना ले पीड़ित परिवार ल अब तक जिन हिसाब मिले है 3,700 करोड़ रुपया ले ज्यादा के सहायता मिल चुके हैं। संगवारी हो, यही रकम ले प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना घलो उत्केच महत्तम के है। ये योजना मनखे के दुखद मौत होए मा ओखर परिवार ल 2 लाख रुपया के बीमा कवर देथे। एखर सालाना प्रीमियम खाली 436 रुपया है, माने एक दिन के बड़ मुश्किल 1.5 रुपया। ये योजना ले अब तक 27 करोड़ ले ज्यादा मनखे मन जुड़े हैं। एकर अंतर्गत देश के करीबन 11 लाख परिवार ल करीबन 22,000 करोड़ रुपया के सहायता मिल चुके हैं। ये आंकड़ा बहुते बड़ा है। ये आंकड़ा मन के पीछे लाखों परिवार मन के अपन अपन कहानी है। कहूं कोनो दाई लइका मन के पढ़ाई चालू रखे मा सहायता मिलीस, कहूं कोनो पत्नी ला घर के जिम्मेवारी संभाले मा सहारा मिलीस। संगवारी हो, कईयो घाव बहुते बड़का सुरक्षा के शुरुआत बहुते छोटे राशि और एक नानुक कदम ले हो सकत है। नान कुन निर्णय घलो बहुते बड़का बदलाव करथे। मोर आप जम्मो मन ले आग्रह है कि अपन परिवार मा ये योजना मन के जानकारी खचित साझा करो। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, मन की बात मा अब गोठ एक ऐसन विषय के जिन हजारों बछर जुन्ना है, हजारों बछर ले मानव समाज मा घर करके बैठ गए है। ये विषय है अंधविश्वास के। अंधविश्वास कईयों बारी खाली एक गलत धारणा नहीं होए, वो डर पैदा करते और जब डर मन मा हावी हो जाते तब मनखे सच ला देखना बंद कर देते। अंधविश्वास में बूढ़े लोगन मन फिर बिना तर्क के बिना सच जाने ऐसन फैसला ले लगते जेखर बड़ा नुकसान होते। उन्हें समाज में ऐसे लोगन घलो होते जिन विज्ञान अनुभव और तर्क के आधार में वो धारणा मन ला चुनौती देते। अंधविश्वास ले विश्वास तक के ये यात्रा आसान नहीं होए। और आज मैं ऐसनेच एक सफल यात्रा के बारे में आप मन ला खचित बताना चाहत हूँ। संगवारी हो, असम मा एक ठन चिरई पाए जाते। वो चिरई के नाव है हर गिला। हर गिला एक दुर्लभ चिरई है। ये प्रकृति ला स्वच्छ रखे मा महत्तम के भूमिका निभाते। फिर असम के कुछ क्षेत्र मन मा लंबा बखत तक इला अशुभ माने जात रहिस। लोगन मन इला अपन तीर तखार मा देखना पसंद नहीं करत रहिन। कईयो घाव वो पेड़ मन ला घलो काट दिए जात रहिस जेमे हरगिला के घोसला बने होत रहिस। सोचाओ, एक ऐसन चिरई जिन पर्यावरण के सफाई मा सहायता करते, उही हरगिला लोगन मन के डर के शिकार बन गए रहिस। इही दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन हा ये सब देखिन। वो लोगन के मन मा बैठे गलत धारणा ला बदले के संकल्प लेन। वो माई लोगिन मन ले गोट करिन। वो लोगन मन ला विज्ञान के आधार मा समझाइन। धीरे धीरे माई लोगिन मन ये अभियान ले जुड़े लगिन। फिर एक बड़का बदलाव शुरू हुईस। जेन चिरई ला कभू अशुभ मान के भगाए जात रहिस, उही गांव के चिन्हारी बने लगिस। हजारों ग्रामीण माई लोगिन मन हर गिला ल बचाए बर आघू आइन। आज वो मन ल हर गिला आर्मी के नाव ले जाने जाथे। ये माई लोगिन मन समाज के संग संघर्ष घलो करिन, समाज ल समझाए बर दिन रात काम करिन औ अंधविश्वास ल पाछू छोड़ करके रहिन। वो मन दिखाइन कि जब सही जानकारी पहुँचाए जाथे त कईयों बछर जुन्ना सोच घलो बदल सकत हे। संगवारी हो, मैं अक्सर कहिथौं कि जेन खेलथे वो खिलथे। आज देश में ऐसन युवा मन के संख्या बहुत तेजी ले बढ़त हे जेन मन खिलत घलो हैं और खिलत घलो हैं। पाछू के तुलना में अब कहूँ ज़्यादा युवा मन खेल ल कैरियर के रूप में अपनावत हैं। मुला नागालैंड के दो ऐसने प्रयास मन के बारे में जानकारी मिले है जेन बहुते दिलचस्प है। पहली प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाव सुन के आप मन ला खचित लगत हो ही, ये बहुते नानुक लैका मन के कोनो साधारण लीग हो ही। फिर ऐसा नहीं है, ये 5 ले 10-12 बछर के उम्र के नान नान लैका फूल असन लैका मन के एक असाधारण लीग है। और ये लैका मन के फुटबॉल खिलाड़ी मन के एक ऐसा लीग है जेन उनकर गतिला और प्रतिभा खातिर वो मन ला प्रेरित घलो करते और उनकर पहचान घलो बनाते। एकर शुरुआत नागालैंड के ज्यादा ले ज्यादा लैका मन ले फुटबॉल ले जोड़े के संग होए रहिस। 5 ले 12 बछर तक के लैका और नोनी मन एमे हिस्सा ले सकत हैं। ये लीग अब अपन 3 बछर पूरा कर चुके हैं। ये लीग के लैका मन के मन में बहुते अच्छा प्रभाव पड़े है। संगवारी हो, नागालैंड में एक ठन औ बने प्रयास हुआ थे। ओखर नाव है नागालैंड वुमन फुटसल लीग। हो सकत है आप मन पर ये फुटसल एक नवा नाव हो ही। मैं आप मन ला बतावत हूँ कि फुटसल ला इंडोर फुटबॉल घलो कहे जाते। एमे एक टीम में खाली 5 खिलाड़ी होते। खेल के मैदान घलो फुटबॉल के मैदान ले बहुत छोटे होते। यही कारण खिलाड़ी मन ला तेज फैसला करना होते। वो मन ला अपन तकनीक और कौशल के बेहतर उपयोग करना पड़ते। नागालैंड के महिला फुटसल लीग हमर बेटी मन ला अपन प्रतिभा दिखाए के बने अवसर देवत है। मैं ऐसन पहल खातिर नागालैंड के लोगन मन के सराहना करत हूँ। ऐसने प्रयास देश के आने हिस्सा मन ला घलो प्रेरणा देते। संगवारी हो, ये तकनीकी के युग है। हर दिन नवा शोध होवत है। नवा नवा AI नवाचार आघू आवत है। ये दौर में एक सवाल बहुते महत्वपूर्ण है, लोगन मन के रचनात्मकता ला कैसे बचाए रखे जाए। नवा तकनीक के संग आगू बढ़त हम अपन जड़ ले कैसे जुड़े रहन। ये सवाल के समाधान खोजे है नालंदा विश्वविद्यालय है। हजारों बछर जुन्ना हमर नालंदा विश्वविद्यालय अब नवा अवतार के रूप में भारत के भाग्य गढ़त है। 2 बछर पाछू मोला नालंदा विश्वविद्यालय के नवा परिसर के लोकार्पण के अवसर मिले रहिस। नालंदा विश्वविद्यालय है शास्त्रार्थ के हमर जुन्ना परंपरा ल फिर जीवंत करे है। शास्त्रार्थ खाली अपन बात रखे के माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन के एक अनुशासित प्रक्रिया है। एमे तर्क के संग तथ्य के संग अपन बात कहना बहुते जरूरी होते और ओमे आप मन के महारत होना चाहिए। आने मन के विचार ल धैर्य ले सुने और समझे के सीख घलो ये शास्त्रार्थ के प्रक्रिया ले मिलते। मुला खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय इला अपन दीक्षांत समारोह के हिस्सा बनाइस। एमे भाग लेवैया करीबन आधा विद्यार्थी मन आने देश ले आए रहिन। एक जुन्ना परंपरा ला आज के बखत ले जोड़े के ये प्रयास बहुते सराहनीय है। मैं एखर बर नालंदा विश्वविद्यालय ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। मैं देश के आने विश्वविद्यालय मन ले घलो आग्रह करहूँ कि वो मन ऐसने पहल में विचार करें। संगवारी हो, जड़ मन ले जुड़े रही के युवा मन ला नवा तकनीकी बर तैयार करे के एक ठन औ बने प्रयास होवत हे। दिल्ली में स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कृत्रिम विद्वता और डाटा विज्ञान में बी टेक कार्यक्रम शुरू करैया है। ये आधुनिक तकनीक ला भारत के पारंपरिक ज्ञान ले जोड़े के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एखर ले भारतीय भाखा बनबर नवा एआई टूल तैयार करे मा सहायता मिली। हमर जुन्ना ग्रंथ औ पांडुलिपि मन ला डिजिटल रूप में संरक्षित करे के काम ला घलो नवा गति मिली। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ला ये प्रयास खातिर गाढ़ा गाढ़ा शुभकामना देवत हूँ। संगवारी हो, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के आने आने हिस्सा तक पहुँचत है। हमर गीत संगीत और अध्यात्म ला दुनिया भर के लोगन मन जानत हैं और अपनावत हैं। भारत ले हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर मा डोमिनिकन रिपब्लिक नाव के एक देश है। वहाँ भारतीय मन के संख्या करीबन 100 है, शायद एखर ले घलो कम हो ही। एखर बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म ले जुड़े एक बहुते अच्छा प्रयास वहाँ होवत है। वहाँ स्पेनिश बोले वाला कुछ लोगन मन एक टीम बनाए हैं। ये टीम के नाव हैं ब्रह्म कमल डोमेनिकाना। टीम के सदस्य मन मिलके वैदिक साहित्य के अध्ययन करत हैं। वो मन वैदिक मंत्र मन के उच्चारण घलो सीखत हैं। वो मन ला एखर कोनो औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिले है, फिर वो मन ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन के वैदिक मंत्र मन के सही उच्चारण सीखे हैं। आज वो मन कईयों मंत्र के बहुते अच्छा जाप कर लेते हैं। इमे पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मयम सम्मिलित है। भारत ले अतका दूर रही के हमर परंपरा मन ला सीखे के उनखर ये प्रयास बहुते प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमेनिकाना वहाँ के सबो सदस्य मन ला उनखर प्रयास खातिर शुभकामना देवत हूँ। मैं ऐसने सबो लोगन के हृदय ले सराहना करत हूँ जिन भारतीय संस्कृति ला दुनिया भर में लोकप्रिय बनाए खातिर सरलग प्रयास करत हैं। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, मेघालय के चिन्हारी बादल मन ले है, सुंदर दृश्य मन ले है। जेन मेघालय जाते ओला उहां के लोगन मन के अपनापन घलो लंबा बखत तक सुरता रही थे। फिर मेघालय के एक ठन और विशेषता है जेखर मैं आज मन की बात मा आप मन ले चर्चा करना चाहत हूँ। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ वाला रूट। ये रूट ब्रिज मन के कहने बहुते रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिन या कुछ बछर में नहीं बने, इला तैयार होए मा कईयों दशक लगते। रबर के पेड़ के जड़ मन ला धीरे धीरे दिशा दे जाते। ये जड़ मन ला जलधारा मन के पार ले जाए जाते। बखत के संग उही जड़ एक मजबूत ब्रिज के रूप ले लेते। ये ब्रिज मन के एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज हैं। बखत बीते के संग ये औ मजबूत हो जाते। एमे मेघालय के लोगन मन के सृजनशीलता दिखाई देते। इनखर पाछू कईयों बछर के धैर्य और प्रकृति के प्रति गहिर सम्मान है। ये ब्रिज बताते कि मनखे प्रकृति के संग मिलके कतको अद्भुत जिनिस बना सकत हैं। ये हमारे देश के, ये धरती के धरोहर हैं। अब भारत हा मेघालय के रूट ब्रिज मनला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क मा शामिल कराए बर आवेदन करे है। संगवारी हो, ऋतु परिवर्तन के कारण ये रूट ब्रिज मन के आघू कईयों चुनौती घलो आते। ऐसन बखत मा मेघालय के लोगन मन ये प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के जिम्मेदारी घलो बने असर निभाए हैं। पहली ये पता लगाना घलो आसान नहीं रहीस कि ऐसन ब्रिज मन के संख्या कतका है। स्थानीय लोगन मन खुदे एकर गिनती शुरू करिन। एकर बाद समुदाय मन ये ब्रिज मन के देखभाल के जिम्मेदारी घलो संभालिन। आज स्थानीय लोगन मन 120 ले ज्यादा रूट ब्रिज मन के देखरेख करत हैं। कुछ टीम मन हर बछर ये पुल मन के स्थिति के जांच करते हैं। कुछ लोगन मन ह तीर तखार के क्षेत्र ला मजबूत बनाए खातिर नर्सरी घलो तैयार करे हैं। ये रकम के उनखर संरक्षण खातिर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गए है। आप मन देखे हो ये बछर हेलीवार जिला पद्म पुरस्कार ले सम्मानित करे गए है। वो मन अपन जिंदगी के 50 ले ज्यादा बछर ये रूट ब्रिज मन के देखभाल में लगाए हैं। उनखर समर्पण हम सबो मन बर प्रेरणादायक है। संगवारी हो, आप मन कभू ये रूट ब्रिज के यात्रा करे हो ता ओखर फोटो सोशल मीडिया मा खचित साझा करो। आप मन के फोटो आने लोगन मन ला घलो मेघालय के ये अनोखा धरोहर के बारे मा जाने खातिर प्रेरित करही। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, हम सबो मन चाहथन कि हमार गांव साफ सुथरा होवे, हमार शहर सुंदर दिखे। फिर शायदे कभू रुक के ये सोचे जाते कि हमार तीर तखार मा जेन कचरा जमे होते ओला कौन साफ करते। ज्यादातर लोगन मन तो यही मान के चलते कि ये कोनो औ के जिम्मेदारी है औ वो सफाई कर ही। फिर हमार बीच कुछ ऐसन लोगन घलो होते जेन अपन सोच ले हमन ला बहुत प्रेरित करते। मोला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला के ब्यावरा के कुछ बहनी मन के बारे में जाने के मौका मिलेस। वो मन अपन तीर तखार मा बगरे प्लास्टिक कचरा ला हटाए के संकल्प लेन। ये नहीं सोचिन कि कोनो आ के बदलाव लाही। वो मन खुदे शहर भर ले प्लास्टिक कचरा और खाली बोतल इकट्ठा करना शुरू करिन। धीरे धीरे ये प्रयास आगू बढ़त गईस और फिर वो प्लास्टिक ला इको ब्रिक्स में बदले जाय लगिस। आज उही इको ब्रिक्स के उपयोग सार्वजनिक स्थान मन ल सुंदर बनाए में करे जात है। राजगढ़ में पाछू कुछ महीना में सैकड़ों किलो प्लास्टिक ल रिसाइकिल करके ओखर बेहतर उपयोग करे गए है। माने जेन प्लास्टिक पहली शहर में प्रदूषण फैलावत रहीस, आज उही ये बहनी मन के प्रयास ले शहर के सुंदरता बढ़ाए में योगदान देवत है। मैं व्यावरा के सबो बहनी और ये अभियान ले जुड़े संगवारी मन ला बधाई देवत हूँ। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, मोला कईयों लोगन मन पाती लिख के एक खास विषय में गोट करे के सुझाव भेजे हैं। ये विषय गणेश उत्सव ले जुड़े है। वैसे त गणेश उत्सव में अभी बने बखत बाकी है, फिर लोगन मन ह ये आग्रह करे हैं कि ये विषय में अभिच्छे बात होना चाहिए। असल में गणेश जी के मूर्ति बनाए के काम बहुत पहली शुरू हो जाते। मूर्ति बनाए वाला मूर्ति के व्यापार ले जुड़े लोगन मन अभी ले सक्रिय हो जाते हैं। यही पाए के मोर आप सबो मन ले एक आग्रह है। आप मन प्रयास करो कि आपके घर सोसाइटी या तीर तखार के ठिया मा गणपति बप्पा के जेन मूर्ति स्थापित हो वो हमर देश के माटी ले बने हो। वो हमर अपन कुम्हार और स्थानीय कलाकार मन के हाथ तैयार हुए हो। जेन लोगन मन गणेश जी के मूर्ति बनाते वो मन ले घलो मोर आग्रह है कि वो मन माटी के मूर्ति ल प्राथमिकता देवें और जेन लोगन मन मूर्ति बिसाते वो मन घलो ये खचित देखें कि गणपति बप्पा के मूर्ति का के बने हैं और कौन देश में तैयार हुए है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ले बने मूर्ति खचित झन बिसाएं। संगवारी हो, माटी के मूर्ति पूजा के बाद सहज रूप में पानी में विलीन हो जाते। एखर ले हमार नदिया तरिया और पर्यावरण के रक्षा होते। हमार आस्था घलो बने रही थे और प्रकृति के प्रति हमार दायित्व घलो पूरा होते। जब हम स्थानीय कारीगर मन ले मूर्ति बिसाथन, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प ल मजबूत करथन। मोला विश्वास है कि ये पैत गणेश उत्सव मा और ऐसने हर उत्सव मा हम ऐसने सब्बो बात ऊपर खचित गंभीरता ले सोचबो और देश हित मा कदम घलो उठाबो। संगवारी हो, हमर देश के सबले बड़का शक्ति हमर देश के लोगन मन है। देश के आने आने हिस्सा मा होवत नानुक बड़का प्रयास हमन ला बहुत कुछ सिखोथे। ये प्रयास बताते कि जब मन मा संकल्प हो और समाज के साथ मिले तक कोनो भी बड़का बदलाव लाए जा सकत है। आप मन अपन तीर तखार मा होवत ऐसन प्रयास मन के बारे मा मुला खचित लिखत रहो, अपन विचार और अपन सुझाव भेजत रहो। हो सकत है आपके तीर तखार के कोनो नानुक पहल जम्मो देश भर प्रेरणा बन जाए। अवैया महीना हम फेर मिलबो, देशवासी मन के कुछ नवा प्रयास मन के चर्चा करबो। तब तक आप मन अपन और अपन परिवार के ध्यान रखाओ। और हाँ, जल संचय तक करने करना है, बरसात के पानी के एक एक बूंद ला हमला बचाना है। कैच द रैन, ये अभियान थोरको ढीला नहीं होन देना है। तब मोर विशेष आग्रह है, वर्षा के बूंद बूंद पानी हम मिल के बचावन। गाड़ा गाड़ा धन्यवाद, जोहार।
1: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप आज रात 8 बजे सुन सकते हैं। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:01 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज कलाकार हैं मेहंदी हसन। पहली गजल मेहंदी हसन की आवाज़ में, कलाम मशरूर अनवर का है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं मेहंदी हसन की गाई गजलें। अगली गजल मेहंदी हसन की आवाज़ में। शायर हैं फैज़ अहमद फैज़।

आप सुन रहे थे मेहंदी हसन की कई गजलें। इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर की 12:30 हुई हैं। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत।

बिजली कड़कत हे, बादल गरजत हे, फिर पानी ह नई बरसत हे। जब हे पानी गिरही तबे भुइया की प्यास है बुझी, तगोरा है संगी झमाझम पानी के।

एकरे संगी कार्यक्रम आप मन के गीत मा आप मन के स्वागत करत हूँ और आप मन ला सुघर सुघर गीत सुनाए बर फरमाइश पाती लेकर आए हूँ मैं भावना शर्मा तो झोंको मोर मया भरे जय जोहार। संगी हो कार्यक्रम के पहली गीत ला सुने बर फरमाइशे ईमेल और पाती पठोए है हमारे श्रोता संगवारी मन अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ ले रिजवान खान आयशा सबीहा अनस और रेहान कर्मा चौक लोहाड़ी कवर्धा ले अशोक कुमार साहू लीलेश्वरी साहू खुशांत और निशांत साहू चिरमरी कुरासिया कालरी ले इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह और राम सहोदर रसेड़ा ले मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी योगेश कुमार संध्या कीर्ति कुमार और डिगेश साहू बडिंगखेड़ा पंजाब ले मिंटू टॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा कोरासी भैंसा रायपुर ले पवन कुमार साहू कांति देवी साहू पंकज साहू सुष्मिता और दीपिका साहू ग्राम रेवा बेरला ले अजय पांडे अदिति और अनन्या पांडे रायपुर ले प्रतीक मिश्रा और शैल मिश्रा बंगला मटिया बालोद ले शिव कुमार अंगारी अंजनी त्रयंबिका लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारी धसीवा ले छेदूलाल यादव श्रीमती सीता यादव अर्चना अरुणा अनुराधा और अल्पना यादव दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले छन्नूलाल यादव अनुराग अभिषेक अलका अनामिका बलदाव यादव कुमारी रानू खुशी प्रवीण साहू और सी एल यादव चूड़ी लाइन भाटापारा ले अब्दुल मजीद कुरैशी रिहाना बेगम और मोहम्मद साजिद तो आव सबो जन मन सुनना चाहत हो लता खापरडे और अनिता वासनिक के स्वर में ई गीत तो आव सुनन ई सुघर गीतला।

आवाव अब सुनाई जाए माधव चंद्राकर और संगी मन के स्वर मा ये गीत और ये गीत ला पसंद करे हैं हमार ए संगवारी मन पोटिया गला दुर्गले संजय साहू सुजाता साहू शशांक और सीमा साहू मिलाई गढ़ले रोशन लाल देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता डिम्पल बाबू प्रशांश और भाव्या देवांगन ग्राम सलोनी राजनांदगांव ले पुरानिक राम साहू सीताबाई साहू तोरण लाल और खुशबू साहू ग्राम कोल्हापुरी दुर्गले सूरज भान साहू और कमलाबाई बिनौरी फिंगेश्वर ले टीकम राम साहू योगेश्वर साहू हेमलता और टीकेश्वरी साहू मेचकर सोनहुर ले भूपेंद्र नाग पूर्णिमा नाग लिखित और तरुण दीप नाग अमली डी ले खिलेश्वर सिंह चौहान और मालती देवी चौहान ग्राम क्रोपर ले अभिजीत प्रांजलि प्रेमा और मंगलदास साहू राजीम ले गोप कुमार विशाखा विमल सानिध्य अश्विना और मयंक शर्मा बिलासपुर ले माही सात्विक पीयूष माधुरी और कामना पांडे गोल चौक रायपुर ले तृप्ता जोशी और आर्या श्री जोशी श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सियावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव ले मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु और अंकित देवांगन ग्राम खट्टी ले सुभाष शर्मा छाया शर्मा कुमुदनी शर्मा ओंकार शर्मा ईशोराम साहू मालती साहू और लोकेश साहू मोपका भाट्टापारा ले दयालु राम वर्मा तेज राम वर्मा सहदेव रामजी और चिरंजीवी वर्मा जय मा कर्मा रेडियो श्रोता संघ सिरी गातापारली धनेश्वरी साहू ओम प्रभा साहू बिंदेश्वरी साहू नागेश्वरी साहू चमेली साहू भूमिका साहू मोनिका और पूनम साहू त आवा सुनन माधव चंद्राकर और संगी मन के गाय एक गीतला।

कार्यक्रम का अगला गीत ला आवाज सुनन ममता चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकर के स्वर मा ये गीत। ये गीत ला सुने भर फरमाइश पाती पठोए हैं। लोरमी ग्राम चचेड़ी ले कमलकांत मरावी, प्रमीला मरावी, नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी। ग्राम सिंगारपुर ले चिंताराम धुर्वे, कामिन चंद्रध्वज और सानू धुर्वे। सलोनी घुमका देव ले देवचरण साहू, हेमा वेदांत और वैभव साहू। बिलाईगढ़ ले जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया जानवी और तृप्तेश देवांगन। ग्राम बुड़गान छत्तीसगढ़ ले राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रीश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। भरी टोला टोंडी बालोदली नमित कुमार गौतम, पीहू प्रियंका नीतू और मुरली गौतम। भाटापराले नारायण यदु, पुनिया यदु, राकेश यदु और आरती यदु। दतरंगी ले विश्राम यदु, पार्वती और रीना यदु। शिक्षक नगर दुर्ग ले राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया ले दरिया मल, अनीता मोटवानी, राजेश मुकेश मोटवानी और गांधी बाग नागपुर ले अशोक कुमार सावलनी। पट पर डोंगरगढ़ ले राम गोपाल ध्रुव, नरेंद्र कुमार ध्रुव, कविता और जयंत्री ध्रुव। तो आवाब सुनन आप मन के फरमाइश में ये गीत।

एक गीत पर पाती पठोए हैं। बाजार वार्ड महासमुंद ले भीषमदास, नर्मदा हीरमणि दीपक औ लक्षदास, ग्राम भड़गा कुदवा गुड़ानले श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी मरावी, रजनी राहुल औ पूजा मरावी, भाटापराले दान सिंह रावत दानू, पद्मनी रावत, शुभम औ सौरभ रावत, बेमेतराले राज औ सारिका वैष्णव, शांतिनगर भाटापराले रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, सादिया खान, अयाज अल्फैज खान, बिल्हाले शेख नासिर, मजबीन बानो, कोटा रायपुरले योगिता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी वर्मा औ ओजल वर्मा, रायपुर भनपुरीले कृष्णा समीक्षा, रेयांश विक्की प्रगति औ ईशान्या शर्मा, जयमाकर्मा रेडियो श्रोता संघ सिरी गातापारले कुमारी लावण्य साहू, उपासना देवराज, ओम कुमार साहू, पुष्पराज और औ प्रभुराम साहू, रामानिया चौक भाटापराले मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नईम औ मोहम्मद ताहिर, हट्टी बाजार भाटापराले मोहम्मद जावेद, एकता यदु, पूजा यदु औ रेशमा निषाद, देवरी भाटापराले गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा औ गणेश मिश्रे, भाटापारा दतरेंगीले द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा औ झावेन्द्र कुमार वर्मा, पावर हाउस भिलाई जामुल्ले विकास वर्मा, खुशी वर्मा, ग्रंथ वर्मा, संजय प्रधान औ पूजा प्रधान, रामनगर रायपुरले राजेश अम्बादे, शशिकला अम्बादे औ पूजा अम्बादे, औ सिमगाले लवकुश सेन, प्रहलाद सेन, आदित्य आशीष औ प्रकाश सेन, त आवा सुनन ई सुगर गीतला माया वैद्य के स्वरमा।

कार्यक्रम के अंत में आव सुनन खूम चंद साहू और संगीवन की स्वर में ये गीत और ये गीत ला सुने पर फरमाइश पाती पठो है हमारे ये श्रोता संगीवन भाटापारा बचकाबल मोतीलाल यादव डॉक्टर बसंत भ्रिको विनय ठाकुर सोनाडीले सुब्रत चौधरी छत्तीसगढ़ भूल सुदाले संतोषी सेन ज्योति सेन नेहा सेन मीनाक्षी सेन पलक सेन और शारदा सेन पहंदा कोरबाले सम्मेलाल कुर्रे सावित्री देवी कुर्रे कटोरा तालाब रायपुर ले मोहनलाल देवांगन प्रभा देवी देवांगन सरक बुंदियाले गब्बर साहू और निर्मला देवी साहू सिमगाले भारती सेन विजया सेन ललिता सेन रामेश्वरी मीरा सेन सुनंदा पिंकी और पुष्पा सेन सिमगा छत्तीसगढ़ ले सविता जैन प्रदीप जैन और संगी हथनी पारा भाटापारा ले चोवाराम वर्मा मुकेश वर्मा दुलारी वर्मा और दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा कोटा रायपुर ले अरुण वर्मा अनिल वर्मा ईश्वर वर्मा और दिनेश सेन देवेंद्र कुमार सोनवानी लक्ष्मीना सोनवानी गीतिका गुड़िया पीएल निर्मलकर और श्रद्धा निर्मलकर आप मन है कन्नेवाड़ा ले रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा लिच्छा महासमुंद ले अदालत दास वैष्णव मानस शांति वैष्णव रीचा गायत्री वैष्णव भीजम दास मानिकपुरी नेहरू वार्ड भाटापारा ले प्रेमलाल साहू भूपेंद्र साहू दुष्यंत साहू औ राघवेंद्र साहू महाया ग्राम दुरचुरा ले फिरंता साहू दुलौरिन साहू कामेश्वरी कुमारी औ प्रीतम कुमारी साहू करही बदले पुरुषोत्तम निर्मलकर शादा निर्मलकर देवेंद्र कुमार सोनवानी लक्ष्मीना सोनवानी कुमारी लोचन रुआबांधा शनिचरी बाजार ले सुनील सुशील जैन कल्पना जैन सिया जैन सौरभ जैन औ सौर्य जैन साथी शुभम जैन तो आवाओ सुनन आप सबकी पसंद मा ये सुघर गीतला।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आप मन के गीत, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय दोपहर का 1 बजा है। अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशेल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म वंस अपॉन टाइम इन मुंबई से। आवाज राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की है। गीत इरशाद कामिल का, संगीत प्रीतम का है।

राहत फतेह अली खान की ही आवाज में आइए सुनते हैं फिल्म दबंग का गीत। गीत रचना फैज अनवर की, संगीत साजिद वाजिद का है।

गुलजार की लिखी इस गीत को संगीत से सजाया है नचिकेता चक्रवर्ती ने। आवाज़ राहत फतेह अली खान की है और फिल्म का नाम है ओंकारा।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म अक्टूबर फिल्म का गीत राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। गीत लिखा है तनवीर गाजी ने, संगीत अनुपम राय का है।

आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री सुनिएगा शाम 6:30 से शाम 6:45 तक, शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक, रात 8:30 से रात 8:45 तक और रात 9:15 से खेल की समाप्ति तक। क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी दोपहर 1:30 पर सुनेगा महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। इसमें आज की बात में सुनेंगे चर्चा, यातायात नियमों का पालन करें और योग अपनाए रोग भगाएं। क्रम वार्ता में सुनेगा शिक्षा से समृद्धि की ओर नारी। वार्ताकार होंगी श्रीमती सोनाली तिड़के। क्रम युगल गीत और होंगे टिप्स।

शाम 5 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम 5:10 पर युवा श्रोताओं के लिए प्रसारित करेंगे युवा वाणी। इसमें आजकल में सुनेगा राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस पर चर्चा, क्रम राग नंदिनी, आलेख और संपादन होगा वीर भानसा होगा, क्रम सवालों के आईने में और होगा फिल्म संगीत।

जिले की चिट्ठी शाम 6:05 पर। इसमें सुनिएगा जशपुर जिले की चिट्ठी, आलेख तरुण प्रकाश शर्मा का होगा।

श्रोताओं, एक बार हम पुनः याद दिला दें, आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री सुनेगा शाम 6:30 से शाम 6:45 तक, शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक, रात 8:30 से रात 8:45 तक और रात 9:15 से खेल की समाप्ति तक। क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। लीजिए सुने महिलाओं का अपना कार्यक्रम बिंदिया।

बिंदिया कार्यक्रम सुन रही मेरी प्यारी सखियों को दीप शिखा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, ये तो आपने सुना ही होगा कि अनुशासन हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ाता है और एक अच्छा नागरिक भी बनाता है। इसका पालन हमें रोजमर्रा के जीवन में करना चाहिए। जब हम नियमों का पालन करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, तब जीवन सरल और सुरक्षित रहेगा। और इसके लिए हमें नियमों का पालन तो करना आवश्यक हो जाता है, जैसे यातायात के नियमों का पालन। वह जो धूप, ठंड और बरसात की परवाह करे बगैर चौराहे पर खड़ा हमारी सलामती के नियम बताता है, रोक देता है अपने एक इशारे पर रास्ते के हुजूम को, अपनी सीटी की आवाज से यातायात दुरुस्त करता है, और वह है यातायात पुलिस, जो हमें ट्रैफिक भरे सड़कों से मुक्त करते हैं। और हम इन नियमों का पालन कर सकुशल अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, साथ ही एक सभ्य, सजग नागरिक होने का परिचय देते हैं, दुर्घटनाओं से भी बचते हैं। हमेशा चौराहे पर लगे सिग्नल का ध्यान दें, उनका पालन करें, रास्ते पर भी नम्रता, सभ्यता और सहयोग की भावना से चलें। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी जल्दबाजी में किसी को ओवरटेक ना करें, वाद विवाद में भी किसी से बेवजह ना उलझें। ये रास्ते, ये सड़कें माध्यम हैं हमें हमारे गंतव्य तक ले जाने का, और इन सड़कों के द्वारा हमारी यात्रा सफल होती है। आप यातायात नियमों का पालन तो करें ही, साथ ही अपने बच्चों, परिवार के लोगों को भी सतर्कता से गाड़ी चलाने की हिदायत दें। बहनों, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी ना दें, और सबसे पहले उनका लाइसेंस बनवा लें। जल्दबाजी में बेहतर है समय से 5 मिनट पहले निकलें। ज्यादातर घर के युवा बहुत हड़बड़ी में गाड़ी चलाते हैं, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं। और हाँ, 2 से ज्यादा लोग 2-व्हीलर में बिल्कुल ना बैठें। बहनों, जब हम और आप सभी यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और परिवार के दायित्वों को पूरा भी कर पाएंगे। बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, पर अभी क्रम है युगल गीत का, तो सुनते हैं कयामत से कयामत तक का यह गीत। आवाज है उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत दिया है आनंद मिलन ने।

0: नारी पढ़ेगी विकास गढ़ेगी, यह सिर्फ स्लोगन नहीं जीवन की खूबसूरत सच्चाई है। क्योंकि शिक्षा जहां नारी को खूबसूरत बनाती है, वहीं उसे और उसके परिवार को समृद्धि की ओर भी ले जाती है। इसी संदेश को विस्तृत रूप से सुनते हैं हमारे अगले क्रम वार्ता में। विषय है शिक्षा से समृद्धि की ओर नारी। वार्ताकार हैं श्रीमती सोनाली तिड़के।
1: बिंदिया कार्यक्रम की सभी बहनों को सोनाली तिड़के का नमस्कार। बहनों, आज की चर्चा का विषय है शिक्षा से समृद्धि की ओर नारी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है देवता वहाँ निवास करते हैं। किसी भी सभ्य विकसित और श्रेष्ठ समाज का निर्माण उस देश के शिक्षित नागरिकों द्वारा किया जाता है और नारी इस कड़ी का केवल महत्वपूर्ण आधार ही नहीं बल्कि अनिवार्य शर्त है। जिस तरह एक एक कोशिका मिलकर जीवन का निर्माण करती है, वैसे ही प्रत्येक परिवार की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर समाज का निर्माण करती है। सभी इकाइयों की ऊर्जा का स्रोत और संपूर्ण परिवार की केंद्र बिंदु नारी होती है। यदि नारी शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित होते हैं, और जब दो परिवार शिक्षित होता है तो पूरा राष्ट्र शिक्षित होता है। महान विचारक रूसो ने कहा था, आप मुझे 100 आदर्श माताएं दें, मैं आपको एक आदर्श राष्ट्र दूंगा। समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। यह न केवल किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी देश के विकास के लिए महिला शिक्षा बहुत ज़रूरी है। लड़कियों और महिलाओं को उचित संसाधन मुहैया कराना जरूरी है ताकि वे शिक्षित हो सकें। लड़कियां एवं महिलाओं में अपने परिवार के आर्थिक विकास में एवं देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका होती है। भारत में नारी शिक्षा की जननी सावित्री बाई फुले को माना जाता है। सावित्री बाई ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया। उन्होंने 1 जनवरी 1848 में पुणे महाराष्ट्र में पहला बालिका विद्यालय खोला था। सावित्री बाई ने लड़कियों की शिक्षा के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना किया। लड़कियों को शिक्षित कराने पे उनके ऊपर गोबर और पत्थर तक फेंके गए। भारत में महिला शिक्षा के समर्थकों जैसे राजा राम मोहन राय, पंडिता रमाबाई, ईश्वर चंद विद्यासागर, सावित्री बाई फुले और महात्मा गांधी जी ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, महिलाओं को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन सुधर रही है। कुछ समय पहले तक माता पिता लड़कियों को पढ़ाई के लिए घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं देते थे, किंतु वर्तमान में लड़कियों के सशक्तिकरण, समृद्धि, विकास और कल्याण के लिए शिक्षा को ही महत्वपूर्ण कारक माना गया है। शिक्षित महिलाएं न केवल अपने बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देती है बल्कि उनको बेहतर मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। एम फुले के अनुसार शिक्षा वह है जो अच्छाई और बुराई के बीच अंतर बताती है। महिलाएं शिक्षित हों तो वो अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कर सकती है। शिक्षा महिलाओं को उनके अधिकारों का दावा करने और उनकी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान, कौशल और आत्मविकास प्रदान करके उनके सशक्तिकरण को उत्प्रेरित करती है। एक कहावत है कि एक पुरुष को शिक्षित करके हम सिर्फ एक व्यक्ति को शिक्षित कर सकते हैं, लेकिन एक नारी को शिक्षित करके हम पूरे देश को शिक्षित कर सकते हैं। किसी देश की, समाज की नहीं अपितु परिवार की उन्नति की कल्पना भी स्त्री शिक्षा के बिना संभव नहीं है। किसी भी लोकतंत्र की यह नींव है कि स्त्री और पुरुष को बराबर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। एक पढ़ी लिखी स्त्री ही समाज में खुशी और शांति ला सकती है। कहते हैं कि बच्चे इस देश का भविष्य हैं और एक नारी ही माँ के रूप में उसकी पहला शिक्षा का स्रोत है। इसी कारणवश एक स्त्री का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षित नारी का न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे समाज को सही दिशा प्रदान करती है। हर एक स्त्री को अपनी इच्छानुसार शिक्षा ग्रहण करने का हक है और उस क्षेत्र में कार्य कर सके जिसमें वह कुशल है। स्त्री शिक्षा के लिए सरकार ने कई कानून लागू किए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, इंदिरा महिला योजना, बालिका समृद्धि योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, महिला समृद्धि योजना आदि। सरकार ने महिलाओं के लिए कई कानून लागू किए, जैसे दहेज प्रतिनिधि अधिनियम 1961, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती निषेध अधिनियम 1987, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, गर्भधारण पूर्वलिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 आदि। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें महिलाओं ने अपने काम और गौरव का लोहा मनवाया है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, एनी बिसेंट, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, कल्पना चावला, पीवी सिंधु आदि। पुरुष और स्त्री इस समाज के एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो फिर शिक्षा भी एक समान प्राप्त होना चाहिए। जिस तरह पुरुष का शैक्षिक जीवन इस समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार नारी शिक्षा भी देश के हित के लिए आवश्यक है। किसी भी तरह की नकारात्मक सोच इस समाज के विकास का रोड़ा बन सकती है। आज के इस युग में स्त्री पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही है। हर एक क्षेत्र में नारी आज कुशल है। वह घर की देखभाल के साथ साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अडिग है। एक शिक्षित स्त्री के कारण देश की आर्थिक स्थिति और घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। वह अपनी शिक्षा का उपयोग समाज और परिवार के हित के लिए करती है। एक शिक्षित नारी घरेलू हिंसा और अन्य अत्याचारों से सक्षमता से निजात पा सकती है। स्त्री शिक्षा का प्रभाव परिवार, समाज और देश के हर क्षेत्र में अहम योगदान देता है। नारी को शिक्षित करने के जीवन संरक्षित होता है और मजबूत परिवारों, समुदायों और अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। एक शिक्षित महिला आबादी वाले देश को आर्थिक विकास में बढ़ावा मिलता है। महिला शिक्षा के माध्यम से वे नए विचार प्राप्त करती हैं और समाज में सकारात्मक रूप से योगदान करने की क्षमता विकसित करती है। शिक्षा नारी को उनके सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास प्रदान करती है। शिक्षा उन्हें समाज में समानता और समर्थन का अधिकार देता है, जिससे एक सुरक्षित और सुदृढ़ समाज बनता है। शिक्षा महिला सशक्तिकरण का मील का पत्थर है, क्योंकि यह उन्हें चुनौतियों का सामना करने, अपनी पारंपरिक भूमिका का सामना करने और अपने जीवन को बदलने में सक्षम बनाती है। शिक्षा महिलाओं को असमानताओं में कमी लाती है तथा परिवार में उनकी स्थिति में सुधार लाने के साधन के रूप में कार्य करती है। शिक्षा है जीवन का अमूल्य उपहार, शिक्षित परिवार ज्ञान का भंडार। शिक्षा महिलाओं की जागरूकता बढ़ाकर और उन्हें ज्ञान और कौशल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाती है। यह उन्हें अपने जीवन के बारे में सही निर्णय लेने में मदद करती है, आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है, लिंग आधारित हिंसा को कम करती है और सामाजिक राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। वैदिक काल में नारी को सभी अधिकार प्राप्त थे। वह युद्ध क्षेत्र में जा सकती थी, वह शास्त्रार्थ कर सकती थी, परंतु मध्यकाल में आते आते नारी की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया। बाल विवाह और सती प्रथा जैसे समाज को कलंकित करने वाली कुप्रथाओं का चलन बढ़ा। मैथिली शरण गुप्त ने नारी की इसी स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा था कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। विश्व में शिक्षा का महत्व बढ़ने और अपनी पहचान बनाने की जी जीविषा ने आधुनिक जीवन को नारी को एक नया रूप प्रदान किया। आज नारी ने यह प्रमाणित कर दिया है कि वह पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज की नारी से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। वह अध्यापिका, लेखिका, डॉक्टर, वकील, राजदूत, राज्यपाल, राष्ट्रपति का पद हो तो प्राप्त कर सकती है। आज साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में अपने देश व समाज और परिवार का प्रतिनिधित्व भी कर रही है। उसे अपनी पहचान मिल गई है और वह आत्मविश्वास से भरी हुई है। कहा जाता है कि एक लड़की शिक्षित होती है तो वह पूरी पीढ़ी व समाज को पढ़ाती है। भारतीय नारी ने शिक्षित होकर न केवल अपने परिवार के स्तर को ऊंचा उठाया है, बल्कि अपनी समाज को एक नई पहचान दी है। वह अपनी मर्यादाओं और जिम्मेदारियों के साथ एक माता, बहन, पत्नी और एक पुत्री के सभी कर्तव्यों का पालन कर रही है। शिक्षा महिला सशक्तिकरण को उत्प्रेरित करती है। महिला शिक्षा का मतलब है महिलाओं को सशक्तिशाली बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वे समाज में अच्छे बुरे की पहचान को समझकर जीवन के सही निर्णय को ले सके। शिक्षा महिलाओं को आज़ादी और स्वयं निर्णय लेने का अधिकार देता है। पुरुषों और महिलाओं के बीच के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विभाजन को खत्म करता है। लिंग भेदभाव, हिंसा और संसाधनों की असमानताओं जैसी समस्याओं से मुक्त करता है। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ योजनाएं लागू की गई, जैसे महिला प्रशिक्षण रोजगार एवं कार्यक्रम सहयोग योजना, जो 1986 में शुरू किया गया, जिसके द्वारा गरीब, ग्रामीण और शहरी महिलाओं का विकास करना है। शिक्षा से नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया है। वह घर की चार दीवारी से निकलकर देश के बहुआयामी विकास में अमूल्य योगदान देने लगी है। अंत में मैं समस्त बहनों के लिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि मैं नारी हूँ है गर्व मुझे, मैं नारी हूँ है गर्व मुझे, ना चाहिए कोई पर्व मुझे, संकल्प करो कुछ ऐसा कि, संकल्प करो कुछ ऐसा कि अब सम्मान मिले हर नारी को, बंदिश और जुल्म से मुक्त हो, वो अपनी खुद अधिकारी हो, वो अपनी खुद अधिकारी हो।
0: अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था शिक्षा से समृद्धि की ओर नारी, वार्ताकार थी सोनाली तिड़के। जिस तरह नारी घर के सदस्यों का ख्याल रखती है, वैसे ही उसे अपना भी ध्यान रखना जरूरी है और इसके लिए स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को जीवन में शामिल करना जरूरी है। प्राणायाम कर शरीर को निरोगी रखें और तनाव मुक्त रहें। बहनों, बातों का सिलसिला जारी रहेगा, पर अभी सुनते हैं ये गीत।

मशाल फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। जावेद अख्तर के लिखे गीत के लिए धुन बनाई थी हृदयनाथ मंगेशकर ने। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर के ये दोहे हमें बताते हैं कि हमारे शब्द कितने खूबसूरत होते हैं, क्योंकि वाणी की मधुरता सफलता का पहला सूत्र है। इसलिए बहनों, मीठा बोलें, सच्चा बोलें और चापलूसी से दूर रहें। ये शब्द कहीं दवा बन जाते हैं तो कई बार टूटे हुए दिलों का मरहम भी बन जाते हैं। इसलिए संयम से बोलें, बेफिजूल की बातों से बचें, और ऐसी कोई बात जो थोड़ी कड़वी पर ज़रूरी है तो उसे कुछ इस अंदाज में बोलें कि आपका काम भी हो जाए और बुरा भी ना लगे।

बेटा फिल्म का गीत आपने सुना अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में। गीत समीर का था और धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने। और ये थी युगल गीत की अंतिम प्रस्तुति। बहनों, बच्चे जब छोटे होते हैं तो ज़िद करते हैं और हम उनकी ज़िद पूरी भी करते हैं, पर यह उनकी आदत बन जाती है। इसलिए हर बात, हर ज़िद पूरी हो यह ज़रूरी नहीं, इसलिए ज़िद को बढ़ावा ना दें। और यदि किसी गलत चीज़ की ज़िद करते हैं तो रोकना आपका कर्तव्य है, क्योंकि कई बार अनावश्यक ज़िद संबंधों को कमज़ोर बनाती है। इसलिए अपनी सूझबूझ से सही गलत की पहचान करते हुए निर्णय लें और जीवन को सही दिशा दें। और अब दीजिए मुझे अनुमति, आप सभी को दीप शिखा शर्मा का नमस्कार।

0: बिंदिया, अभी आप महिलाओं के लिए प्रसारित ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत, लेकिन पहले ये संदेश।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: कार्यक्रम का पहला नगमा फिल्म रिफ्यूजी से। आवाजें दी हैं सोनू निगम और अलका याग्निक ने। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, जिसे संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

आवाज कुमार शानू की और साथ में अलका याग्निक की। फिल्म सरफरोश का गीत, गीत रचना समीर की, संगीत जतिन ललित का है। तो आइए सुनते हैं फिल्म सरफरोश का ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म आशिकी से। आवाज दी है कुमार शानू ने, गीत लिखा समीर ने, जिसे संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

0: फिल्म आशिकी के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत समाप्त होता है। इस समय दोपहर के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
2: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
2: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
2: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
2: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी।

0: पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ कर के रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों से

0: अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। पेश है चित्रपट संगीत, लेकिन पहले सुनते हैं ये संदेश।
3: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
4: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
5: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए
3: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
6: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
3: कभी कोई किस्सा याद आता है।
7: यादें।
3: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।

0: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
2: सुनिए।

कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फिजा से। आवाजें दी हैं उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गुलजार की इस रचना को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तय बैठबे ना, तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

श्रोताओं एक सूचना सुनिए। श्रोताओं आगामी मंगलवार 30 जून सन 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा हमारे सुरक्षित भविष्य का आधार जैव विविधता का संरक्षण। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पुर्णेन्द्र साहू, अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय साजा बेमेतरा। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 30 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त होती है और आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म है कभी खुशी कभी गम, आवाजें दी हैं कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अमित कुमार, उदित नारायण और सोनू निगम ने। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में आइए सुनते हैं फिल्म परदेस का गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत नदीम श्रवण का है।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की गाय फिल्म परदेश के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: क्षेत्र में योगदान के लिए देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशेल्स हिंद महासागर को साझा विरासत मानते हैं और इसकी सुरक्षा, स्थिरता तथा समृद्धि दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत सेशेल्स के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना अनुभव साझा करेगा। सेशेल्स के साथ UPI लागू करने का समझौता भी हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि जन औषधि योजना पर हुए समझौते से सेशेल्स के लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
2: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान सोना न खरीदने और विदेशी दौरे न करने की अपील पर सहयोग के लिए देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय एक नए अवतार में भारत का भाग्य गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांवों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के अनुरोध के बाद जारी किया गया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से ये सुनिश्चित करने को कहा कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत हो। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। हमलों में ईरान की निगरानी प्रणाली, संचार नेटवर्क, वायु रक्षा ठिकानों और ड्रोन भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया गया। उधर ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत और बहरीन में 8 अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले किए। इन घटनाओं के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम पर फिर से संकट गहरा गया है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे T20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज ग्रुप जे के अपने अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। मेसी ने 80वें मिनट में फ्री किक पर गोल किया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोल की संख्या 19 हो गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi and President of Seychelles Patrick Hamani held bilateral talks at Victoria this afternoon. Both leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. Earlier, he was given a guard of honour at the State House with President Hamani also present. Several agreements were exchanged in a range of fields including agriculture, finance, space and health. Seychelles has conferred its highest honour for environmental leadership, the Guardian of the Blue Horizon, on Prime Minister Narendra Modi, recognising his commitment to sustainable development and green growth. Addressing the joint press meet, Prime Minister Modi said, both nations will continue to explore new opportunities for the industries of both the countries. He added that work will also be done to enhance connectivity between India and Seychelles. Prime Minister Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Man Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
2: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: मिस्टर मोदी एक्सूडेड प्राइड दैट इंडिया हैज अचीव्ड सक्सेस लिंक्ड टू द कंट्रीज सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस दिस मंथ। द प्राइम मिनिस्टर आल्सो स्पोक अबाउट इंटरनेशनल योग डे व्हिच सॉ द एंटायर वर्ल्ड जॉइन हैंड्स विद इंडियाज एफर्ट्स। ही मेंशनड द वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप हेल्ड इन अहमदाबाद वेयर इंडिया वन अ टोटल ऑफ 114 मेडल्स इन दिस इवेंट इंक्लूडिंग 102 गोल्ड मेडल्स। Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today highlighted the central role of villages in realizing the vision of Viksit Bharat 2047. Addressing the Rashtriya Gramin Vikas Sammelan in New Delhi, Mr. Chauhan said a provision of over 1,51,000 crore rupees, including the state's contribution, has been made under the Viksit Bharat Gramin scheme to accelerate rural development while ensuring livelihood security for rural workers.
4: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है।
5: विलेज इज नॉट मेयरली अ पार्ट ऑफ इंडियाज ज्योग्राफी, इट इज द सोल ऑफ इंडिया, इट इज इंडियाज इकोनॉमी, इट्स आइडेंटिटी। अ विलेज इज नॉट जस्ट अ सेटलमेंट, इट एम्बॉडीज इंडियाज सिविलाइजेशन, कल्चर, वैल्यूज ऑफ लाइफ, ट्रेडिशंस एंड हैज लॉन्ग बीन अ सेंटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आवर स्ट्रेंथ लाइज इन आवर विलेजेस एंड सो डज आवर फ्यूचर पोटेंशियल। विलेजेस आर ऑल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। टुडेज कॉन्फ्रेंस इज अ मीनिंगफुल चर्निंग ऑफ आइडियाज एम्ड at achieving rural prosperity.
4: ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
3: The External Affairs Ministry has advised Indian citizens not to commence the Kailash Mansarovar Yatra until they have obtained all the required travel documents for the complete journey. The ministry has issued the advisory after receiving requests for assistance from Indian pilgrims stranded in Nepal while undertaking the yatra through private tour operators. Indian assistance sent under Operation Amistad has reached Venezuela. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar expressed confidence that the field hospital unit, relief supplies, medicines and medical equipment will bolster ongoing post-earthquake relief efforts in the country. Nagaland is observing National Immunization Day today as part of the nationwide campaign to protect children against polio and sustain India's polio-free status. The campaign aims to vaccinate 1,43,530 children below 5 years with 2 drops of oral polio vaccine across the state. Vaccination booths have been set up in all districts and trained health workers and volunteers have been deployed for the intensive drive. To ensure that no child is missed, health workers are marking the left little finger of each vaccinated child. Kidambi Srikanth has advanced to the men's singles final of the US Open Badminton Championships at the Titan Gym in California today. Srikanth defeated Japan's Yutai Okimoto in a hard-fought semi-final. He will next face Wu Li Yang of Chinese Taipei in the finals. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म आई मिलन की बेला से ये गीत, आवाजें मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की।

0: नमस्कार प्यारे बच्चों और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमारा प्यार भरा शो जिसका नाम है रेडियो किड्स, और मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि। तो आज मैं लेकर आई हूं बहुत सारी मौज मस्ती इस कार्यक्रम में, और मेरे साथ हैं प्यारे प्यारे और छोटे छोटे बच्चे। तो एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम जैनब है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
2: मेरा नाम पंचल गुप्ता है, मैं 3री कक्षा में पढ़ता हूँ।
3: मेरा नाम अलीशा यादव है और मैं 2nd D में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम आयुष तिवारी है, मैं 2री क्लास में पढ़ता हूँ।
0: तो हमने इनका नाम तो जान लिया, लेकिन इससे पहले कि हम आज का ये मजेदार सफर शुरू करें, चलिए

0: ये गीत सुनकर तो बहुत ही मजा आया।
1: अच्छा तो ये बताओ बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हाथों में कितना जादू होता है?
2: कैसे?
3: वो कैसे?
1: क्योंकि इन हाथों की मदद से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। आप क्या क्या बनाते हो हाथों की मदद से? जैसे कि गुड़िया, नाव और
3: ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट।
1: आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या क्या बनाते हो आप?
3: जैसे कोई ग्रीटिंग कार्ड या और भी बहुत वगैरह चीजें।
1: हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो चलो मैं ना आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ गुड्डू की। तो एक बच्चा था गुड्डू, उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। एक दिन जब वो पतंग उड़ाने लगा तो उसकी पतंग फट गई और वो रोने लगा। जब वो अपनी दादी माँ के पास गया तो उसकी दादी माँ ने कहा, इसमें रोने की बात नहीं है क्योंकि हमारे हाथों में होता है
2: जादू।
1: जादू, और हम इन हाथों की मदद से अब एक नई पतंग बना लेंगे। जैसे ही उसने अपनी दादी माँ के साथ नई पतंग बनाने की कोशिश की तो उसने नई पतंग बना ली और उसे बहुत मजा आया क्योंकि उसने अपने हाथों के इस्तेमाल से क्या बनाई?
2: पतंग।
1: तो जब भी हमारा कोई सामान टूट जाए या खो जाए तो हमें कभी भी दुखी नहीं होना, रोना नहीं, करना क्या है?
3: उसे फिर से बनाना।
1: तो अब आप घर जाके क्या क्या बनाओगे?
3: ग्रीटिंग कार्ड
1: और
4: एरोप्लेन।

0: तो चलिए अब हम चलते हैं जैनब के पास। तो जैनब, आज आप हमें क्या सुनाओगे?
1: आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ, बिल्ली। म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ, किसको छोड़ू किसको खाऊं, एक तरफ है दूध मलाई एक तरफ है चुईया आई। म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ। धन्यवाद।
0: जोरदार तालियां। आपने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई। और आप पंशुल, आप हमें क्या सुनाने वाले हो?
2: मैं आपको चींटी की कविता सुनाऊंगा। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम कर आग सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी, सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी, छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं

0: Crazy cutie duty.
1: पंचल और जैनब दोनों ने ही हमें जानवरों पे कविता सुनाई, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है आपसे पूछने के लिए। क्या मैं पूछूं?
2: हाँ दीदी।
1: तो बताओ, ऐसा कौन सा जानवर है या ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि दिन में सोता है और रात में जागता है?
2: उल्लू।
3: उल्लू,
1: उल्लू। चलो, हमारे सभी बच्चों को इसका जवाब पता था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के। आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारा शो रेडियो किड्स, जिसमें मैं

0: हूँ आपकी दोस्त अंजलि और आज आए हैं हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि आज हमारे इस कार्यक्रम को और ज्यादा मजेदार बना रहे हैं अपनी कविताओं से। तो चलिए अब चलते हैं हमारे दोस्त आयुष के पास। आयुष, आज आप हमें क्या सुनाओगे?
1: बादल के ऊपर।
0: तो सुनाइए।
1: काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, कैसे बादल आकर छाए, हवा पकड़कर लाती सरसर जाए, जैसे काले कंबल लगते कितने।

0: आए बादल बढ़ से बरखा आए।
1: अच्छा आयुष ये बताओ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है स्कूल में?
0: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश।
1: अच्छा इंग्लिश पसंद है, ऐसा क्यों?
0: उसमें अलग अलग वर्ड सीखते हैं और मजा भी आता है।
1: यानी बच्चों को हर चीज में मजा चाहिए, है कि नहीं?
0: हाँ दीदी।
1: तो मजे से मुझे याद आया कि मजे करने के लिए और आप लोग क्या क्या करते हो?
2: खेलते हैं।
1: अच्छा खेलते हो, कौन कौन से खेल खेलते हो?
3: बर्फ पानी,
4: पकड़न पड़ाई,
5: चैंटोर, छुपन छुपाई।
1: अच्छा तो आप किसके साथ खेल खेलते हो? दोस्तों के साथ खेलते हो या अपने मम्मी पापा के साथ खेलते हो या भाई बहन के साथ खेलते हो?
4: भाई बहन
6: दोस्तों के साथ।
1: अच्छा तो आप में से कोई है जो अपने मम्मी पापा के साथ भी कोई गेम खेलता हो?
4: मैं खेलता हूँ।
1: अच्छा आप कौन सा गेम खेलते हो?
4: छुपन छुपाई।
1: छुपन छुपाई, और कैसे खेलते हो बताओ थोड़ा सा।
4: पापा गिनती करते मैं छुपता हूँ।
1: अच्छा तो मम्मी पापा के साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है या दोस्तों के साथ?
4: मम्मी पापा।
7: दीदी मैं एक गेम जानती हूँ जिसमें हम खेल खेल में पढ़ाई भी सीख सकते हैं।
1: अरे वाह, इससे ज्यादा मजेदार बात क्या होगी बच्चों के लिए कि अगर वो खेल खेल में पढ़ाई सीख सके। तो आप मुझे बताओ वो कौन सी गेम है?
7: जैसे कि हमने तीन कटोरी ली है, उसमें हमने एक गिलास जोड़ा तो तीन से वो चार हो जाएगा, यानी जमा हो जाएगा।
1: अरे वाह, जोरदार तालियां हो जाए। आप में से कोई और बच्चा भी ऐसा है जो कि ऐसे खेल खेल में पढ़ाई भी करता हो? आप भी करते हो, आप क्या करते हो?
4: दीदी मेरी मम्मी पूछती है दीवार पे कलर कौन से, मैं बताता हूँ रेड है ब्लैक है ये बताता हूँ मैं।
1: अरे वाह, आज के इस कार्यक्रम में तो मुझे एक नई बात जानने को मिली कि बच्चे खेल खेल में भी पढ़ाई सीख रहे हैं। अच्छा और भी कोई खेलता है?
0: दीदी मैं।
1: क्या खेलते हो?
0: लेकिन मैं पढ़ाई में खेलता हूँ।
1: अच्छा वो कैसे?
0: क्योंकि हम टीचर टीचर खेलते हैं।
1: टीचर टीचर तो मैं भी बचपन में बहुत ज्यादा खेलती थी।
7: दीदी हमें इसमें स्टूडेंट वाली फीलिंग आती है, जैसे कि हम असलियत में कोई स्टूडेंट और हमारे सामने असलियत में कोई टीचर खड़ी है और हम उससे पढ़ाई का भी कुछ सीखते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही मैं उम्मीद करूंगी कि आप खेल खेल में और पढ़ाई सीख के आना जब हम मिलेंगे, ठीक है? पक्का वादा?
6: हाँ दीदी।
5: हाँ दीदी।
1: चलो ठीक है।
8: मेरा नाम अलीशा यादव है। मेरी कविता का शीर्षक है भारतीय सैनिक। बर्फीली चोटियों पर गूंजती वीरता की गाथा, भारतीय सैनिकों की साहस की परिभाषा। कृत्रिम संकटों में फंसे ये भक्त, सिपाहियों की मानवता ने किया उन्हें मुक्त। प्राकृतिक आपदा की विकराल छाया, हर दिशा में मची थी हाहाकार की माया। पर सैनिकों ने बढ़ाया मदद का हाथ, निर्भीकता से दिया एक दूसरे का साथ। हर जवान बना देवदूत का सिपाही, मची थी चारों ओर भयंकर तबाही। आशीर्वादों की गूंजों ने बढ़ाया सिपाहियों का मान, वीर सपूतों ने बचाए अंगिनत जनों के प्राण। कृपाल का गौरव, हृदय का स्वाभिमान, सैनिकों की वीरता का अमित यशगान। ना देखे कोई जीव ऐसा दृश्य द्वारा, भारत के रक्षक तुम्हें सलाम हमारा, तुम्हें सलाम हमारा। धन्यवाद, जय हिंद।
1: तो अब समय हो चुका है एक गीत का, तो चलिए सुनते हैं।

0: अरे वाह, ये गीत सुन के ऐसा लगा मानो कि इस गीत के जरिए हमने रेडियो पर ही पहाड़ों की सैर कर ली हो, है ना?
1: दीदी,
0: तो आप में से कोई कभी पहाड़ों पर घूमने गया है?
2: हाँ दीदी, मैं गया।
0: अच्छा, आप गए हो तो आप कहाँ गए थे?
2: मैं मसूरी।
0: मसूरी गए थे तो आपने क्या क्या देखा वहाँ पर?
2: मैंने वहाँ पे पहाड़ देखे और मैंने बर्फ भी देखी वहाँ पे।
0: अच्छा, और आपने क्या क्या किया वहाँ जाकर? मौसम कैसा था वहाँ का?
2: मैं वहाँ पे ठंड थी बहुत।
0: क्योंकि पहाड़ का नज़ारा होता ही इतना सुंदर है ना? चारों तरफ हरियाली और बहुत अच्छी हवा, नदियाँ, पानी। अरे वाह, और कौन कौन जाना चाहता है पहाड़ों पर?
3: दीदी मैं।
0: आप जाना चाहते हो और वहाँ जाकर क्या करना चाहते हो?
3: दीदी बहुत सारा खेल, और हम वहाँ जान के भी आएंगे कि वहाँ क्या क्या होता है।
0: तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी पहाड़ों की सैर करने जरूर जाएंगे, है ना?
1: हाँ दीदी।
0: पहाड़ों से आपको सीखने को क्या मिलता है? कुछ सीखने को मिलता है पहाड़ों को देखकर?
1: हाँ दीदी।
0: अच्छा ठीक है, प्रीति आप बताओ सबसे पहले कि पहाड़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है?
1: मजबूती।
0: वाह प्रीति, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई। पहाड़ हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हमेशा ऊपर उठना चाहिए। आज तो इन नन्हे मुन्ने बच्चों से बातें करके, इनकी कविताएं सुन के बहुत मजा आया, आया कि नहीं?
1: हाँ दीदी, बहुत मजा आया।
0: और उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी मजा आया होगा। तो अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमारा ईमेल एड्रेस है fmgradiokids@gmail.com। हमें उम्मीद है कि आप हमें ढेर सारे मैसेज करेंगे और अपना प्यार देंगे। लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है, प्रकृति का ख्याल रखना है और हमेशा मुस्कुराते रहना है। तो चलिए अब हम फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे यानी कि अंजलि को दीजिए इजाजत। बाय
1: बाय।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और अब एक मीठा सा गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। फिल्म है कैदी नंबर 911 और आवाजें हैं लता मंगेशकर और डेजी ईरानी की।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमाइनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने आज राजधानी विक्टोरिया में आपसी सहयोग की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और डिजिटल सहयोग सहित कई क्षेत्रों में समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स हिंद महासागर को साझा विरासत मानते हैं और इसकी सुरक्षा, स्थिरता तथा समृद्धि दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। सेशल्स के साथ यूपीआई लागू करने का समझौता भी हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक

0: अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय के एक नए अवतार में भारत का भाग्य गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परम्परा को फिर से जीवित किया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांवों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया है कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के अनुरोध के बाद जारी किया गया है जो निजी टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। और लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप ए में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार। कुछ गीत साथियों मौसम की तरह होते हैं, कभी ठंडी हवा बनकर सुकून देते हैं दिल को, और कभी गर्मी की तेज तपिश का एहसास भी करा जाते हैं, और कभी कभी यूं भी होता है कि किसी पुरानी याद की तरह चुपचाप दिल के करीब आ बैठते हैं और फिर वहीं पे रहते हैं, कभी जाने का नाम ही नहीं लेते। सदाबहार गीतों की यही खूबसूरती है, वक्त चाहे जितना बदल जाए, इन गीतों के एहसास हमेशा नए से लगते हैं, अपने से लगते हैं। आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही सदाबहार गीत आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 MHz पर। साथ हूं मैं नूपुर। गीत पहुंच रहा है आप तक महेंद्र कपूर साहब की आवाज।

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
1: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
2: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
3: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
2: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
4: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।

0: विभाग में अप्रेंटिस पर उपलब्ध नियम और विनियम। एनटीपीसी लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम आमंत्रित कर रहा है। इन पदों के लिए आवेदन विजिटिंग कंसल्टेंट डेंटल और विजिटिंग कंसल्टेंट ईएनटी। विजिटिंग कंसल्टेंट्स की नियुक्ति 6 महीने की अवधि के लिए होगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार सीधे साक्षात्कार के लिए दिनांक 6 जुलाई 2026 को प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच विंध्य अस्पताल एनटीपीसी विंध्याचल जिला सिंगरौली में उपस्थित हो सकते हैं। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अग्रणी महापत्तनों में से एक है। ये प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक प्रबंधक ड्रेजर टग्स और सहायक प्रबंधक फ्लोटिंग क्राफ्ट्स। संपूर्ण विज्ञापन, आवेदन पत्र और अन्य विवरण के लिए देखिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.deendayalport.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 1:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। परिक्रमा में आपका स्वागत है और आज के सफर में आपके साथ हूँ मैं चारू सक्सेना और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हाय अभिषेक।
2: हेलो चारू, हाउ आर यू?
1: या फाइन अभिषेक। देखो श्रोताओं को हम बता दें कि इस आधे घंटे के कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नज़र और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
2: एब्सोल्युटली, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट चारू सक्सेना। Well, listeners, the FIFA World Cup football is underway, and this, of course, is a once every 4 years spectacle that unites the globe. And most of us are staying up late to watch the live matches, and others are catching up on the match highlights. So, Charu, here are three reasons why you should watch this World Cup. Well, firstly, it offers unmatched national or team pride. Secondly, it offers many historic moments that transcend sports. And lastly, it is a rare opportunity to see the world's absolute best players compete at the highest level of international competition. And Charu, speaking of players here, are 6 players to watch out in this World Cup. Kylian Mbappe from France, who is regarded as one of the most explosive and lethal forwards of the game. Then there's Vinicius Junior from Brazil, known for his dribbling skills. From England, we have Harry Kane, the talismanic striker, an incredibly prolific goal scorer. Then, of course, is Erling Haaland from Norway, who is a physical and technical marvel with tremendous raw power and finishing ability. And then the two next generation talents, Jude

0: Bellingham from England, who is a complete midfielder, and Lamine Yamal from Spain, who has fearless creativity and maturity beyond his years. So, Charu, six standout footballers and listeners you should watch close, whom your listeners should watch closely in this World Cup. Mm-hmm. And Charu, we have lots coming up for our listeners in the program, but first we begin with the news headlines at this hour. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies, with focus on indigenous defence production, highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country.
1: आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा ना करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया.
0: Indian Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation level talks in Victoria.
1: सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा.
0: Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other.
1: और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा.
0: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about PM's Mann Ki Baat program. Well, Charu, every month millions of Indians tune in to Mann Ki Baat, not just to hear an address from the Prime Minister, but to discover inspiring stories from every corner of the country. Stories of ordinary people doing extraordinary things of innovation, tradition, service and community spirit that often go unnoticed.
1: अभिषेक, देखो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश को संबोधित किया और उन्होंने ऐसी कई शानदार कहानियां साझा की जो भारत की तरक्की और लोगों की भागीदारी की ताकत को दिखाती है.
0: Yes, Charu, can a nation become stronger only through missiles and machines or only through industries and investments? Or does its real strength lie in the hands of people who choose to do the right thing every single day? Well, today let's take a journey through stories that prove one simple truth, that when 140 crore Indians move together, even the impossible begins to look possible.
1: बिल्कुल, पता है अभिषेक, देखो कुछ flights यात्रियों को ले जाती हैं, तो कुछ कार्गो को, और कुछ फ्लाइट्स ऐसी भी होती हैं जो पूरे देश की उम्मीदों को लेकर उड़ती हैं. किसी विमान के उड़ान भरने का देश की तरक्की से क्या लेना देना है? असल में बहुत कुछ, क्योंकि जब इस महीने मेड इन इंडिया C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी, तो ये सिर्फ एक सफल टेस्ट नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और मजबूत कदम था.
0: बट चारू, इंडियाज़ सक्सेस दिस मंथ वाज़न्ट लिमिटेड टू द स्काइज़, इट आल्सो एकोड अक्रॉस द सीज़, एंड रिसेंटली थ्री इम्प्रेसिव नेवल प्लेटफॉर्म्स, INS दुनागिरी, INS संशोधक एंड INS आगरा जॉइन द इंडियन नेवी, एंड द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट इज दैट एवरीथिंग फ्रॉम द डिजाइन टू द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटली इंडिजिनस. नाउ थिंक अबाउट हाउ फार वी हैव कम. There was a time when building such advanced defense systems seemed like a distant dream, but today they are becoming a reality.
1: बिल्कुल, देखो जून का महीना भारत के लिए जश्न मनाने का एक और कारण लेकर आया है. जब भारत ने DRDO के वैज्ञानिकों और भारतीय उद्योग जगत द्वारा मिलकर विकसित की गई स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, आज हमारे समुद्र और हमारे आसमान में एक बात समान है. वो है कि वो दोनों ही एक ऐसे देश की कहानी कहते हैं जो ज्यादा मजबूत, ज्यादा आत्मविश्वास से भरा और ज्यादा आत्मनिर्भर हो रहा है.
0: Yes, and if I ask you, Charu, to think of what is one gift that India has shared with almost every country in the world without charging a single rupee? No, it's not software, it's not spices, it's not Bollywood, it's actually yoga.
1: बिल्कुल.
0: And this year's International Yoga Day became a global celebration, wasn't it?
1: बिल्कुल. देखो, दुनिया भर में 2500 से ज्यादा जगहों पर योग कार्यक्रम हुए, और देश में भी करोड़ों लोगों ने स्कूल, पार्कों, स्टेडियमों में और सार्वजनिक जगहों पर अपनी मैट बिछाई. सूरज उगने के समय अपने आसपास के पार्क के बारे में सोचिए, बच्चे स्ट्रेचिंग कर रहे थे, माता पिता बैलेंस बनाने वाले पोज करते हुए हंस रहे हैं, और दादा दादी शांति से ध्यान में बैठे हैं. यही योग की खूबसूरती है और यही सभी के लिए है. इस बहाने लोग आपस में मिलते हैं और हेल्थ का भी ख्याल होता है.
0: एब्सोल्युटली चारू, एंड मोरओवर इंडिया आल्सो डोमिनेटेड द वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप इन अहमदाबाद, विनिंग एन इनक्रेडिबल 114 मेडल्स, इंक्लूडिंग 102 गोल्ड मेडल्स एंड अ प्राउड proud moment indeed. Now, let me ask you something, Charu. Can patriotism look like skipping an unnecessary foreign trip, sharing your right to work, or using the metro, or choosing local products? At first glance, these seem like small personal decisions, but together they can become national strength.
1: बिल्कुल. देखो, पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वो बिना ज़रूरत सोडा ना खरीदें. ये बात तो वाकई बहुत ध्यान देने की. देखिए, जहाँ तक हो सके विदेश यात्रा टाल दें, कार पुलिंग अपनाएं और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें. और एक बहुत अच्छी बात हुई, लोगों से बात मतलब लोगों ने मन की बात मानी. जो उन्होंने कहा उसे करने की पूरी कोशिश की. परिवारों ने नया सोना खरीदने के बजाय पुरानी ज्वेलरी को रिसाइकल करने का फैसला किया. एक ही ऑफिस जाने वाले दोस्तों ने अलग अलग ना जाने के बजाय साथ यात्रा शुरू की. कई लोगों ने बस और मेट्रो सेवाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो पहले नहीं करते थे.
0: एब्सोल्युटली चारू. एंड हियर्स अनदर इंस्पायरिंग स्टोरी. एंड इन महाराष्ट्रस नांदेड डिस्ट्रिक्ट, द पेटकर फैमिली क्वाइटली अरेंज्ड एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर अराउंड 3,500 विलेजर्स. नो हेडलाइंस, नो पब्लिसिटी, जस्ट कंपैशन. एंड द गवर्नमेंट टू कंटिन्यूज एक्सटेंडिंग दिस सेफ्टी नेट. एंड अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, accidental insurance worth 2 lakh rupees is available for just 20 rupees a year, and that's less than the price of a packet of chips.
1: पता है, देखो 58 करोड़ से ज्यादा भारतीय पहले ही इसमें शामिल हो चुके हैं. और इसी तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सिर्फ 436 रुपए के सालाना प्रीमियम, यानी रोजाना लगभग अभिषेक 1.5 रुपए पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है. अब आइए एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कई समस्याएं ऐसी हैं जिससे समाज जूझता है. जैसे कि हम कभी अंधविश्वास कर लेते हैं, जैसे भाई क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, भाई आज ऐसा मत करो, वो पक्षी अशुभ है, या उस पेड़ पर भूत का साया है. तो ये सब बातें बहुत होती है क्योंकि इंसान की सोच में शामिल हो
0: जाती है. I'll tell you why, Charu, because we all know that fear spreads quickly. But facts don't. Now, here's an inspiring story from Assam. The rare Hargila bird was once considered inauspicious. People even cut down trees where it nested. Then came biologist Purnima Devi Barman, and instead of arguing, she educated. She explained science, she involved local women, and slowly misconceptions disappeared. Thousands of women joined hands to protect the bird and proudly calling themselves the Hargila Army.
1: Aur dekhiye, aaj in लेडीज की वजह से इस पशु की कीमत बढ़ी है. मतलब लोगों ने मानना शुरू किया है. अब चलिए बात करते हैं खेलों की. जरा सोचिए, एक फुटबॉल का मैदान है जहां 5 साल के छोटे छोटे बच्चे पूरे जोश के साथ गेंद के पीछे भाग रहे हैं. कुछ गिरते हैं, कुछ हंसते हैं और कुछ गोल करते हैं. लेकिन हर बच्चे का कोई ना कोई सपना होता है. नागालैंड में नागालैंड बेबी लीग के जरिए ठीक यही हो रहा है, जहां 5 साल तक की उम्र के बच्चों को फुटबॉल से परिचित कराया जा रहा है. एक चैंपियन को दूसरों से क्या अलग बनाता है, ये नहीं कि उन्होंने शुरुआत कहां से की, बल्कि अभिषेक ये कि उन्होंने शुरुआत करने का फैसला किया.
0: Absolutely, Charu, and not only that, India's culture is also traveling far beyond its borders. The Dominican Republic has only a small Indian community, yet a group of Spanish-speaking locals has formed a team called the Brahma Kamal Dominicana, and they are learning Vedic literature, reciting ancient mantras, and embracing India's traditions with incredible dedication. Now, isn't it amazing, Charu? And sometimes people thousands of kilometers away value our heritage so deeply that it reminds us to value it even more.
1: अभिषेक, कभी आपने ऐसा पुल देखा है जो स्टील या सीमेंट का ना हो, बल्कि जीवित पेड़ों की जड़ों से बना हो? बताती हूँ. मेघालय में, ये बिल्कुल समझिए कि मेघालय में आपका स्वागत है. और यहाँ प्रकृति और इंसानी सब्र मिलकर कुछ जादू ही बनाते हैं.
0: एक्चुअली चारु, मेघालय इज नोन एज द एबोड ऑफ द क्लाउड्स.
1: ओके, बट यहाँ जो मशहूर लिविंग रूट ब्रिजेस, जीवित जड़ों वाले पुल को बनने में कई दशक लग जाते हैं. और हैरानी की बात यह कि आम पुलों के उलट ये समय के साथ और मजबूत हो जाते हैं. भारत ने अब इन अद्भुत पुलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव रखा.
0: एंड फॉर आवर लिसनर्स, हियर्स वन फाइनल स्टोरी. कैन अ डिस्कार्डेड प्लास्टिक बॉटल बिकम समथिंग वैल्यूएबल अगेन? मोस्ट ऑफ अस वुड प्रोबेबली से नो, बट द वुमेन ऑफ ब्योरा, मध्य प्रदेश, प्रूव्ड अदरवाइज. दे कलेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट एंड कन्वर्टेड इट इनटू इको ब्रिक्स. giving a new look to public spaces and a new purpose to what was once considered useless.
1: बिल्कुल गणेश उत्सव से पहले श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें ताकि त्यौहार पर्यावरण के अनुकूल बने और स्थानीय कारीगरी को बढ़ावा मिले. अपने संबोधन के आखिर में प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि बारिश की एक भी बूंद बर्बाद ना होने दें. उन्होंने नागरिकों से कैच द रेन अभियान को मजबूत करने और जल संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बनाने का आह्वान किया.
0: सो टू रैप अप अ डिस्कशन ऑन द पीएम्स मन की बात टुडे चारू, इफ देयर इज वन मैसेज दिस स्टोरीज लीव अस विद इज दिस, द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज नॉट शेप्ड बाय अ हैंडफुल ऑफ पीपल, इट इज शेप्ड बाय मिलियंस ऑफ एवरीडे इंडियंस मेकिंग थॉटफुल चॉइसेस, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, प्रिजर्विंग ट्रेडिशंस एंड ड्रीमिंग बिगर than ever before, and that is the greatest strength, that is the greatest pride, and that is how India doesn't just rise, it rises together.
1: और अभिषेक अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. देखिए झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक हुनर के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है. राज्य के 11 और महत्वपूर्ण उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिल गया है. एक रिपोर्ट.
2: रेडियो फरमाइशों के लिए दुनिया भर में मशहूर कोडरमा का झुमरी तलैया अब अपनी एक खास मिठाई के लिए विश्व मानचित्र पर चमकेगा. ये मिठाई है केसरिया कलाकंद, जो GI टैग पाने वाला झारखंड का एकमात्र खाद्य पदार्थ बन गया है. 60 के दशक में विभाजन की त्रासदी झेलकर पाकिस्तान से आए हंसराज और मुल्कराज भाटिया परिवार ने इस हुनर की नींव रखी थी.
3: सबसे फर्स्ट कलाकंद हम लोगों ने यहाँ पर बनाया और जो कि इतना फेमस हुआ कि फौरन तक गया, और उसके बाद में हम लोग 30-40 साल तक दुकान चली है. GI टैग हमको मिल रही है, बहुत ही खुशी हुई है और हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं. उस समय का दूध बहुत ही आज से गाढ़ा बोलिए अच्छा बोलिए, उस समय 4-5 किलो में 1 किलो कलाकंद तैयार हो जाता था. इसमें चीनी, केसर, पहले सादा कलाकंद बनता था, उसके बाद केसरिया जब शुरू हुआ केसर पड़ने लगा, पिस्ता पड़ता था और गुलाब जल पड़ता है. ये बनाने का प्रोसेस है और इसको कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है तैयार होने में.
2: झारखंड की कला सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है. हजारीबाग की लगभग 4000 वर्ष प्राचीन धातु ढलाई कला डोकरा आर्ट को भी GI टैग क्लब में शामिल किया गया है. मिट्टी, मोम और पीतल को पिघलाकर अद्भुत मूर्तियां बनाने वाले झारक्राफ्ट सेंटर के हस्तशिल्पी इस फैसले से बेहद उत्साहित हैं.
4: GI टैग मिल गया तो देश विदेशों तक हमारे इस क्राफ्ट की पहचान जाएगी, झारखंड का नाम रोशन होगा और भी आगे बढ़ेगा. मल्हार जाति से आर्टिजन्स जो ये काम करते हैं वो बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पर झारक्राफ्ट में ट्रेनिंग भी दी जाती है. इस आर्टिजन को लग रहा है GI टैग मिल गया है तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा हमारा, तो इससे लगता है कि डोकरा क्राफ्ट और ऊपर जाएगा. मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने थोड़ा देखा इन कारीगरों को.
2: इस बार GI सूची में कुचाई सिल्क, बांस शिल्प, जादू पटुआ पेंटिंग और आदिवासी आभूषणों को भी जगह मिली है. वर्ष 2019 तक राज्य के पास सिर्फ सोहराय खोवर पेंटिंग को GI टैग प्राप्त था, जो अब उद्योग विभाग के विजन से 12 हो चुका है. इससे स्थानीय कारीगरों को कानूनी सुरक्षा और आर्थिक मजबूती मिलेगी. परिक्रमा के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी और हजारीबाग से गौरव प्रकाश के साथ रांची से मैं महविश रहमान.
0: The Andhra Pradesh government has drawn up an ambitious plan to transform Vishakhapatnam into a model green city through a series of sustainable development initiatives. The focus will be on increasing green cover, reducing pollution, promoting clean energy and encouraging eco-friendly transport across the city. We have more from a correspondent.
5: As part of its vision to develop Vishakhapatnam as a model green city, the Andhra Pradesh government will transform Andhra University into a model net zero campus and a global hub for environmental studies and sustainability. The plan envisages increasing the green cover on the university's 450-acre campus from the present 25% to 50% through large-scale plantation drives. Solar panels will be installed on campus buildings, while a biodiversity park will also be developed. The projects include scientific solid waste management, waste to energy and biogas plants, and systems for recycling and reusing wastewater. Electric bicycles will also be introduced to promote clean mobility within the campus, and a dedicated team of professors will oversee the university's transition to a net zero campus. The government has also planned focused measures to reduce pollution in areas surrounding the Vishakhapatnam port and major industrial zones. Dedicating cycle tracks will be developed across the city to encourage eco-friendly transport and health हेल्थियर लाइफस्टाइल्स। चीफ मिनिस्टर

0: In Chandrababu Naidu said, the government aims to increase Andhra Pradesh green cover to 50% and develop Visakhapatnam as a model city for sustainable urban growth through renewable energy, environmental conservation and modern green infrastructure. Allu Murali for Parikrama, Akashwani News, Visakhapatnam.
1: जी हाँ, बता दें महाराष्ट्र के पुणे जिले के ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों आलंदी और देहू से हर साल निकलने वाली पंडरपुर की वारी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है और ये दोनों पालकियां 21 दिन की यात्रा के बाद आषाढ़ी एकादशी से एक दिन पहले पंडरपुर पहुंचती हैं और पंडरपुर की वारी की 700 साल से भी ज़्यादा पुरानी परम्परा है। पूरे राज्य से लाखों वारकरी पंडरपुर में कृष्ण के रूप में विराजमान भगवान विट्ठल से मिलने के लिए विठू नाम का जाप करते हुए सैकड़ों मील का सफर करते हैं। भजन, कीर्तन और रिंगण इस यात्रा के मुख्य आकर्षण हैं। इस ऐतिहासिक परंपरा का दर्शन हमारे पुणे संवाददाता से।
2: संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पालकी यात्रा का इतिहास सिर्फ धार्मिक परंपरा का इतिहास नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र के सांस्कृतिक, सामाजिक और लोक जीवन का चलित दस्तावेज है। संतों के समय में पालकी समारोह की कोई औपचारिक संकल्पना नहीं थी। वारकरी ताल मृदंग, वीणा, भगवा झंडा और संतों की पादुकाएं या यादगार चीजें लेकर पंढरपुर की ओर पैदल निकल पड़ते थे। गांव में रुकना, रात में भजन कीर्तन, सुबह हरिनाम की धुन और फिर यात्रा। यात्रा इतनी सादगी से होती थी। कोई रथ नहीं, कोई नायक नहीं, कोई तय मुकाम नहीं, कोई प्रशासनिक इंतजाम नहीं। विट्ठल का नाम ही एकमात्र सहारा था। संत तुकाराम महाराज के वैकुंठ के जाने के बाद उनके छोटे बेटे चिरंजीव नारायण महाराज ने वारी का नेतृत्व संभाला। उन्होंने वारकरियों को संगठित किया और वारी को अधिक नियमित और अनुशासित रूप दिया। वारकरी परंपरा के कुछ जिक्रों के अनुसार शुरू में कुछ समय के लिए वारी दोनों संत परंपराओं के बीच एकता की भावना के साथ की जाती थी। इसलिए ज्ञानोबा तुकोबा का संयुक्त आह्वान वारकरी संप्रदाय की आध्यात्मिक एकता का प्रतीक बन गया। वारी सिर्फ पंडरपुर की धार्मिक यात्रा नहीं है, ये महाराष्ट्र के लोगों की एक जैविक परंपरा है। परिक्रमा के लिए मनोज क्षीरसागर, पुणे।
1: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था।
3: Yes, and in the FIFA World Cup, Argentina star Lionel Messi has become the first player in history to score in 7 consecutive World Cup games. The 39-year-old scored with a free kick after coming off the bench as Argentina won 3-1 against Jordan. It was Messi's 6th goal of the 2026 World Cup as he leads the Golden Boot race by 2 goals. Giovanni Lo Celso and Lautaro Martinez scored the other 2 goals for Argentina as they finished the Group J campaign with 3 wins from 3.
1: हाँ जी अभिषेक, देखिए अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और फिर बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
4: We remember freedom fighter and former Prime Minister of India, Pamulaparthi Venkata Narasimha Rao, who was born on the 28th of June 1921 at Karimnagar, Hyderabad. He is often referred to as the father of Indian economic reforms.
5: P.V. Narasimha Rao, popularly known as P.V., studied in Osmania University, Hyderabad, Bombay University and the Nagpur University. He was part of the Vande Mataram movement in the late 1930s in the Hyderabad state. Along with his distant cousins, Pamulaparthi Sadasev Rao, Raja Narendra and Devulapalli Damodar Rao, P.V. Narasimha Rao edited a Telugu weekly magazine called Kakatiya Patrika in the 1940s. Both P.V. Narasimha Rao and Sadasiva Rao contributed articles under the pen name Jaya Vijaya.
4: After independence, Rao joined politics and held many important portfolios. P.V. Narasimha Rao became the Chief Minister of Andhra Pradesh in 1971 and implemented land reforms and land sealing acts strictly.
5: He also secured reservation for the so-called lower castes in politics during his tenure. He was elected to the Lok Sabha in 1977 and handled several diverse portfolios, most significantly home, defense and foreign affairs.
4: P.V. Narasimha Rao became Prime Minister of India in 1991 and successfully led the liberalization of the Indian economy. The reforms opened up the Indian economy to foreign investment, reformed capital markets, deregulated domestic business and reformed the trade regime.
5: The impact of these reforms may be gauged from the fact that total foreign investment in India grew from $132 million in 1991-92 to $5.3 billion in 1995-96. The measures continue to impact the influx of foreign portfolio investment in India and have helped India become a strong global economy.
4: P.V. Narasimha Rao had special interest in Indian philosophy and culture, writing fiction and political commentary, learning languages, writing poems in Telugu and Hindi. He spoke 17 languages.
5: Rao suffered a heart attack on the 9th of December 2004 and died 14 days later at the age of 83.
1: और अभिषेक आज जयंती है निशानेबाज जसपाल राणा का जी उनकी अभी कुछ दिन पहले 12 जून को इनका निधन हुआ निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा सिर्फ 49 वर्ष के थे राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे जसपाल राणा ने मनु भाकर को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया और वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने में मदद की उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनका जन्म 28 जून 1976 को भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी में हुआ था जसपाल राणा के साथ ही तमिलनाडु के सलेम जिले के रहने वाले पैरा ओलंपिक हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलू का भी जन्मदिन इसी दिन होता है उन्होंने रियो डी जेनेरियो में हुए 2016 समर पैरा ओलंपिक खेलों में पुरुषों की हाई जंप T42 कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व किया और फाइनल में गोल्ड मेडल जीता खेल में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने मरियप्पन को पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान दिए इसके बाद 2020 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला
3: यस एंड वी आल्सो रिमेंबरिंग प्रोफेसर प्रशांत Chandra Mahalanobis, who passed on this day in 1972. He was a world-renowned Indian scientist, physicist and applied statistician, widely revered as the father of Indian statistics. He transformed statistics from an abstract academic subject into a powerful practical tool for governance, macroeconomic planning and nation-building in newly independent India. Mm-hmm. His birth anniversary on June 29th is celebrated annually as National Statistics Day in India.
1: और पता है उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वेल्डन मेडल पुरस्कार भी दिया गया था जबकि 1945 में रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो नियुक्त किया था वे आज़ादी के पश्चात नवगठित मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार बने वो आपने अभी बताया ही है औद्योगिक उत्पादन की तीव्र बढ़ोतरी के जरिए बेरोजगारी समाप्त करने के सरकार के प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने योजनाएँ बनाई प्रधानमंत्री नेहरू ने कृषि और बाढ़ नियंत्रण में उनकी मदद से कई प्रयोग किए सरकार को बाढ़ नियंत्रण में अप्रत्याशित सफलता मिली और उनका सबसे बड़ा योगदान उनका सैंपल सर्वे है जिसके आधार पर आज बड़ी बड़ी नीतियां और योजनाएं बनाई जा रही हैं
3: यस एंड ए के लोहिता दास पॉपुलरली नोन एज लोही वाज अ हाईली सेलिब्रेटेड इंडियन स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्लेराइट हु लेफ्ट अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन मलयालम सिनेमा बोर्न ऑन May 5, 1955 एंड हैविंग पास्ड अवे ऑन June 28, 2009 He spent over two decades crafting some of the most emotional, realistic and character-driven stories in Indian film history.
1: आज हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा उपन्यासकार अमर गोस्वामी की पुण्यतिथि है वे मनोरमा और गंगा जैसी देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं से लंबे समय तक जुड़े रहे थे अमर गोस्वामी साहित्यिक संस्था वैचारिकी के संस्थापक भी रहे उन्होंने कई साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन किया अमर गोस्वामी ने एक प्राध्यापक के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया महिलाओं की बहुचर्चित पत्रिका मनोरमा में उन्होंने बतौर उप संपादक अपनी सेवाएं प्रदान की उनकी मुख्य रचनाएं हैं इस दौर में हम सफर महुए का पेड़ धरती पुत्र बाहुबली अपनी अपनी दुनिया कल का भरोसा भूल भुलैया आदि
3: यस एंड आल्सो चारू विशाल डाडलानी was born on this day. He's a prominent Indian playback singer, music composer, lyricist and television personality. He's widely recognized as one half of the premier Bollywood music production duo Vishal and Shekhar and the frontman of the pioneering Indian indie rock band Pentagram. Let's go ahead and listen to one of his hit tracks.

0: आज कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कन्नड़ कवि डॉक्टर चिन्नवीरा कनावी की जयंती है। उन्हें भावनाओं के कवि के तौर पर जाना जाता था, जो अलग अलग भावों में तालमेल बैठाने में माहिर थे। देखो अभिषेक, डॉक्टर कनावी की कविताओं का पहला संग्रह काव्याक्षी 1949 में प्रकाशित हुआ था। उन्हें 1981 में उनकी रचना जीवा ध्वनि के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें कर्नाटक सरकार से राज्योत्सव पुरस्कार, पंपा पुरस्कार, नाडोजा की उपाधि और कई अन्य पुरस्कार भी मिले।
1: Yes, and also Jean Jacques Rousseau was a highly influential Genevan philosopher, writer and political theorist whose ideas profoundly shaped the age of enlightenment across Europe. His radical thoughts on human nature, governance and individual freedom laid the intellectual foundation for the French Revolution and heavily inspired the subsequent Romantic movement. And Rousseau famously agreed that humans are inherently good, free and empathetic by nature, but are corrupted by the development of civil society, civilization and private property.
0: वैसे बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर राजीव वर्मा का भी आज जन्मदिन है और वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आज के दिन भोपाल में साल 1949 में इनका जन्म हुआ था। वो दो दशकों से अधिक समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अब समय हमें ऐसा लगता है कि कह रहा है कि भाई बस। तो आज का परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, तो इजाज़त दीजिए मुझे यानी चारू सक्सेना और मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय को।
1: नमस्कार, नमस्कार।

मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे ही हमारी संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये सरहरी, करंजवा, सिंगरा, कैराडांड, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर, रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और रघुनाथ नगर में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधमा, बदौली, पेंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवापारा, चीनिया, महावीरगंज, कनकपुर, टकिया, सोनहत, नवगई, गैना के वन क्षेत्रों में

0: विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये सकालो किशुनपुर, घंघरी, खलीबा, पड़ौली, अमड़ी, जमीरा, मसगा, असकला, दोरना, जरहाडी, सायर, लक्ष्मणगढ़, सुखरी भंडार, सस्कालो, ढेकी डोली, एरन, नवापारा, गढ़गांव, बरडाण, चोरकी पानी, दाती आप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, बगीचा, दुलदुला में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, राजा आमा, महेशपुर, साजापानी, गट्टी बुड़ा, हल्दी मुंडा, ढोढ़ा डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 126 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बंगुरसिया, सपनई, जोबी, बरगढ़, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़, फुरफुंदी, तालदादर, अचानकपुर, नवागांव, पकरीत, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोठ।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण।

पहली जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र सरले करेंगे शाम 6:30 से 6:45 शाम 7 से रात 8 तक रात 8:30 से रात 8:45 और रात 9:15 से मैच की समाप्ति तक। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश की जनता के नाम संबोधन के छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण होगा आज रात 8:00। जिले की चिट्ठी में शाम 6:05 पर सुनेंगे जशपुर जिले की चिट्ठी। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी अब से थोड़ी ही देर बाद 5:10 पर। इसमें आजकल में आज की बात होगी राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस पर। साथ ही होगा क्रम राग नंदिनी, आलेख और संपादन वीर भंसाऊ का और होगा क्रम सवालों के आईने में। अब जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम होगा कल रात 8:30 पर और पब्लिक स्पीक कार्यक्रम सुनेंगे रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर का प्रसारण होगा सुबह 7:05 पर। कवि गोष्ठी सुनिएगा कल सुबह 8:30 पर। किशोर समस्याओं पर आधारित कार्यक्रम दहलीज सुनिएगा सुबह 9:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:00 सुनिएगा पंडित डी के दातार का वायलिन पर बजाया राग अहिर भैरव और राग पटदीप। महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में दोपहर 1:30 पर आज की बात होगी संकल्प में सिद्धि है और होगी चर्चा हमारा स्वास्थ्य और योग। साथ ही सुनेंगे क्रम आज की नारी में शिक्षाविद श्रीमती सौम्या रघुवीर से ली गई भेंट वार्ता। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी कल शाम 5:10 पर। इसमें आज कल में आज होगी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का दिवस। साथ ही होगी परिचर्चा स्टार्टअप और आज के युवा। प्रतिभागी होंगे के अभिषेक राव, वेदांग शंकर सिंह ठाकुर। संचालन होगा अपेक्षा शुक्ला का। किसानों का कार्यक्रम चौपाल प्रसारित होगा शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात होगी खेती माँ मौसम के पूर्वानुमान के महत्व और आज की सलाह में डॉक्टर साकेत दुबे जानकारी देंगे मॉनसून माँ पपीता और केला के खेती के प्रबंधन पर। सुरों का सफर कार्यक्रम प्रसारित होगा कल रात 10:00।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युवा वाणी।

0: आने वाले कल की चिंता में आज का हंसना क्यों छोड़ें?
1: क्यों ना समझदारी से हम हर अनिश्चितता को रुख मोड़ें?
0: जीवन के इस धूप छाव में जो वक्त रहते ढाल बनते हैं, मुश्किल कैसी भी आए वो कभी हौसले नहीं खोते हैं।
1: आज कदम बढ़ाएं सुरक्षा की ओर, सही सच्ची जागरूकता है ये, क्योंकि सुरक्षित भविष्य ही खुशहाल कल की पहली नींव है।
0: स्वागत है साथियों आपका कार्यक्रम युववाणी में, जहां आज आप सुनेंगे आपके दो कंपियर साथी यानी मैं तेजेश्वरी साहू
1: और मैं मलिका सुभाषीश। तो स्वीकारें हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार। साथियों आज है 28 जून यानी राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस। दोस्तों बीमा हमारे जीवन में सुरक्षा कवच की तरह होता है, जो भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने में बहुत मददगार होता है।
1: पर तेजेश्वरी, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बीमा एक फिजूल खर्च होता है। लोगों को लगता है कि अगर सब सही चल रहा है तो क्यों फालतू में बीमा प्रीमियम देकर अपना खर्च बढ़ाएं, जब कुछ होगा तब देखा जाएगा।
0: हाँ मल्लिका, पर ये ही तो बहुत बड़ा भ्रम होता है। अच्छा ये बताओ, जब हम नया फोन लेते हैं तो सबसे पहली चीज क्या करते हैं भला?
1: आसान जवाब है इसका, अपने फोन को एक नया स्क्रीन गार्ड और एक सुंदर सा बैक कवर लगाकर गिफ्ट देते हैं, ताकि हमारा नया फोन सुरक्षित रहे और उसे कोई नुकसान ना हो।
0: बिल्कुल सही बात कही तुमने। जब हम एक फोन की सुरक्षा का इतना ख्याल रखते हैं तो अपनी जिंदगी अपने परिवार का क्यों नहीं भला। साथियों आपको मालूम है बीमा कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होता है, बल्कि ये तो एक निवेश होता है। जरा सोचिए, घर के कमाऊ मुखिया को अगर अचानक किसी अनहोनी का सामना करना पड़ जाए तो उस वक्त परिवार की क्या स्थिति होगी। ऐसे में तुरंत पैसे जुटाना किसी भी समान न्याय वाले परिवार के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन वहीं अगर बीमा हो तो ये समय कितना भी मददगार हो सकता है।
1: बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। दोस्तों मुख्य रूप से आप स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, अपनी मोटर गाड़ी या अपनी अन्य संपत्ति का भी बीमा करवा सकते हैं। पर तेजेश्वरी, अक्सर मन में एक सवाल उठता है ना कि आखिर हम शुरुआत कहाँ से करें, सही बीमा का चयन कैसे करें। एक तो बीमा कंपनी इतनी तरह तरह के नियम और शर्तें बताती है कि ये समझ ही नहीं आता कि कौन सा बीमा लें और कहाँ से शुरू करें, जो हमारे जेब पर भी भारी ना पड़े।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मलिका तुमने। ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि बीमा कभी भी किसी के बहकावे में आकर ना लिया जाए। हमेशा समझदारी और अपने जेब पर पड़ने वाले भार को ध्यान में रखकर ही सही बीमा का चयन करें। और हाँ दोस्तों, बीमा हमेशा IRDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा ही मान्यता प्राप्त कंपनी से लें, क्योंकि सुरक्षा तभी है जब समझदारी है।
1: बिल्कुल दोस्तों, और अब तो सरकार भी बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए तरह तरह की बीमा योजनाओं और बीमाओं को उपलब्ध करवा रही है, तो हमें इसका फायदा तो बिल्कुल उठाना ही चाहिए।
0: जी हाँ दोस्तों, बीमा पॉलिसी खरीदने से पहले हमेशा एक अच्छे वित्तीय सलाहकार और भरोसेमंद एजेंट से ज़रूर मिलें और पूरी जानकारी लेकर ही सही पॉलिसी चुनें। साथियों क्या आपको मालूम है, जब कम उम्र में हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका प्रीमियम उतना ही कम और भविष्य में ज़्यादा फायदेमंद होता है। और हाँ दोस्तों, एक और ज़रूरी बात जो आपको बीमा लेते समय ध्यान रखनी चाहिए वो है बीमा कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो।
1: क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अच्छा ये क्या होता है?
0: मलिका, क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी बीमा कंपनी अपने कितने प्रतिशत पॉलिसी धारकों को क्लेम का भुगतान करता है। यानी अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो किसी भी कंपनी का अच्छा है तो पॉलिसी लेना ज़्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि आपके पॉलिसी के सेटलमेंट की सुनिश्चितता होगी।
1: सही जानकारी दी है तो तुमने। दोस्तों बीमा ना केवल सुरक्षा बल्कि मानसिक शांति भी देता है, क्योंकि जब आपको ये मालूम होता है कि आप, आपका परिवार, आपकी संपत्ति सुरक्षित है तो आप निश्चिंत रहते हैं।
0: और हाँ दोस्तों, क्या आपको ये मालूम है कि बीमा से आपको टैक्स में भी काफ़ी फायदा मिलता है। जब आप जीवन बीमा का प्रीमियम देते हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट का प्रावधान है, और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर अधिनियम की धारा 80U के तहत टैक्स में लाभ का प्रावधान है। और तो और साथियों, बीमा के कारण लोन मिलना भी बहुत आसान हो जाता है।
1: अच्छा, यानी स्मार्ट प्लानिंग, फायदा, सुरक्षा सब एक साथ।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों बीमा को फिजूल खर्च न माने, ये तो बचत और निवेश को बढ़ावा देता है, भविष्य को सुरक्षित रखता है और मानसिक शांति भी देता है। तो आज ही जाएं और अपने वित्तीय सलाहकार से साझा कर सही बीमा का चयन करें।
1: और हाँ दोस्तों, बीमा लेते समय डिजिटल फ्रॉड या स्कैम, इससे बचने के लिए पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि समझदारी है तो सावधानी है।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, आज है चौथा रविवार और आज हम सुनते हैं क्रम रागनंदिनी। इसमें आज प्रस्तुत है रागनंद का परिचय। इस राग पर आधारित फिल्मी गीत और सुप्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां का परिचय। आलेख और संपादक बीरभान सानू भानु का है।

संगीत आदि और अनंत है। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही संगीत की उत्पत्ति मानी गई है। संगीत का स्वरूप भावनात्मक होता है, जिससे वह मनुष्य की भावनाओं मनोदशाओं को परिवर्तित कर सकता है। दुखी इंसान को श्रृंगारिक राग सुनाकर या आह्लादित व्यक्ति को करुण राग सुनाकर उसकी मानसिक दशा में सहज ही अपेक्षित परिवर्तन किया जा सकता है। संगीत के भावनात्मक स्वरूप की इस यशोगान के साथ स्वीकारें हमारा अभिवादन, नमस्कार। सुधी श्रोता साथियों, राग नंदनी के इस अंक में चर्चा करेंगे राग नंद की और सुनेंगे इस राग पर तैयार कुछ फिल्मी गीत, साथ ही शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के जीवन को जानने का प्रयास करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं राग नंद की। राग चंद्रिका सार में राग नंद को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, दोनों मध्यम लग रहे आरोहन रेहानी सपवादी संवादिते नंद राग पहि।

नंद की उत्पत्ति कल्याण थाट से हुई है। इस राग में मध्यम के दोनों रूप तथा शेष स्वर शुद्ध प्रयुक्त होते हैं। आरोह में ऋषभ स्वर यानी रे स्वर वर्जित होता है। ऋषभ स्वर वर्जित होने के कारण इस राग की जाति षाडव संपूर्ण मानी जाती है। राग नंद का वादी स्वर षडज तथा संवादी स्वर पंचम होता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार राग नंद में राग बिहाग, कामोद, गौण सारंग आदि रागों का मधुर मिश्रण माना जाता है। चर्चा को आगे विस्तार देंगे, उससे पहले आइए इस राग पर तैयार और जनमानस में अति लोकप्रिय फिल्म मेरा साया का यह प्यारा सा गीत सुनवाते हैं।

अभी आपने सुना फिल्म मेरा साया का लता मंगेशकर का गाया यह प्यारा सा गीत। द्विमस्ती व्रे तरह सांस आरोहे नास्ति रीस्वरह पसंवादी गवक्रश्च नंदस्तु रात्रि गोचरह। राग नंद को राग नंद कल्याण भी कहा जाता है। इसके अलावा इसी राग को आनंदी या आनंद कल्याण भी कहा जाता है। राग नंद चंचल प्रकृति का राग है। इस राग में विलंबित आलाप नहीं होता है। मंद्र सप्तक में इसका गायन भी नहीं किया जाता है। राग नंद को गाने बजाने का समय रात का पहला प्रहर है। राग नंद में प और रे स्वर की संगति बार बार दिखाई जाती है। भारतीय हिंदी सिनेमा के गीतों में गीत रचना में राग नंद का अच्छा प्रयोग हुआ है। कुछ गीतों में अन्य रागों की छाया लेकर मधुरता में वृद्धि देखने को मिलता है। राग नंद पर तैयार गीतों में प्रमुख रूप से फिल्म खूबसूरत के गीत पिया बावरी 1942, अ लव स्टोरी का गीत प्यार हुआ चुपके से, इसमें राग सारंग और राग केदार का भी प्रयोग हुआ है। फिल्म अंदाज का गीत उठाए जा उनके सितम आदि उल्लेखनीय है। आइए अब फिल्म तेरे घर के सामने का यह प्यारा सा गीत सुने। इस गीत में सौंदर्य की दृष्टि से राग पहाड़ी का भी प्रयोग किया गया है।

ये तो था रागनंद का संक्षिप्त परिचय। और आइए अब एक ऐसे हस्ती के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे जिन्होंने शादी विवाह के अवसरों और मंदिरों में बजाए जाने वाले लोक वाद्य शहनाई को केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत में ही नहीं वरन विश्व संगीत में प्रमुख स्थान दिलाया। जी हाँ, शहनाई सम्राट भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां साहब।

मैं खादी का कुर्ता पाजामा और टोपी पहनकर शहनाई बजाता चल रहा था। मेरे आगे एक महिला कलश लेकर चल रही थी, मेरे पीछे राजेंद्र बाबू और उनके पीछे नेहरू जी चल रहे थे। उस वक्त एक कलाकार के रूप में मैं खुद को देश के शीर्षस्थ नेताओं के आगे पाकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। 15 अगस्त 1947 को लाल किले में प्रथम स्वाधीनता समारोह में शहनाई वादन और स्वाधीनता समारोह को अपने हृदय में समाए अपना अनुभव बांटने वाले महान शहनाई सम्राट का अधिकांश जीवन वाराणसी के गंगा जी के तट पर विश्वपति भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में शहनाई बजाते बीता। गंगा तट पर अपनी स्वर साधना का चर्चा करते हुए एक अवसर पर उन्होंने जो कहा है वह हृदय को आनंदित करता है। हम गंगा नहाते थे और सीढ़ियां चढ़कर जाते थे बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाने। सुबह 4:30 बजे आरती होती थी, शंख बजता था, घंटा बजता था, हम वही सोते थे। जब आरती पूरी हो जाती थी तो पुजारी मुझे जगाकर कहते थे, खां साहब अब आप शहनाई बजाइए।

कला पैसे खर्च करके नहीं आती। पैसा खर्च करने से देव प्रसन्न नहीं होते। लगन चाहिए, विश्वास चाहिए। हमारे मजहब में लिखा है, किसी देवता को बुरा मत कहो। पता नहीं कौन किस रूप में आ जाए। शहनाई वादकों के खानदान में 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमर गांव बक्सर के बंधन पटवा मोहल्ले में जन्मे बालक अमरुद्दीन खां, जो बिस्मिल्ला खां के नाम से विख्यात हुए, के पिता बचई मियां पैगंबर खां, दादा रसूल खां, परदादा हुसैन बक्स भोजपुर दरबार में दरबारी कलाकार थे। ऐसा कहा जाता है कि इमराव महाराज के किले में स्थित बिहारी जी के मंदिर में बिस्मिल्ला साहब के मुंह में शहनाई छुआई गई थी। तब वे महज 7 साल के थे। बचपन में बिहारी जी के मंदिर के सामने सुबह शाम शहनाई बजाया करते थे। उन्हें राज्य से 1.5 रुपए और रसद प्रति माह मिला करता था। 10 बरस के उम्र में उन्हें उनके मामा प्रख्यात संगीतज्ञ और शहनाई वादक अली बख्श जी के पास भेज दिया गया, जहां उन्होंने शहनाई की बारीकियों को आत्मसात किया। वाराणसी में गंगा के तट पर अवस्थित मंदिरों में शांत एवं आध्यात्मिक वातावरण में अपने गुरु मामू अली बख्श के साथ बिस्मिल्ला साहब घंटों रियाज किया करते थे। मामा से पलटों और रागदारी की शिक्षा के बाद उस्ताद मोहम्मद हुसैन खां से ख्याल, ठुमरी, धमार और ध्रुपद की विधिवत शिक्षा ली। प्रभात बेला में ललित और सांध्य बेला में मधुवंती उनके प्रिय राग थे। उन्होंने किराना घराने के अलावा आगरा और बनारस घराने की विशेषताओं का भी अपने वादन में समावेश किया है। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्ला खां साहब इलाहाबाद में आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में प्रथम बार सार्वजनिक मंच पर अपनी प्रस्तुति दी। तब कहा जाता है वे पसीने पसीने हो रहे थे। उन्होंने अपने मामू की ओर देखा तो मामू अली बख्श ने कहा, जाओ बेटा, बुजुर्गों और अल्लाह को याद करके जाओ। फिर बिस्मिल्ला खां पलट कर नहीं देखे और विश्वविख्यात शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्ला खां संगीत जगत को गौरवान्वित।

पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे सम्मानों के अलावा अनेकों सम्मान और उपाधियों से बिस्मिल्ला खां साहब सम्मानित किए गए और भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्ला खां की शहनाई 21 अगस्त 2006 को थम गई। गंगा जी का अनमोल रतन इस संसार को अलविदा कर गई।

इसी के साथ राग नंदनी का यह अंक संपन्न होता है। वाचन पायल विशाल, आलेख एवं संपादन बीर भानसाहू, प्रस्तुति सुमिता रॉय बर्मन। नमस्कार।

0: क्रम रागनंदिनी, इसमें अभी आप सुन रहे थे रागनंद का परिचय। इस राग पर आधारित फिल्मी गीत और सुप्रसिद्ध सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां का परिचय। आलेख और संपादन थे बीरबान साहू के, वाचर और स्वर थे पायल विशाल के।
1: साथियों, चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और शुरू करते हैं क्रम सवालों के आईने में। तो दोस्तों, आज अंक 103 में जो सवाल पूछे गए थे, सबसे पहले जान लेते हैं उनके सही उत्तर। सबसे पहला प्रश्न था, कौन सी मछली पानी में गोलियां चलाती है? इसका सही उत्तर है आचार फिश, यानी धनुष मछली।
0: अगला सवाल था, भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP कब लागू हुई थी? जिसका जवाब है साल 2020।
1: तीसरा प्रश्न था, विश्व का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है? इसका सही उत्तर है टोबैगो मेन रिज फॉरेस्ट रिजर्व।
0: अगला सवाल था, कौन सा रासायनिक तत्व सबसे अधिक तापमान पर तरल अवस्था में होता है? जिसका जवाब है गैलियम।
1: पांचवा प्रश्न था, हिंदी कविता में किस कवि को युवाओं का कवि के रूप से जाना जाता है? और इसका सही उत्तर है डॉक्टर कुमार विश्वास।
0: अंतिम सवाल था, माचू पीचू का निर्माण किस सभ्यता ने किया था? जिसका सही जवाब है इंका सभ्यता ने।
1: तो साथियों, अब सही जवाब है आपके पास, और हमारे पास है उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें सारे 6 सही जवाब भेजे हैं। तो आइए जानते हैं 6 सही उत्तर भेजने वाले श्रोता साथियों के नाम। बिलाईगढ़ से रोशनलाल कौशल्या, हेमलता डिंपल देवांगन, महासमुंद से भीष्मदास, मानिकपुरी नर्मदा, हिरमणि दीपक, लक्षदास, जवाहरनगर दुर्ग से RC कामरे, करुणा मीना, अश्विनी विपुल कामड़े, महासमुंद से अदालत दास, वैष्णव मानव, शांति रुचा, गायत्री वैष्णव, पलारी से प्रकाश निखिल, प्रिंस यशस्वी वर्मा, चिरीमिरी कुरासिया, कालरी से इंद्रभान अनुभव, ऋषभ राम सहोदर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद लहरे, बटेना पाटन जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति नीरा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, फुलझर घटारानी से योगेश्वर डोमेश्वरी, यामिनी मुस्कान, हर्षिता साहू, पोटियाकला दुर्ग से संजय सुशांत शशांक, सुजाता सीमा साहू, भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, बसंत विगु, विनय ठाकुर, चोवाराम वर्मा, अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम, खलारी भीमखोद से GL साहू, सरोज छोटी पिंकी, कोमा खान छत्तीसगढ़ से प्रजानंद देवांगन, नंदिनी प्रकाश, गायत्री यशवर्धन, यशस्वी देवांगन, खमार मुंडा से सतीश, श्रेयांश शिवाय, एकांश गोस्वामी, भीम खोज तरपोंगी से संतोष गुप्ता, हितेश होमेश, लक्ष्मी प्रतिभा, शीतल गुप्ता, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से, विनोद खड़से, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह मोरस, अनिल अजीत, आयुष और नंदिनी जंगेल।
0: गंडई टिकरा पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरी बाई, दीपक कुमार, जयश्री, ऋषभ, रीचा देवांगन, पुरैना खैरागढ़ से पूजा जंगेल, धारनी रेखा, ध्रुव जंगेल, सोलेभाटा महासमुंद से जीतू, केवल, किरण, दिव्यांशु, खेमू ध्रुव, धमतरी से खिलेश कुमार, चित्ररेखा, शुभम, सेजल साहू, नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा, राजनांदगांव से ताराचंद साहू, ओम, माही, धर्मेंद्र साहू, राजनांदगांव से बीरेंद्र कुमार, अंजलि, योगिता, गजेंद्र गुप्ता, मनोज साहू, देवेंद्र, लवीना वासनी और गरिमा साहू, सिग्मा से रमेश कुमार, माया, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव, चिल्फी से रामकुशल, संतोष, दीपांशु, दिव्या, दीपांजलि, दीपक, टेकलाल पटेल, कांकेर संबलपुर से फागुराम, ज्योति, ओजस्वी यादव, रूपापाली बसना से हीरालाल, जगत, देवेश, ब्रिजेश, एकता, लवण्या कश्यप, नीतू, चीतू, रिया, जया, राहुल, युवराज सी, सूर्यवंशी।
1: लुकाउपाली छटवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला, निहारिका, पंकज सूर्यवंशी, पलारी से नीतीश कुमार, ईशांत देवांगन, सावित्री तनुजा, नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, लखनलाल देवांगन, बूढ़ा देव पारा लुकाउपाली छटवन से नीतू, जीतू, रिया, जया, राहुल, युवराज सिंह सूर्यवंशी, रूपापाली बसना से हीरालाल, चंद्रिका, देवेश, ब्रजेश, जगत, मोतीलाल भीमटे, कवर्धा से मुनीराम, गुनीराम राजपूत, संतोषी, हेम प्रधा, हेमप्रभा, पुष्पराज सूरज राजपूत, अमलीढ़ी कवरदा से संतोष, हेमप्रभा पूर्वी गौरव राजपूत, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, पुटकी कला कवरदा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर, नयन सुमांशु पांडे, महासमुंद से भीष्मदास, मानिकपुरी नर्मदा, हिरमणि दीपक, लक्ष्यदास, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका अंशिका, तन्मय गजबीय, कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लिलेश्वरी खुशांत निशांत साहू, पीपरपाला पालचुवा मुंगेली से उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी, भानुप्रिया योगिता नितिन वंशिका दिवाकर, चरडोगरी पिपरिया से दुर्गाराम अजय जय, किशन कुमारी इंद्राणी माया साहू,
0: रिंगनी से दिनेश, करुणा वर्मा, दुर्गापारा संतोष नगर।

0: नागपुर से छन्नूलाल, पुष्पलता, अर्पिता, अभिनव, बलदाऊ, राजेश्वरी, आस्था, अनुराग, अभिषेक, प्राची, प्रियल, डुग्गू, कान्हा यादव, धरसेवा से छेदूलाल, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराग, अल्पना, रानू, खुशी, प्रवीण कुमार साहू, इकबाल कुरैसी, कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद पूर्णेन्द्र और साहिल चंद्राकर, बलौदा बाजार से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला खुशबू, ज्योति ठाकुर, बोरसरा से प्रमोद कुमार साहू, दतरेंगी भाटा गांव से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा, परसाटोला अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुषारणी, खुमेंद्र मसिया।
1: साथियों, अब जानते हैं पांच सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं के नाम। लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणि, साहिल भारती बघेल, सहला मालगी से सुखनंद चंद्रवंशी, शिवरानी, आकाश, प्रतिभा पूर्वी, पूनम चंद्रवंशी, सिंघारबाड़ी गुटकू से भगत राम पटेल, किशन सोनम, मानवी पटेल, सौगा मगर रोड से फनेश, सावित्री, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र, हेयांश चंदन, पथरिया भरेवा से चंदूलाल नारायणी, नोमेश नेहा, वान्या सिंगरौल के। और चार सही जवाब भेजने वाले श्रोता साथी हैं पुरैना से धर्मेंद्र जंगेल, संतराम लोधी, नागेश्वर जंगेल, साहूकार लोधी, टिकराबारा रायपुर से लता देवी चौहान। तो दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त है जानने का अंक 104 के नए सवाल। उम्मीद है आप अपने पेन और पेपर के साथ तैयार होंगे। तो आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है।
0: पहला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? मैं वापस दोहराती हूँ, सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था?
1: दूसरा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश ने शुरू किया था? मैं प्रश्न फिर दोहराती हूँ, नोबेल पुरस्कार किस देश से शुरू हुआ?
0: अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैव मंडल यानी बायोस्फेयर रिजर्व कौन सा था? मैं पुनः प्रश्न दोहराती हूँ, भारत का पहला जैव मंडल यानी बायोस्फेयर रिजर्व कौन सा था?
1: चौथा प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष यानी एक्सिस पर सबसे तेज घूमता है? चौथा प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष यानी एक्सिस पर सबसे तेज घूमता है?
0: पांचवा प्रश्न है, सुल्तान ऑफ स्विंग किस क्रिकेटर को कहा जाता है? पांचवा प्रश्न है, सुल्तान ऑफ स्विंग किस क्रिकेटर को कहा जाता है?
1: और साथियों, आज का अंतिम प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? अंतिम प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो श्रोता साथियों हमें
0: पत्र भेजने के लिए हमारा पता लिख लीजिए। क्रम सवालों के आईने में युवाणी द्वारा केंद्र निर्देशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर। हमारा पिन कोड है 492001।
1: जो श्रोता साथी हमें ईमेल भेजना चाहते हैं वो हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है airyout9@gmail.com। और दोस्तों, सब्जेक्ट कोड में Y12 लिखना ना भूलें। इसी के साथ क्रम सवालों के आईने में समाप्त होता है।
0: साथियों, समय हो गया है अभी हमारे अगले क्रम यानी फिल्म संगीत का। मलिका, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारी लाइफ भी बॉलीवुड के फिल्म की तरह है? फुल इमोशन, ड्रामा, सस्पेंस, पता ही नहीं होता कि कब क्या हो जाएगा।
1: बिल्कुल सही कह रही हो तुम। पर ये सारी चीज़ें ही तो है ना जो हमारे जीवन को और दिलचस्प और मज़ेदार बनाती है।
0: और वही संगीत हमारे जीवन को और भी ज़्यादा रोचक और मज़ेदार बनाने का काम करती है।
1: तो क्यों ना तेजेश्वरी, हम अपने श्रोता साथियों को अपनी फिल्मी संगीत के पिटारे में से एक बेहतरीन गाना सुना दें।
0: बिल्कुल, तो साथियों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: साथियों, अभी सुन रहे थे आप ये गीत फिल्म थ्री इडियट से, जिसे सुरों से सजाया था सूरज जगन और सरमन जोशी ने। गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे और संगीतकार है शांतनु मोहित।
1: साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं आज की अंतिम प्रस्तुति।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। ये गीत स्वर थे फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, अभय देओल के। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने, संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पर जाने से पहले जान लीजिए कल के आकर्षण। कल की युवाणी सजेगी हिंदी में, जिसमें आप सुनेंगे परिचर्चा, विषय होगा स्टार्टअप और आज के युवा, प्रतिभागी होंगे देवांग सिंह ठाकुर और के अभिषेक राव। साथ ही आप सुनेंगे क्रम अपनी पसंद। तो दोस्तों, इसी के साथ दीजिए इजाजत अपनी साथी मल्लिका सुभाषीश
1: और तेजेश्वरी साहू को, और स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6 बजने को हैं, समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
2: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
2: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत

0: समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। जिले की चिट्ठी में सुनिए जशपुर जिले की चिट्ठी। आलेख है तरुण प्रकाश शर्मा का।
2: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं जशपुर जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में योजना के प्रचार प्रसार के लिए ग्राम सभाओं, चौपालों, पोस्टर बैनर, मुनादी, रथ प्रचार और डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, स्व सहायता समूहों की महिलाएं, जनप्रतिनिधि और स्थानीय सामाजिक संगठन भी लोगों को योजना की जानकारी देने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा ग्राम और जनपद पंचायतों के साथ ही जिला स्तर पर प्रशिक्षण बैठकें और ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके माध्यम से ग्रामीणों को योजना के विभिन्न प्रावधानों और लाभ की जानकारी दी जा रही है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का स्थान लेगी। श्रोताओं, राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज जशपुर जिले में 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। दवा पिलाने के लिए जिले में 1200 से अधिक बूथ बनाए गए थे। जो बच्चे आज दवा पीने से छूट गए उन्हें कल और परसों यानी 29 और 30 जून को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिन घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। इस अभियान के तहत जिले में 1,15,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। श्रोताओं, जशपुर जिला अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया है। करीब 292 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन जशपुर को पहली बार राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। यह रेल नेटवर्क रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ से जशपुर जिले के पत्थलगांव होते हुए झारखंड के लोहरदगा तक विकसित होगी। इससे किसानों, व्यापारियों और युवाओं को लाभ मिलेगा। साथ ही क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्रोताओं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 20 जून को जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र में आयोजित जैविक किसान मेला और प्राकृतिक तथा जैविक खेती कार्यशाला में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि ही विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला है। श्री साय ने कहा कि आधुनिक कृषि तकनीक, बेहतर फसल चयन, प्राकृतिक और जैविक खेती तथा मजबूत बाजार व्यवस्था से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने का आह्वान किया। अपने जशपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने बगिया से जश लर्न कार्यक्रम का जिला स्तरीय शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि जश लर्न कार्यक्रम बच्चों की गणितीय समझ विकसित करने, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने तथा सीखने के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस कार्यक्रम को अब जिले के सभी विकास खंडों तक विस्तारित किया जाएगा। जशपुर पुलिस ने 24 जून को जिले के सभी 766 गांवों में एक साथ जन चौपाल लगाकर हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत को कम करने और यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जशपुर पुलिस द्वारा हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत इन गांवों में जन चौपाल, विशेष ग्राम सभा और हेलमेट जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। श्रोताओं, जशपुर वनमंडल ने 19 जून को एक ही दिन में 2,00,000 से अधिक सीड बॉल के प्रसार और रोपण कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में वनमंडल को इसका प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बीज गोला बनाबो, जशपुर के जंगल ला बढ़ाबो अभियान में ग्रामीणों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने भागीदारी निभाई। इस अभियान का उद्देश्य प्रकृति संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और हरित आवरण में वृद्धि करना है। श्रोताओं, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत जिले में 11 बसें चलाई जा रही हैं, जिससे दूरस्थ गांव में रहने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा हो रही है। इन बसों का संचालन कैलाश गुफा से बगीचा, सन्ना से चंपा, रनपुर से कांसाबेल, दोकड़ा से दुलदुला, जशपुर से हर्री, पत्थल गांव से नारायणपुर, दुलदुला से अबीरा जैसे विभिन्न मार्गों पर किया जा रहा है। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रहे थे जशपुर जिले की चिट्ठी। आलेख था तरुण प्रकाश शर्मा का। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। मन की बात कार्यक्रम मा प्रधानमंत्री हा देशवासी मन ले जल संरक्षण के संबंध मा वर्षा जल के एक एक बूंद ला बचाए के करीन अपील। ए कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आने आने जगह मा घलो सुनेगीस। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर मा शून्य ले 5 बछर तक के लईका मन ला पोलियो के दवाई पिलाए गीस। और मौसम विभाग हा अवैया 3 दिन तक बस्तर संभाग मा 1-2 जगह मा मध्यम ले भारी वर्षा होए के चेतावनी देहे। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा कहिन है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन मा ध्यान केंद्रित करत हुए भारत समुद्र ले लेके आकाश तक ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनत है। आकाशवाणी ले मन की बात कार्यक्रम मा श्री मोदी हा कहिन है कि जून महीना मा स्वदेशी C-295 विमान के पहली उड़ान के संग ही भारत हा विमान क्षेत्र मा एक बड़का सफलता हासिल करे है। श्री मोदी हा कहिन है कि इही महीना कोलकाता मा 3 युद्धपोत के जलावतरण करेगीस और DRDO हा लंबा दूरी के क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण करे है। प्रधानमंत्री हा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के चर्चा करिन जेला दुनिया भर मा मनाएगीस। ए बार ए आयोजन 2,500 ले ज्यादा जगह मा होइस। भारत मा करोड़ों लोगन मन हा योग दिवस मा भागीदारी दिन। श्री मोदी हा अहमदाबाद मा विश्व योगासन चैंपियनशिप मा पदक विजेता एथलीट ला बधाई दिन। प्रधानमंत्री हा पश्चिम एशिया मा युद्ध के दौरान उखर अपील मा देशवासी मन के समर्थन और सहयोग बर आभार जताइन। प्रधानमंत्री हा देशवासी मन ले जल संरक्षण के संबंध मा कहिन कि वर्षा जल के एक एक बूंद ला बचाए जाना चाहिए। उन्होंने कहिन कि कैच द रेन अभियान मा जरा भी ढिलाई नहीं होना चाहिए। मन की बात कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आने आने जगह मा सुनेगीस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय मा जनप्रतिनिधि और मनखे मन संग ए कार्यक्रम ला सुनीस। ए बेरा मा मुख्यमंत्री हा कहिन कि मन की बात आज जनता और नेतृत्व के बीच संवाद के सशक्त माध्यम बन चुके है। प्रधानमंत्री के विचार देशवासी मन ला प्रेरित करे के संगे संग समाज मा सकारात्मक परिवर्तन के रद्दा घलो प्रशस्त करत है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में 0 से 5 बछर तक के लइका मन ला पोलियो के दवाई पिलाई गईस। आज जौन लइका मन दवाई पिए ले छूट गए हैं उमन काली और परन दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाके दवाई पिलाही। ये अभियान के तहत प्रदेश में 35,98,000 ले ज्यादा लइका मन ला पोलियो की खुराक पिलाए के लक्ष्य रखे गए हैं। बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल प्रदेशवासी मन ले अपील करे है कि ओमन अपन 0 से 5 बछर तक के हरेक लइका मल्ला पोलियो के 2 बूंद दवाई जरूर पिलाए। सिसाय हा अपन संदेश में कहीन कि ए दवाई नहीं लइका मन के स्वस्थ सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के सुरक्षा के संकल्प है। ओमन हा सबो मन के मन ले आग्रह करे है कि ओमन तीर तखार घलो ए सुनिश्चित करे कि कोनो भी लइका पल्स पोलियो के 2 बूंद ले छूटे झन। केंद्रीय ग्रामीण विकास

0: जुलाई तक चलैया इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में सहकारिता ला बढ़ावा दे बर आने आने कार्यक्रम आयोजित होही। रायपुर में अवैया 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तरीय चिंतन शिविर सहकार मेला और संगोष्ठी के आयोजन करे जाही। इमा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होही। सहकार मेला में सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धि और सफल मॉडल के प्रदर्शन करे जाही। 6 जुलाई के केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह डाले अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्सों गोदाम निर्माण के काम के भूमि पूजन करे जाही। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा काली 29 जून के नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वां बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान पर परिचारनगत दिशा निर्देश जारी कर ही ए शुभारंभ एनीमिया मुक्त भारत ले एनीमिया मुक्त भारत अभियान में परिवर्तित होए के कारण एनीमिया के विरुद्ध देश के लड़ाई में एक जरूरी मील के पत्थर साबित होही। ए अभियान में हीमोग्लोबिन परीक्षण, आयरन अल्पता, एनीमिया के प्रोटोकॉल आधारित उपचार, व्यवस्थित फॉलोअप और लाभार्थी के संदर्भ देना और स्वास्थ्य आहार संबंधी आदत ऊपर केंद्रीय परामर्श देना शामिल है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमारे फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बाचे समाचार गोती। पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण अभियान के तहत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कार्यक्रम ला लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के वर्चुअल बैठक हुई। ए बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो शामिल हुई। ए बेरा में मुख्यमंत्री कहिन है कि डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण ले न केवल कार्यकर्ता के बल्कि जनप्रतिनिधि मन के घलो डिजिटल और तकनीकी ज्ञान बाढ़ी। बैठक ला पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और संगठन महामंत्री पवन साय घलो संबोधित करीन। उन्हें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के प्रदेश प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्रही बैठक में ए अभियान के विस्तृत रूपरेखा और उद्देश्य के जानकारी साझा करें। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पेंशनर के हित में बड़का फैसला सुनात हुए 6वां और 7वां वेतन आयोग ले जुड़े 59 महीना के बकाया एरियर्स के भुगतान के रद्दा साफ कर दे है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल के खंडपीठ राज्य सरकार के रीट अपील खारिज करत हुए एकल पीठ के आदेश ला बरकरार राखी। अदालत था कि इनकी दू राज्य के बीच वित्तीय समन्वय या सहमति के अभाव पेंशनर के वैध अधिकार ला प्रभावित नहीं कर सके। सरगुजा जिला के रामगढ़ में काली 29 जून ले 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव के आयोजन करे जाही। महोत्सव के शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर ही। महोत्सव के पहली दिन छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ऊपर आधारित आने आने लोक नृत्य और लोकगीत प्रस्तुत करे जाही। जांजगीर चांपा जिला के ग्राम कोरबी में आज हुए एक सड़क हादसा में 3 लोगों के मौत मौका माही होगी। जानवा के मुताबिक बलौदा थाना क्षेत्र में अवैया भारतमाला रद्दा में मॉर्निंग वॉक में निकले 3 लोगों मल्ला अज्ञात वाहन अपन चपेट में ले लीस। मृतक में 2 डोंगरी और 1 कोरबी गांव के रहवैया रहीस। हादसा के बाद चालक फरार होगी। उन्हें सक्ती जिला के भेड़ीकोना गांव में चारपहिया वाहन मोटरसाइकिल सवार युवक मल्ला टक्कर मार दिस। ए हादसा में 1 युवक के मौत होगी। उन्हें 1 अन्य युवक घायल होगी। ये बीच बेमेतरा के ग्राम रावरपुर में अचानक कच्चा दीवार के ढह जाए ले 2 बहनी के मौत होगी। उन्हें 1 माई लोगिन घायल होगी। जानवा के अनुसार दोनों लड़का घर के आंगन में बैठे रही, इसी दौरान दीवार भरभरा के गिर गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डहरले हाल ही में पद्मश्री ले सम्मानित दंतेवाड़ा के समाज सेवी डॉक्टर बुधरी ताती के आकाशवाणी डहरले ले गए साक्षात्कार काली 29 जून के प्रसारित करे जाही। ए कार्यक्रम बिहनिया 10 बजे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र डहरले प्रसारित करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले कर ही। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग हा अवैया तीन दिन तक बस्तर संभाग मा एक दू जगह मा मध्यम ले भारी वर्षा होए के चेतावनी दे हे। उहें कुछ एक जगह मा गरज चमक के संग गाज गिरे की संभावना जता हे। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी हा आकाशवाणी समाचार ला बताएं कि आज ले अवैया सात दिन तक प्रदेश मा वर्षा के गतिविधि बाढ़ी। उहें उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ मा ज्यादा वर्षा के संभावना है। ये बीच आज बस्तर के संग प्रदेश के कतकोन जगह मा हल्का ले मध्यम वर्षा होए के खबर है। जगदलपुर मा गरज चमक और तेज हवा के संग जमके वर्षा हुई। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप बर ऑनलाइन आवेदन करैया 7 जुलाई ले करे जा सकत हे। ए योजना के तहत एमटेक डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मा प्रवेश लेवैया चयनित छात्र मनला हर महीना 50,000 रुपया फेलोशिप दे जाही। ट्यूशन फीस के पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करही। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घौं फेर। मन की बात कार्यक्रम मा प्रधानमंत्री हा देशवासी मन ले जन संरक्षण के संबंध मा वर्षा जल के एक एक बूंद ला बचाए के करीन अपील। ए कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आने आने जगह मा घलो सुनेगीस। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर मा शून्य ले 5 बछर तक के लइका मन ला पोलियो के दवाई पिलाएगीस। और मौसम विभाग हा अवैया तीन दिन तक बस्तर संभाग मा एक दू जगह मा मध्यम ले भारी वर्षा होए के चेतावनी दे हे। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जुहार।

0: आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रत्यपादयत् यत् स्वदेशी प्रतिरक्षोत्पादने सविशेषं बलं विधाय भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना देशस्य नागरिकाणां प्रति कार्तज्ञभावं ज्ञापितं, यतोहि जनैः स्वर्णक्रयणं विदेशयात्रा च किञ्चित् कालं यावत् स्थगिता। सेशेल्स् देशस्य विक्टोरिया नगरे आयोजितायाः प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तायाः अनन्तरं भारत सेशेल्स् देशयोर्मध्ये स्वास्थ्यं वित्तं समेत्य अन्तरिक्षादि विविध विषयेषु महत्वपूर्ण सहमतिपत्रेषु हस्ताक्षराणि अभवन्। प्रशासनेन भारतीय नागरिकाः संचेतिताः यत् ते सर्वेषाम् आवश्यकानां यात्रापत्राणां पूर्तिकया विना कैलाश मानसरोवर यात्रां न आरभेरन्। पश्चिमेशिया देशे सुरक्षा स्थितिः तीव्रगत्या अपक्षीयते, यत्र संयुक्त राज्य अमेरिका इरानः उभावपि परस्परं नूतनानि सैन्य आक्रमणानि अकुरुताम्। अपि च आईसीसी महिला T20 विश्वकप स्पर्धा मालिकायां भारतीय महिला दलम् अद्य लंडन नगरे ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिशिष्ट। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सविशेषं प्रत्यपादयत् यत् भारतेन जून मासे वैमानिकी क्षेत्रे एका महती सफलता अर्जिता, यत्र स्वदेश निर्मितस्य मेक इन इंडिया C-295 सैन्य परिवहन विमानस्य प्रथमं परीक्षण उड्डयनं सफलतापूर्वकं सुसंपन्नम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनान् संबोधयन् प्रधानमन्त्रिणा इयं सूचना प्रख्यापिता यत् सम्प्रति एतादृशानि चत्वारिंशत् विमानानि भारतदेशे एव विनिर्मीयन्ते।
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदिना गदितं यत् देशे अन्ये केचन महत्वपूर्णाः प्रयासाः विधीयन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे देहल्यां स्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा साइंस इत्यादिषु आधुनिक विषयेषु बीटेक पाठ्यक्रमस्य शुभारंभं विदधाति।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी सहर्षं न्यगादीत् यत् अद्य भारतीय संस्कृतिः विश्वस्मिन् हि विश्वे प्रसरति। श्री मोदी गौरवान्वितः अस्ति यत् भारतेन अस्मिन् मासे देशस्य सुरक्षायाः आत्मनिर्भरतायाः च क्षेत्रे महती सफलता समर्जिता। सः कोलकाता नगरे आयोजितम् एकं नौसेना संबंधी कार्यक्रमं संबोधितवान्, यत्र INS दुनागिरी, INS संशोधक, INS अग्रयश्च भारतीय नौसेनायाः क्षेत्रे समाविष्टाः। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: मोदिना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य अपि उल्लेखो विहितः तेन अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन प्रतियोगितायाः विषये कथितं यत् अस्यां भारतेन 2,100 स्वर्ण पदकैः सह आहत्य 14,100 पदकानि विजितानि। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यत् राष्ट्रनिर्माणे जनसहभागितायाः शक्तिः भारतस्य कृते एका महती सम्पत्तिः वर्तते।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: अनेन सहैव श्रीमोदिना प्रोदीरितं यत् आगामी गणेशोत्सवाय गणपति बप्पा भगवतः प्रतिमा अनिवार्य रूपेण अस्यैव देशस्य मृत्तिकायाः भवेत्, सा च स्थानीय कुम्भकारैः शिल्पीभिः विनिर्मिता स्यात्। तेन मूर्ति निर्मातारः अपि अनुरुद्धाः यत् ते मृण्मय मूर्तीणां निर्माणाय एव प्राथमिकतां दद्युः। स्वीय सम्बोधनस्य चरमे सोपाने प्रधानमन्त्रिणा जलसंरक्षणस्य विषये च बलं प्रदत्तम्। तेन कथितं यत् वर्षाजलस्य एकैकोऽपि बिन्दुः संरक्षणीयः वर्तते। श्रीमोदिना विशेषरूपेण गदितं यत् जलसंरक्षणार्थं कैच द रेन अभियानस्य वेगः मन्दो न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिः पैट्रिक हर्मनी च अद्य अपराह्णे विक्टोरिया नगरे द्विपक्षीय वार्ताम् अकुरुताम्। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगस्य सम्पूर्ण क्षेत्राणां समीक्षां कृतवन्तौ। सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च स्वस्व मनोगतं विनिमयी कृतवन्तौ। तस्मात् पूर्वं सेशेल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्ड

0: अस्ति। विदेशमन्त्रालयेन भारतीयनागरिकाः परामृष्टाः यत् सम्पूर्णयात्रायाः कृते आवश्यकानि सर्वाणि यात्रापत्राणि विना कैलाशमानसरोवरयात्रा न क्रियन्ताम्। केचन भारतीयतीर्थयात्रिणः नेपाले अवरुद्धाः अभवन्, सहैव साहाय्यार्थं प्रार्थितवन्तः। एतां घटनामुद्दिश्य विदेशमन्त्रालयेन एषः परामर्शः प्रख्यापितः। पश्चिमेशिया क्षेत्रे सुरक्षा स्थितिः पुनरपि गभीरा जाता। अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये विद्यमानः युद्धविरामः खण्डितः। गतकतिपयहोरासु च उभयपक्षाभ्यां परस्परं नूतनानि सैन्याक्रमणानि कृतानि। तेहरानेन वाणिज्यिकतैलवाहकपोतस्य उपरि ड्रोणाक्रमणं विहितमिति आरोपं विधाय अमेरिकया होर्मुज़ जलसन्धेः समीपे स्थितेषु दशसु ईरानी सैन्यस्थानकेषु वायुप्रहाराः कृताः। अद्य महिला विंशति प्रतिविंशति विश्वकप क्रिकेट स्पर्धायाः समूह ए इत्यस्य चरम स्पर्धायां भारतम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिशिष्ट। एषा स्पर्धा लंडन नगरस्य लॉन्स क्रिकेट क्रीडांगणे भविष्यति। स्पर्धा भारतीय समयानुगुणं सायं 7:30 आरभ्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाली क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: And Australia of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to our special program, First Ball 20.
3: First Ball 20.
4: क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स, जहां इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता, अमर हो जाता है। और आज इसी ऐतिहासिक मैदान पर भारत की बेटियां अपने विश्व कप सफर का सबसे बड़ा इम्तिहान देने उतरेंगी। सामने है 6 बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन भारत के सामने सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि सेमीफाइनल का दरवाजा खड़ा है। दक्षिण अफ्रीका की बांग्लादेश पर जीत के बाद भारत का जीतना जरूरी है। जीत तो अंतिम चार का टिकट, हार तो विश्व कप का सपना यहीं थम जाएगा। ऐसे में हर चौका सिर्फ रन नहीं होगा, हर विकेट सिर्फ सफलता नहीं होगी, ये होगा करोड़ों भारतीय दिलों की उम्मीदों का जवाब। तो क्या लॉर्ड्स की बालकनी आज भारत के जज्बे की गवाह बनेगी? क्या ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ रुकेगा या फिर इतिहास एक नया मोड़ लेगा? मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। फर्स्ट बॉल 20 में मेरे साथ है मेघा और हमारे साथ

आग गले लग जा। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा साहिर लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम आया सावन झूम के।

चित्रपट संगीत के आखिर में लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म छैला बाबू का गीत। बोल आनंद बख्शी के धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: बजकर 45 मिनट हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
1: कहाँ
4: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
8: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
7: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
8: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
7: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
8: क्यों?
7: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
9: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
10: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
11: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
10: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
11: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
10: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
11: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
9: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
12: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
11: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
12: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
11: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
12: आकाशवाणी से।
9: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जल संरक्षण करने और कैच द रेन अभियान में भागीदारी की अपील की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा, अगले 2 दिनों तक घर घर जाकर दी जाएगी पोलियो की खुराक। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
5: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। मन की बात कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर सुना गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ इस कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात आज जनता और नेतृत्व के बीच संवाद का सशक्त माध्यम बन चुका है।
13: मन की बात का 135वां एपिसोड मुख्यमंत्री निवास में हम सभी लोगों ने सुना है। एक तो आज एक नई जानकारी मिली है कि रूट ब्रिज मतलब पेड़ों के जो जड़ होते हैं उसको संग्रह करके उसको विशेष प्रयास करके ब्रिज बनाने का काम भी देश में चल रहा है। ये सब अद्भुत चीज प्रधानमंत्री जी की मन की बात के द्वारा पूरे देशवासियों को पता चलता है तो बड़ा ही उपयोगी रहता है।
0: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। आज जो बच्चे दवा पीने से छूट गए हैं उन्हें कल और परसों स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। इस अभियान के तहत प्रदेश में 35,98,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अपने 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती और शिशुवती माताओं के पंजीयन के लिए 15 जून से संचालित विशेष अभियान में छत्तीसगढ़ ने ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश ने अभियान के शुरुआती 9 दिनों में ही निर्धारित लक्ष्य का 72% पूरा कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। ये अभियान आगामी 15 जुलाई तक चलेगा। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महिला तथा बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सभी हितग्राहियों को बधाई दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
14: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल 29 जून से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। 6 जुलाई तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। रायपुर में आगामी 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सहकार मेले में सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियों और सफल मॉडलों का प्रदर्शन किया जाएगा। 6 जुलाई को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्सों में गोदाम निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से आने वाली पीढ़ी को आपातकाल के बारे में जानकारी मिलेगी।
15: प्रदेश भर के जितने लोकतंत्र सेनानी हैं, उनको सम्मान करने का और आपातकाल को लेकर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन संघ के द्वारा किया गया था, जिसमें स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए थे। और इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को आपातकाल के विषय में जानकारी होगी। बहुत बड़ा अन्याय आपातकाल के माध्यम से उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री और सरकार ने किया था।
0: पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान के तहत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कार्यक्रम को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की वर्चुअल बैठक हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण से न केवल कार्यकर्ताओं का बल्कि जन प्रतिनिधियों का भी डिजिटल और तकनीकी ज्ञान बढ़ेगा। श्री साय ने कहा कि इसके माध्यम से बूथ स्तर तक के नए और युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, इतिहास और कार्यप्रणाली की सटीक जानकारी घर बैठे मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला सुनाते हुए छठवें और सातवें वेतन आयोग से जुड़े 59 महीने के बकाया एरियर्स के भुगतान का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार के रिट अपील खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि दो राज्यों के बीच वित्तीय समन्वय या सहमति का अभाव पेंशनरों के वैध अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित दंतेवाड़ा की समाजसेवी डॉक्टर बुधरी ताती का आकाशवाणी द्वारा लिया गया साक्षात्कार कल 29 जून को प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। सरगुजा जिले के रामगढ़ में कल 29 जून से 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। महोत्सव के पहले दिन छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर आधारित विभिन्न लोक नृत्य और लोकगीत प्रस्तुत किए जाएंगे। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कोरबी में आज हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बलौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भारतमाला मार्ग पर मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। मृतकों में 2 डोंगरी और 1 कोरबी गांव का रहने वाला था। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। वहीं सक्ती जिले के भेड़ीकोना गांव में चारपहिया वाहन ने मोटरसाइकिल सवार युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 1 युवक की मौत हो गई, वहीं 1 अन्य युवक घायल हो गया है। इस बीच बेमेतरा जिले के ग्राम राउरपुर में अचानक कच्ची दीवार के ढह जाने से 2 बहनों की मौत हो गई, वहीं 1 महिला घायल हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों बच्चियां घर के आंगन में बैठी थी, इसी दौरान दीवार भरभराकर गिर गई। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है।
16: दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर मध्य से लेकर भारी वर्षा होने की संभावना है और इसके साथ साथ उत्तर छत्तीसगढ़ में भी सरगुजा संभाग में भी काफी अच्छा बारिश होने की संभावना है। आज से लेके आगामी 7 दिन तक भी वर्षा का गतिविधि में थोड़ा वृद्धि होने की संभावना है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हल्की से लेके मध्य वर्षा होने की चांसेस है। बस्तर संभाग में आज से लेके आगामी 3 दिन तक 1-2 स्थानों पर मध्य से लेके भारी वर्षा होने की चांसेस है।
0: इस बीच आज बस्तर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की खबर है। जगदलपुर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमेश डेका ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन अब आगामी 7 जुलाई किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत एमटेक, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेने वाले चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह 50,000 रुपए की फेलोशिप दी जाएगी। ट्यूशन फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जल संरक्षण करने और कैच द रेन अभियान में भागीदारी की अपील की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा, अगले दो दिनों तक घर घर जाकर दी जाएगी पोलियो की खुराक। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 7 बजे हैं। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम अपने मुंबई केंद्र से रिले करते हैं।

सवा लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस शौर्य गाथा की कड़ी में हम रुख करते हैं सदा सर्वदा विजयी भारत भूमि के एक ऐसे प्रांत की तरफ, जहां गुरु गोविंद सिंह की ये वाणी दुश्मनों की धमनियों में रक्त जमा देती थी। ये बुलंद आवाज दुश्मनों के प्रति हुंकार ही नहीं थी, अपितु ये भारत के वीरों की परंपरा और विरासत है। मातृभूमि के रक्षकों और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों की ये भूमि है पंजाब, जहां गुरु गोविंद सिंह, माता गुजरी और उनके बेटों की वीरता, देशभक्ति और उनकी कुर्बानियां इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। शेर पंजाब की ये वो पावन धरा, जहां महाराजा रणजीत सिंह, महारानी जिंद कौर जैसे सच्चे देशभक्त हुए, जिन्होंने दुश्मनों को नाकों चने चबवाए। शहीद आजम भगत सिंह के नाम की कस्में आज भी खाई जाती हैं। अमर शहीदों की इस धरती में जन्मे श्री सदगुरु राम सिंह, लाला लाजपत रॉय, भाई परमानंद, वीर उधम सिंह, सुखदेव थापर, बलवंत सिंह, बंता सिंह धामिया और भाई वतन सिंह जैसे देशभक्त, जिन्होंने वतन के खातिर अपनी जानें कुर्बान की। पंजाब की बसंती हवाओं में आज भी सुरूर इनका है, हर फूल की मुस्कुराहट इनकी कर्जदार है, जो आज आजाद वतन की फिजाओं में सांस लेती है। फौजी साथियों, आज के शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम सलाम करते हैं महावीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि की इसी पावन धरा पंजाब के लुधियाना शहर के शिरदिल सिपाही सूबेदार बिशन सिंह को।

हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो हे, हम सारे हैं भारतवासी, सब है भारत।

बिशन सिंह औरों से जरा हट कर थे, जितने खुश मिजाज उतने ही संजीदा। उनका कर्तव्य बोध, उनके देश के प्रति निष्ठा और उनकी मेहनत रंग लाई। फौज में उनके जाने का सपना साकार हुआ और महज 16 साल की उम्र में सन 1933 में उन्होंने सिख रेजिमेंट ज्वाइन की। बिशन सिंह इसे अपनी खुशकिस्मती मानते थे कि उन्हें देश सेवा का अवसर मिला। अपने कॉल के पक्के, दिल में देशभक्ति का जज्बा और जुनून, अनवरत आगे बढ़ने की चाह, वक्त के पाबंद, फरमाबरदार और जुनून की हद तक देश सेवा की भावना ने उन्हें फौज का एक जाना माना चेहरा बना दिया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में देश विदेश में होते बदलाव का असर सभी पर व्यापक था। इस समय काल में जंगें भी बहुत लड़ी गईं, जिनमें भारतीय सेना ने बरतानिया हुकूमत के ध्वज तले कई युद्ध लड़े, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध भी था। इस युद्ध में बिशन सिंह हर उस मोर्चे पर भी सफल रहे जिसकी अगुवाई उन्होंने की और कभी शिकस्त न खाई। उन्हें सरदार बहादुर और कई और खिताबों से तत्कालीन अंग्रेज हुकूमत ने नवाजा। फिर वो घड़ी भी आई जब देश आजाद हुआ। आनंद के एहसास से दिल भर भी न पाया था कि युगों युगों से एक संग रहती भारत भूमि के मानचित्र पर लकीर खींचकर इसके दो भाग कर दिए गए। ये दर्द ऐसा था कि जिसकी टीस हर एक ने महसूस की। घर उजड़े, मकान छूटे, दिल टूटे, परिवार बिखरे, वतन छूटा और यहाँ तक कि मवेशी भी अपनी पनाहगाह तलाशने लगे।

1947 में देश के विभाजन के साथ ही हमारे देश से अलग हुए मुल्क ने सीमा पार से कबायली हमले तेज किए। छुप छुप कर होते इन हमलों ने देश की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को बेहद संवेदनशील बना दिया। इन हमलों को रोकने और दुश्मनों को सबक सिखाने के मद्देनजर बिशन सिंह के नेतृत्व में दिसंबर 1947 को जम्मू कश्मीर में पहले सिख यूनिट को तत्काल प्रभाव से रवाना किया गया, क्योंकि देश के बंटवारे के बाद बिशन सिंह ने भारतीय सेना को चुना और यहीं अपने वतन की सेवा करना चाहा। सिख रेजिमेंट के इस जाबाज अफसर को युद्ध का खासा अनुभव भी था और जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति से भी वो भली भांति परिचित थे। हालांकि इस सरहदी इलाके में युद्ध का खतरा पहले से ही मंडरा रहा था। फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

अक्टूबर माह 1947 से ही भारतीय सेना की सरगर्मियां यहां देखी जा सकती थीं। बंकर में छिपी शत्रु सेना के रह रहकर होते हमले दिन ब दिन बढ़ते ही जाते थे। सीमा पार से कबाइलियों की घुसपैठ और तेज हुई और भारत के सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाया जाने लगा। सूबेदार बिशन सिंह की सेना के कूच करने से पहले ही दुश्मन फौज ने भारतीय सैनिकों की पहले भेजी गई टुकड़ी पर हथगोले और धारदार हथियारों से हमले किए और आगे बढ़ती भारतीय सेना के लगभग 10 जवानों को अपना निशाना बनाया। हमारी सेना के कुछ जवान इस हमले में घायल भी हुए। आगे बढ़ते इन जवानों को बिना वक्त गवाए बिशन सिंह की सेना ने कवर दिया और मोर्चे पर सबसे आगे खुद सूबेदार बिशन सिंह थे।

जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। दिसंबर 1947 में भारत से अलग हुए मुल्क के साथ लड़ी गई ये जंग देश के इतिहास में एक ऐसी जंग थी जिस पर हौसलों से फतह पाई गई। पहली सिख रेजिमेंट के शेर दिल सिपाही सूबेदार बिशन सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के सफल संचालन से भारतीय सेना को इस मोर्चे पर फतह हासिल हुई और दुश्मनों को शिकस्त। कबाइलियों और दुश्मन सेना को इस कदर पीछे धकेल दिया गया कि इस जंग से आज भी शत्रु खौफ खाता है। जिस मरने ते जग डरे मेरे मनी अनंत, मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद। जिन भारत माता के सपूतों के ऐसे हौसले हों उन्हें भला दुश्मन कब मार सकता है।

जी साथियों, भारत से अलग हुए पड़ोसी देश के साथ सन 1947 में लड़ी गई इस जंग में पहले सिख रेजिमेंट के होनहार और बहादुर सिपाही सूबेदार बिशन सिंह को सेना के सफल संचालन, उनकी सूझबूझ, कर्तव्य निष्ठा और असाधारण पराक्रम, उनके बलिदान, वीरता, अदम्य साहस के लिए इस जंग में शत्रुओं को नेस्त नाबूद करने और फतेह का तिरंगा लहराने के लिए भारत सरकार ने सूबेदार बिशन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। हम सूबेदार बिशन सिंह को सलाम करते हैं।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे वैन शिपले का इलेक्ट्रिक गिटार। आज की फिल्में हैं हावड़ा ब्रिज और अजनबी।

0: अभी आप सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, गीत कंवर जलालाबादी का था, संगीत ओपी नैयर का।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 8:30, 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम, हमारे प्राइमरी चैनल।

0: 8 बजने को है, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में ही।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
1: कहाँ?
4: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए सुनिए मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश की जनता के नाम संबोधन के छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण।
7: मोर देश के मयारुक रहवैया हो, जोहार। मन की बात मा एक घाव फेर आप सबो मन ले जुड़िया के मुला अब्बड़ आनंद होवा थे। 2026 के आधा बच्छर पहावा थे। ये 6 महीना मा हमन मन की बात मा देशवासी मन के अनेक उपलब्धि मन के चर्चा करे हन। जून मा घलो देश ह कुछ ऐसने उपलब्धि प्राप्त करे हे जेन हर देशवासी ल गर्व ले भर देथे। ये सफलता मन देश के सुरक्षा और आत्मनिर्भरता ले जुड़े हैं। हालिच मा मुला कोलकाता मा नौसेना ले जुड़े एक ठन कार्यक्रम मा सम्मिलित होय के मौका मिलिस। वहाँ INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय ल भारतीय नौसेना के बेड़ा मा सम्मिलित करे गईस। ये जहाज मन के डिजाइन और उत्पादन तको सबो कुछ स्वदेशी है। संगवारी हो, जूनेज के महीना मा विमानन क्षेत्र मा घलो देश ह एक बड़का सफलता पाइस। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ह अपन पहली उड़ान पूरा करे है और ऐसने 40 ठन विमान भारत में बनाए जात हैं। एखर ले MSME और अंतरिक्ष क्षेत्र ला नवा ताकत मिलत है, रोजगार के अवसर बढ़त है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प घलो मजबूत होवत है। इही महीना DRDO ह स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के घलो सफल परीक्षण करे है। एला DRDO के प्रयोगशाला और भारतीय उद्योग हिस्सेदार मन मिल के बनाए हैं। माने आज समुद्र ले लेके आगास तक हमार भारत ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनत है। संगवारी हो, जून मा एक ठन औ आयोजन होइस जेमे जम्मो दुनिया भारत के प्रयास ले जुड़ीस और ये कार्यक्रम रहीस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये पैत दुनिया के 2500 ले ज्यादा ठियामा योग के अनेक विविध कार्यक्रम होइस। हमार देश मा करोड़ों लोगन मन ठिया ठिया मा योग कार्यक्रम मन मा हिस्सा लेन। ये महीना अहमदाबाद मा आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप के घलो बड़ चर्चा होइस। एमे भारत हा कुल 114 पदक जीते हे, एमाले 102 स्वर्ण पदक घलो सम्मिलित हे। भारत ये प्रतियोगिता के पदक तालिका मा पहली स्थान मा रहिस। मैं सबो विजेता खिलाड़ी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हौं। संगवारी हो, कोनो भी राष्ट्र के आत्मा ओखर मन के मन होते और जब वो देश के लोगन मन कोनो संकल्प लेते तब कोनो भी शक्ति वो मन ला अपन लक्ष्य ले नहीं डिगा पाए। राष्ट्र निर्माण मा जन भागीदारी के ये ताकत भारत के बहुते बड़का पूंजी है और ये जन भागीदारी के हम बार बार अनुभव करत हन। संगवारी हो, पश्चिम एशिया में बने युद्ध के स्थिति ला देखत मैं देशवासी मन ले कुछ आग्रह करे रहे। मैं कहे रहे हूँ कि जहाँ तक संभव हो कुछ बखत खातिर गोल्ड सोना बिसाए ले बाँचें। लोगन मन ले कहे रहे हूँ कि विदेश में छुट्टी मनाए ले बाचे। मैं लोगन मन ले कार के सामूहिक उपयोग ला घलो बढ़ावा दे के अपील करे रहे हूं। मैं किसान मन ले रसायन मुक्त खेती बर खेत बचाए खातिर और प्राकृतिक खाद के ज्यादा ले ज्यादा उपयोग के आग्रह करे रहे हूं। संगवारी हो, मैं देश के हर नागरिक के आभारी हूं कि मोर अपील के वो मन न सिर्फ समर्थन करिन भलुक हर कोती ले ओमे अपन सहयोग करत हैं। मुला कईयों परिवार मन संदेशा भेज के अपन अनुभव साझा करे हैं। कतकोन परिवार मन ये तय करे हैं कि घर के बिहाव मा ये पैत सोना नहीं बिसाही, जरूरत पड़ी तब पुराना सोना ला रिसाइकिल करके नवा गहना बनवा लेही। कतकोन लोगन मन सोशल मीडिया में ये घलो लिखे हैं कि कैसे वो मन ये पैत विदेश यात्रा ला टाल दे हैं। संगवारी हो, कार के सामूहिक उपयोग ला लेके घलो लोगन मन अनेक अनुभव साझा करे हैं। जिन लोगन मन हर दिन एके दिशा मा अपन अपन वाहन ले जाते वो मन अब एक साथ जाए लगे हैं। लोगन मन हर संभव बस और मेट्रो के उपयोग करत हैं। एखर ले पेट्रोल और डीजल के बचत होवत है। यही रकम देश के आने आने हिस्सा मा प्राकृतिक खाद के खपत बढ़े के घलो खबर आवत है। संगवारी हो, मोला ये बात के खुशी है, ये वैश्विक आपदा के हम भारतीय मिल के मुकाबला करत हन। मोला विश्वास है जन भागीदारी के ये शक्ति हमन ला मजबूती देही, हमन ला सफल बनाही। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, हमर देश मा जन्मदिन बर बिहाव पारिवारिक कार्यक्रम होए के संगे संग जम्मो समाज के उत्सव घलो होते। हर परिवार चाहते कि ओखर खुशी मन आने मन संग घलो साझा होवे। लोगन मन पहुना मन ला उपहार घलो देते। संगवारी हो, महाराष्ट्र के नांदेड़ मा एक परिवार ह अपन खुशी बांटे बर ऐसन काम करीस जेन चर्चा के विषय बन गे हे। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव मा पेठ कर परिवार रही थे। ये परिवार ह सोचिस कि अगर खुशी बांटना है ता ऐसन जिनिस दिए जाए जेन मुश्किल बखत मा कोनो परिवार के सहारा बने। अपन घर मा बिहाव के मौका मा ये परिवार ह गांव के लगभग 3,500 लोगन मन बर दुर्घटना बीमा के व्यवस्था करिस। हर मनखे ला 1,00,000 रुपया के बीमा कवर दिए गईस। ये पहल के पाछू के भावना बहुते स्पर्श करने वाला है। परिवार ह देखे रहीस कि दुर्घटना के बाद परिवार मन ला आर्थिक कठिनाई के सामना करना पड़ते। ऐसे बखत मा एक ठन नानुक सहायता घलो बहुते बड़का संबल बन जाते। संगवारी हो, सरकार देश के करोड़ों परिवार तक सुरक्षा के कवच पहुंचावत है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत खाली 20 रुपया के सालाना प्रीमियम, माने खाली एक बछर के 20 रुपया के प्रीमियम, ओखर ऊपर 2,00,000 रुपया तक के दुर्घटना बीमा मिलते। अब तक ये योजना ले 58 करोड़ ले ज्यादा लोगन मन जुड़ चुके हैं। एमा करीबन 28 करोड़ हमार दाई बहनी बेटी मन है, माई लोगिन मन है। ये योजना ले पीड़ित परिवार ला अब तक जिन हिसाब मिले है 3,700 करोड़ रुपया ले ज्यादा के सहायता मिल चुके हैं। संगवारी हो, यही रकम ले प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना घलो उत्केच महत्तम के है। ये योजना मनखे के दुखद मौत होए मा ओखर परिवार ल 2,00,000 रुपया के बीमा कवर देते। एखर सालाना प्रीमियम खाली 436 रुपया है, माने एक दिन के बड़ मुश्किल 1.5 रुपया। ये योजना ले अब तक 27 करोड़ ले ज्यादा मनखे मन जुड़े हैं। एकर अंतर्गत देश के करीबन 11,00,000 परिवार ल करीबन 22,000 करोड़ रुपया के सहायता मिल चुके हैं। ये आंकड़ा बहुते बड़ा है। ये आंकड़ा मन के पीछे लाखों परिवार मन के अपन अपन कहानी हे। कहूँ कोनो दाई ल लइका मन के पढ़ाई चालू रखे मा सहायता मिलिस, कहूँ कोनो पत्नी ल घर के जिम्मेवारी संभाले मा सहारा मिलिस, संगवारी हो कईयो घाव बहुते बड़का सुरक्षा के शुरुआत बहुते छोटे राशि और एक नानुक कदम ले हो सकत हे। नानकुन निर्णय घलो बहुते बड़का बदलाव करथे। मोर आप जम्मो मन ले आग्रह है कि अपन परिवार मा ये योजना मन के जानकारी खचित साझा करो। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, मन की बात मा अब गोठ एक ऐसन विषय के जिन हजारों बछर जुन्ना है, हजारों बछर ले मानव समाज मा घर करके बैठ गए है, ये विषय है अंधविश्वास के। अंधविश्वास कईयों बारी खाली एक गलत धारणा नहीं होवे, वो डर पैदा करते और जब डर मन मा हावी हो जाते तब मनखे सच ल देखना बंद कर देते। अंधविश्वास में बूढ़े लोगन मन फिर बिना तर्क के बिना सच जाने ऐसन फैसला ले लगते जेखर बड़ा नुकसान होते। उन्हें समाज मा ऐसे लोगन घलो होते जिन विज्ञान अनुभव और तर्क के आधार मा वो धारणा मन ला चुनौती देते। अंधविश्वास ले विश्वास तक के ये यात्रा आसान नहीं होए। और आज मैं ऐसनेच एक सफल यात्रा के बारे मा आप मन ला खचित बताना चाहत हूँ। संगवारी हो, असम मा एक ठन चिरई पाए जाते, वो चिरई के नाव है हर गिला। हर गिला एक दुर्लभ चिरई है, ये प्रकृति ला स्वच्छ रखे मा महत्तम के भूमिका निभाते। फिर असम के कुछ क्षेत्र मन मा लंबा बखत तक इला अशुभ माने जात रहिस। लोगन मन इला अपन तीर तखार मा देखना पसंद नहीं करत रहिन। कईयो घाव वो पेड़ मन ला घलो काट दिए जात रहिस जेमे हरगिला के घोसला बने होत रहिस। सोचाओ एक ऐसन चिरई जिन पर्यावरण के सफाई मा सहायता करते, उही हरगिला लोगन मन के डर के शिकार बन गए रहिस। इही दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन हा ये सब देखिन। वो लोगन के मन मा बैठे गलत धारणा ला बदले के संकल्प लेन। वो माई लोगिन मन ले गोट करिन, वो लोगन मन ला विज्ञान के आधार मा समझाइन। धीरे धीरे माई लोगिन मन ये अभियान ले जुड़े लगिन। फिर एक बड़का बदलाव शुरू हुईस। जेन चिरई ला कभू अशुभ मान के भगाए जात रहिस उही गांव के चिन्हारी बने लगिस। हजारों ग्रामीण माई लोगिन मन हर गिला ला बचाए बर आघू आइन। आज वो मन ला हर गिला आर्मी के नाव ले जाने जाते। ये माई लोगिन मन समाज के संग संघर्ष घलो करिन, समाज ला समझाए बर दिन रात काम करिन और अंधविश्वास ल पाछू छोड़ करके रहिन। वो मन दिखाइन कि जब सही जानकारी पहुँचाए जाते तो कईयों बछर जुन्ना सोच घलो बदल सका थे। संगवारी हो, मैं अक्सर कहता कि जेन खेल थे वो खिल थे। आज देश में ऐसन युवा मन के संख्या बहुत तेजी ले बढ़ा थे जेन मन खेलत घलो हैं और खिलत घलो हैं। पाछू के तुलना में अब कहूँ ज्यादा युवा मन खेल ला कैरियर के रूप में अपनावत हैं। मुला नागालैंड के दो ऐसने प्रयास मन के बारे में जानकारी मिले है जिन बहुते दिलचस्प है। पहली प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाव सुन के आप मन ला खचित लगत हो ही, ये बहुते नानुक लड़का मन के कोनो साधारण लीग हो ही। फिर ऐसा नहीं है, ये 5 ले 10-12 बछर के उम्र के नान नान लड़का फूल असन लड़का मन के एक असाधारण लीग है। और ये लड़का मन के फुटबॉल खिलाड़ी मन के एक ऐसन लीग है जिन उनकर गतिला और प्रतिभा खातिर वो मन ला प्रेरित घलो करते और उनकर पहचान घलो बनाते। एकर शुरुआत नागालैंड के ज्यादा ले ज्यादा लड़का मन ले फुटबॉल ले जोड़े के संग हो रहिस। 5 ले 12 बछर तक के लड़का और नोनी मन एमे हिस्सा ले सकत हैं।

ये लीग अब अपन 3 बछर पूरा कर चुके हे। ये लीग के लइका मन के मन मा बहुते अच्छा प्रभाव पड़े हे। संगवारी हो, नागालैंड मा एक ठन औ बने प्रयास होवत हे। ओखर नाव है नागालैंड वुमन फुटसल लीग। हो सकत हे आप मन बर ये फुटसल एक नवा नाव होही। मैं आप मन ला बतावत हूँ कि फुटसल ला इंडोर फुटबॉल घलो कहे जाते। एमे एक टीम मा खाली 5 खिलाड़ी होते। खेल के मैदान घलो फुटबॉल के मैदान ले बहुत छोटे होते। यही कारण खिलाड़ी मन ला तेज फैसला करना होते। वो मन ला अपन तकनीक और कौशल के बेहतर उपयोग करना पड़ते। नागालैंड के महिला फुटसल लीग हमर बेटी मन ला अपन प्रतिभा दिखाए के बने अवसर देवत हे। मैं ऐसन पहल खातिर नागालैंड के लोगन मन के सराहना करत हूँ। ऐसने प्रयास देश के आने हिस्सा मन ला घलो प्रेरणा देते। संगवारी हो, ये तकनीकी के युग है। हर दिन नवा शोध होवत है। नवा नवा AI नवाचार आघू आवत है। ये दौर मा एक सवाल बहुते महत्वपूर्ण है, लोगन मन के रचनात्मकता ला कैसे बचाए रखे जाए। नवा तकनीक के संग आगू बढ़त हम अपन जड़ ले कैसे जुड़े रहन, ये सवाल के समाधान खोजे है नालंदा विश्वविद्यालय है। हजारों बछर जुन्ना हमार नालंदा विश्वविद्यालय अब नवा अवतार के रूप में भारत के भाग्य गढ़त है। 2 बछर पाछू मोला नालंदा विश्वविद्यालय के नवा परिसर के लोकार्पण के अवसर मिले रहिस। नालंदा विश्वविद्यालय है शास्त्रार्थ के हमर जुन्ना परंपरा ला फिर जीवंत करे है। शास्त्रार्थ खाली अपन बात रखे के माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन के एक अनुशासित प्रक्रिया है। एमे तर्क के संग तथ्य के संग अपन बात कहना बहुते जरूरी होते और ओमे आप मन के महारत होना चाहिए। आने मन के विचार ल धैर्य ले सुने और समझे के सीख घलो ये शास्त्रार्थ के प्रक्रिया ले मिलते। मुला खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय इला अपन दीक्षांत समारोह के हिस्सा बनाइस। एमे भाग लेवैया करीबन आधा विद्यार्थी मन आने देश ले आए रहिन। एक जुन्ना परंपरा ला आज के बखत ले जोड़े के ये प्रयास बहुते सराहनीय है। मैं एखर बर नालंदा विश्वविद्यालय ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। मैं देश के आने विश्वविद्यालय मन ले घलो आग्रह करहूँ कि वो मन ऐसने पहल मा विचार करें। संगवारी हो, जड़ मन ले जुड़े रही के युवा मन ला नवा तकनीकी बर तैयार करे के एक ठन औ बने प्रयास होवत है। दिल्ली में स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कृत्रिम विद्वता और डाटा विज्ञान में BTech कार्यक्रम शुरू करैया है। ये आधुनिक तकनीक ला भारत के पारंपरिक ज्ञान ले जोड़े के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एखर ले भारतीय भाखा बनबर नवा AI टूल तैयार करे मा सहायता मिली। हमर जुन्ना ग्रंथ और पांडुलिपि मन ला डिजिटल रूप में संरक्षित करे के काम ला घलो नवा गति मिली। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ला ये प्रयास खातिर गाढ़ा गाढ़ा शुभकामना देवत हूँ। संगवारी हो, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के आने आने हिस्सा तक पहुँचत है। हमर गीत संगीत और अध्यात्म ला दुनिया भर के लोगन मन जानत हैं और अपनावत हैं। भारत ले हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर मा डोमिनिकन रिपब्लिक नाव के एक देश है। वहाँ भारतीय मन के संख्या करीबन 100 है, शायद एखर ले घलो कम हो ही। एखर बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म ले जुड़े एक बहुते अच्छा प्रयास वहाँ होवत है। वहाँ स्पेनिश बोले वाला कुछ लोगन मन एक टीम बनाए हैं। ये टीम के नाव हैं ब्रह्म कमल डोमेनिकाना। टीम के सदस्य मन मिल के वैदिक साहित्य के अध्ययन करत हैं। वो मन वैदिक मंत्र मन के उच्चारण घलो सीखत हैं। वो मनला एखर कोनो

0: औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिले हैं। फिर वो मन ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन के वैदिक मंत्र मन के सही उच्चारण सीखे हैं। आज वो मन कईयों मंत्र के बहुते अच्छा जाप कर लेते। इमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम औ देवी महात्मयम सम्मिलित है। भारत ले अतका दूर रही के हमर परंपरा मनला सीखे के उनखर ये प्रयास बहुते प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमेनिकाना वहाँ के सब्बो सदस्य मनला उनखर प्रयास खातिर शुभकामना देवत हौं। मैं ऐसने सब्बो लोगन के हृदय ले सराहना करत हौं जिन भारतीय संस्कृति ल दुनिया भर में लोकप्रिय बनाए खातिर सरलग प्रयास करत हैं। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, मेघालय के चिन्हारी बादल मन ले है, सुंदर दृश्य मन ले है। जेन मेघालय जाथे ओला उहां के लोगन मन के अपनापन घलो लंबा बखत तक सुरता रही थे। फिर मेघालय के एक ठन औ विशेषता है जेखर मैं आज मन की बात मा आप मन ले चर्चा करना चाहत हूँ। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ वाला रूट। ये रूट ब्रिज मन के कहनी बहुते रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिन या कुछ बछर में नहीं बने, इला तैयार होए मा कईयों दशक लगते। रबर के पेड़ के जड़ मनला धीरे धीरे दिशा दे जाते। ये जड़ मनला जलधारा मन के पार ले जाए जाते। बखत के संग उही जड़ एक मजबूत ब्रिज के रूप ले लेते। ये ब्रिज मन के एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज हैं। बखत बीते के संग ये औ मजबूत हो जाते। एमे मेघालय के लोगन मन के सृजनशीलता दिखाई देते। इनखर पाछू कईयों बछर के धैर्य और प्रकृति के प्रति गहिर सम्मान है। ये ब्रिज बताते कि मनखे प्रकृति के संग मिलके कतको अद्भुत जिनिस बना सकत हैं। ये हमार देश के, ये धरती के धरोहर हैं। अब भारत हा मेघालय के रूट ब्रिज मनला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क मा शामिल कराए बर आवेदन करे है। संगवारी हो, ऋतु परिवर्तन के कारण ये रूट ब्रिज बन के आघू कईयों चुनौती घलो आते। ऐसन बखत मा मेघालय के लोगन मन ये प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के जिम्मेदारी घलो बने असर निभाए हैं। पहली ये पता लगाना घलो आसान नहीं रहिस कि ऐसन ब्रिज मन के संख्या कतका है। स्थानीय लोगन मन खुदे एकर गिनती शुरू करिन। एकर बाद समुदाय मन ये ब्रिज मन के देखभाल के जिम्मेदारी घलो संभालिन। आज स्थानीय लोगन मन 120 ले ज्यादा रूट ब्रिज मन के देख रेख करत हैं। कुछ टीम मन हर बछर ये पुल मन के स्थिति के जांच करते। कुछ लोगन मन ह तीर तखार के क्षेत्र ला मजबूत बनाए खातिर नर्सरी घलो तैयार करे हैं। ये रकम के उनखर संरक्षण खातिर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गए है। आप मन देखे हो ये बछर हेलीवार जिला पद्म पुरस्कार ले सम्मानित करे गए है। वो मन अपन जिंदगी के 50 ले ज्यादा बछर ये रूट ब्रिज मन के देखभाल में लगाए हैं। उनखर समर्पण हम सब्बो मन बर प्रेरणादायक है। संगवारी हो, आप मन कभू ये रूट ब्रिज के यात्रा करे हो ता ओखर फोटो सोशल मीडिया मा खचित साझा करो। आप मन के फोटो आने लोगन मन ला घलो मेघालय के ये अनोखा धरोहर के बारे मा जाने खातिर प्रेरित करही। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, हम सबो मन चाहथन कि हमार गांव साफ सुथरा होवे, हमार शहर सुंदर दिखाए। फिर शायदे कभू रुक के ये सोचे जाते कि हमार तीर तखार मा जिन कचरा जमे होते ओला कौन साफ करते। ज्यादातर लोगन मन तो यही मान के चलते कि ये कोनो औ के जिम्मेदारी है औ वो सफाई कर ही। फिर हमार बीच कुछ ऐसन लोगन घलो होते जिन अपन सोच ले हमन ला बहुत प्रेरित करते। मुला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला के ब्यावरा के कुछ बहिनी मन के बारे में जाने के मौका मिलिस। वो मन अपन तीर तखार में बगरे प्लास्टिक कचरा ला हटाए के संकल्प लेन, ये नहीं सोचिन कि कोनो आ के बदलाव लाही। वो मन खुदे शहर भर ले प्लास्टिक कचरा और खाली बोतल इकट्ठा करना शुरू करिन। धीरे धीरे ये प्रयास आगू बढ़त गईस और फिर वो प्लास्टिक ल इको ब्रिक्स में बदले जाए लगिस। आज उही इको ब्रिक्स के उपयोग सार्वजनिक स्थान मन ल सुंदर बनाए में करे जात है। राजगढ़ में पाछू कुछ महीना में सैकड़ों किलो प्लास्टिक ल रिसाइकिल करके ओखर बेहतर उपयोग करे गए है। माने जेन प्लास्टिक पहली शहर में प्रदूषण फैलावत रहीस, आज उही ये बहनी मन के प्रयास ले शहर के सुंदरता बढ़ाए में योगदान देवत है। मैं व्यावरा के सब्बो बहनी और ये अभियान ले जुड़े संगवारी मन ल बधाई देवत हूँ। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, मोला कईयों लोगन मन पाती लिख के एक खास विषय में गोट करे के सुझाव भेजे हैं। ये विषय गणेश उत्सव ले जुड़े है। वैसे त गणेश उत्सव में अभी बने बखत बाकी है, फिर लोगन मन ह ये आग्रह करे हैं कि ये विषय में अभिच्छे बात होना चाहिए। असल में गणेश जी के मूर्ति बनाए के काम बहुत पहले शुरू हो जाते। मूर्ति बनाए वाला मूर्ति के व्यापार ले जुड़े लोगन मन अभी ले सक्रिय हो जाते हैं। यही पाए के मोर आप सबो मन ले एक आग्रह है, आप मन प्रयास करो कि आपके घर सोसाइटी या तीर तखार के ठिया मा गणपति बप्पा के जेन मूर्ति स्थापित हो वो हमर देश के माटी ले बने हो। वो हमर अपन कुम्हार और स्थानीय कलाकार मन के हाथ तैयार हुए हो। जेन लोगन मन गणेश जी के मूर्ति बनाते वो मन ले घलो मोर आग्रह है कि वो मन माटी के मूर्ति ल प्राथमिकता देवें, और जेन लोगन मन मूर्ति बिसाते वो मन घलो ये खचित देखें कि गणपति बप्पा के मूर्ति का के बने हैं और कौन देश में तैयार हुए है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ले बने मूर्ति खचित झन बिसाएं। संगवारी हो, माटी के मूर्ति पूजा के बाद सहज रूप में पानी में विलीन हो जाते। एखर ले हमर नदिया तरिया और पर्यावरण के रक्षा होते, हमार आस्था घलो बने रही थे और प्रकृति के प्रति हमार दायित्व घलो पूरा होते। जब हम स्थानीय कारीगर मन ले मूर्ति बिसाथन, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प ल मजबूत करथन। मोरा विश्वास है कि ये पैत गणेश उत्सव मा और ऐसने हर उत्सव मा हम ऐसने सब्बो बात ऊपर खचित गंभीरता ले सोचबो और देश हित मा कदम घलो उठाबो। संगवारी हो, हमार देश के सबले बड़का शक्ति हमार देश के लोगन मन है। देश के आने आने हिस्सा मा होवत नानुक बड़का प्रयास हमन ला बहुत कुछ सिखोते। ये प्रयास बताते कि जब मन में संकल्प हो और समाज के साथ मिले तक कोनो भी बड़का बदलाव लाए जा सकत है। आप मन अपन तीर तखार में होवत ऐसन प्रयास मन के बारे में मोला खचित लिखत रहो, अपन विचार और अपन सुझाव भेजत रहो। हो सकत है आपके तीर तखार के कोनो नानुक पहल जम्मो देश भर प्रेरणा बन जाए। अवैया महीना हम फेर मिलबो, देशवासी मन के कुछ नवा प्रयास मन के चर्चा करबो। तब तक आप मन अपन और अपन परिवार के ध्यान रखाओ, और हाँ, जल संचय तक करने करना है। बरसात के पानी के एक एक बूंद ला हमला बचाना है। कैच द रैन, ये अभियान थोरको ढीला नहीं होन देना है। तब मोर विशेष आग्रह है वर्षा के बूंद बूंद पानी हम मिल के बचावन। गाड़ा गाड़ा धन्यवाद, जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के जनता के नाम संबोधन के छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक

अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं बागी 2 फिल्म का गाना। अंकित तिवारी और श्रुति पाठक की आवाजों में, गीत कुमार का है, संगीत गौरव रोशन का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में UPI भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल्स में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल्स एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट आवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीपराष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही, इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7.5 लाख करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, 1 पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
3: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इलेडी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1,000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: के बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं काश फिल्म का गाना। किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे की आवाजों में, गीत फारूक कैसर का है, संगीत राजेश रोशन का।

0: अपनी वफाए कितनी जताए कितनी छुपाए कह देना
1: अपनी कहानी कितनी छुपाए कितनी सुनाए कह देना
0: अपनी वफाए कितनी जताए कितनी

आइए अब सुनते हैं कुदरत का कानून फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गाने के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की प्रीति शर्मा को दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: करते। फिर खाए पिए के मामला माँ एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते, ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते। और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें, है ना सरल। सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश, इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है, तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मसिया ही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मन नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी।
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर माँ तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जिन गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास माँ चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला माँ एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते, ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते। और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें, है ना सरल। सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश, इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चला थे ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल लत निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
8: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
7: तहू यार,
9: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश, इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओ, इस प्रीलूड से ही आप समझ गए होंगे आज हम किस कलाकार या संगीतकार के बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर रवि के रूप में संबोधित किए जाते एक भारतीय संगीत निर्देशक थे। उन्होंने कई हिंदी और मलयालम फिल्मों के लिए संगीत रचना की। पहले ये गीत सुनते हैं।

हिंदी सिनेमा में सफल करियर के बाद संगीतकार रवि 1970 से 1982 तक के लिए अवकाश ले लिया। बाद में बॉम्बे में रवि नाम के साथ उन्होंने

1982 में संगीतकार रवि ने निकाह फिल्म से वापसी की। इस फिल्म के लिए सलमा आगा को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला था। हिंदी फिल्मों में रवि को बलदेव राज चोपड़ा की फिल्मों में संगीत देने के लिए जाना जाता है। पार्श्व गायक महेंद्र कपूर को लोकप्रिय बनाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था।

गीतकार साहिल लुधियानवी और संगीतकार रवि की जोड़ी मशहूर थी। दोनों की जुगलबंदी ने कई यादगार गीत निर्मित किए। रवि एकमात्र ऐसे संगीतकार थे जो पहले गीत लिखवाते थे, फिर उन्हें संगीतबद्ध किया करते थे, जिसके कारण उनके बनाए तकरीबन सभी गीत अत्यधिक कर्णप्रिय और लोकप्रिय रहे।

श्रोताओ, 1952 में रवि को हेमंत कुमार ने खोजा था, जिन्होंने उन्हें फिल्म आनंद मठ से पहला ब्रेक दिया। वंदे मातरम गीत में समूह स्वर गायन के लिए काम पर रखा था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और संगीत की बारीकियां सीखी। रवि को जिन फिल्मों के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया, उनमें 14वीं का चांद, दो बदन, हमराज,

आंखें और निकाह रहा। उन्होंने फिल्म घराना और खानदान के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। 7 मार्च 2012 को मुंबई में 86 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली।

एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 10 बजे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम अपने मुंबई केंद्र से रिले करते हैं।

0: छह गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पंचम के गानों का अपना एक संसार है, कुछ चुलबुले गाने, कुछ उदास जो आंसुओं की नमी से भीगे हैं, कुछ ऐसे गाने जिनमें जोश छलक छलक पड़ता है, कुछ ऐसे गाने जिनके कंधों पर सर रखकर आप अपने डूबे हुए दिल को सहारा दे सकते हैं। पंचम गानों के जादूगर थे। आज के छाया गीत में पंचम के कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप पंचम को खूब मिस करेंगे, बेकरार होकर याद करेंगे और नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का जिसने हमें दिया ऐसा विरला संगीतकार, जिसके हैं ऐसे महकते नगमे।

यूं तो बीतते जाते हैं पल, कैलेंडर के पन्ने बदलते चले जाते हैं। जाने क्यों कुछ पल कभी बीतते नहीं, वो मन के आकाश पर ठहर जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं कुछ लम्हे। वो न कभी अतीत बनते हैं, न कभी यादों में तब्दील होते हैं, वो लम्हे बस मन के कैनवस पर धड़कते चले जाते हैं।

आंखों में सपने भी होते हैं और आंसू भी। दुनिया भर के दुख, धोखे, तकलीफें, अफसोस जमा होते रहते हैं मन के किसी कोने में। समझ में नहीं आता कि कब कैसे ये सारा दुख घुलेगा। फिर किसी दिन बहता है जीवन का सारा दुख आंखों से। आंखों में सपने भी होते हैं और जीवन का ये खारापन आंखों में ही छिपा होता है।

इंतजार का दायरा बढ़ता चला जाता है, इंतजार की परछाई बड़ी होती चली जाती है। कभी कभी ये इंतजार खत्म ही नहीं होता। दिन बोझिल होते चले जाते हैं, शामें उदास हो जाती हैं और रातें एकदम सुनसान। जिसका है इंतजार, जब वो मिल जाए तो खिल उठता है दिल, चमक जाते हैं लम्हे और महक उठते हैं।

गानों का अपना नशा होता है। जरूरी नहीं है कि ये गाने हमें बार बार सुनाई ही पड़ें। कई गाने सुने बरसों हो जाते हैं, फिर अचानक किसी गाने की कोई लाइन कहीं सुनाई पड़ जाती है और अटक जाता है मन। गानों के साथ जाने कैसा रिश्ता होता है हमारा, जैसे कोई भूला हुआ ठिकाना, जैसे भूली बिसरी कोई खुशबू, जैसे कोई भूली बिसरी याद।

जब निकले अपने घर से तो एक अलग ही तरंग होती है मन की। घर से निकलते ही मन सारी उलझनों से बाहर निकल आता है, फिर हम गुनगुनाना शुरू करते हैं। सफर में हूं तो अलग ही गाने जुबां पर आते हैं।

0: की बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रही थी पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग बहार। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को ही समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke sath aarthik samruddhi bhi badhe, jahan hamari saajhedari aakar nahi aapasi samman aur vishwas par aadharit ho aur jahan hum har desh ke पास पास नहीं साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
2: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles president conferred the prestigious honour on Prime Minister Modi. Prime Minister Modi dedicated the honour to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that India's vision is captured in the idea of Mahasagar, which recognizes that our futures are interconnected and interdependent. On the sidelines of the Seychelles visit, Prime Minister Narendra Modi met Mauritius Prime Minister Dr. Navin Chandra Ramgoolam today. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Prime Minister Modi underscored the importance attached by India to the development and progress of Mauritius, noting that the ongoing bilateral projects will contribute to Mauritius' healthcare, connectivity, sustainable development and blue economy. India today categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. He said Pakistan should rid itself of its proclivity to rely on terrorism as an instrument of state policy. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today launched the pilot project of PM Family Care Tracker at Gandhinagar in Gujarat. The integrated digital platform will track the health, nutrition and education of beneficiaries from pregnancy until the age of 18 using a unique ID linked to birth registration number or Aabha ID. The Anti-Corruption Branch, ACB, Delhi has arrested the then Director General Health Services, DGHS, Dr. Vatsala Agarwal and Deputy Controller of Accounts in the Central Procurement Agency, CPA, Neeraj Chopra, in the case related to alleged large-scale irregularities in procurement of medicines, surgical consumables and medical equipment. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram, SSBSK, during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi tomorrow. The Ministry of Health and Family Welfare said that it will carry forward the vision of Pehle Teen Saal Sampoorn Dekhbhal, recognizing the critical importance of the first 3 years of life for child survival, growth, nutrition and early brain development. In the ICC Women's T20 World Cup, Australia defeated India by 6 wickets in their final Group A match at Lord's, London. Earlier, opted to bat first, India posted 170 runs, losing 4 wickets in the stipulated 20 overs. In reply, Australia scored 172 runs for 4 wickets in 19 overs. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:10 हुए हैं। हमारी आज की संध्याकालीन सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

टॉक स्टूडियो की घड़ी में समय हुए हैं सुबह के 5:22 और 42:43:44 सेकंड। वर्क स्टेशन टू। स्टूडियो माइक दे रहा हूँ मैडम।

टॉक स्टूडियो के माइक नंबर 1 से 5:23:30-31:32 हुए, माइक नंबर 2 से 5:23:23-37:38 हुए।